0: महुआ चक्रवर्ती तो मेरा नाम है, बंगाली हूँ, बट मेरा जो जन्म हुआ है वो उड़ीसा के एक टाउन में, राउरकेला नामक टाउन में हुआ है। और मेरी जो एजुकेशन है, बैकग्राउंड, वो है इंजीनियरिंग की। और फिर उसके बाद करीब 24 साल मैं आईटी इंडस्ट्री में थी। बट जिंदगी में शायद शुरुआत से ही जिंदगी ने कुछ सिखाना चाहा और मैं सीखते चली गई। जीवन चेंज होने लगा। और अभी मैं जैसे लास्ट ईयर ही नवंबर में मैंने रिजाइन किया स्वेच्छा से, वॉलंटरीली, ताकि मैं फुल फ्लेजेड जो है किसी पर्पस लेड काम के लिए अपना जिंदगी का वो कर सकूं, उस पे ध्यान दे सकूं। क्योंकि 12 साल से, पिछले 12 साल से, करीब 2013 से मैं बहुत कुछ अलग भी कर रही हूं। जिंदगी में कुछ चेंजेस आए, कुछ क्राइसिस सिचुएशंस थे। मेरे मेरे एक जो छोटे छोटा भाई था, उसका अचानक से डेथ होने पे, और फिर उसके लेस देन अ ईयर फिर मेरे पापा का चले जाने से, तो बहुत जीवन पे एक भारी प्रभाव पड़ा। क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी घर की और जिम्मेदारी बहुत थी, और फिर उससे भी ज्यादा बड़ा था कि लाइफ को और गहराई से समझना। तो ये चलता रहा सिलसिला, तो तब से मेरी जो खोज थी वो स्टार्ट हो गई थी डीपर सेंस में, कि जिंदगी में एक्चुअली क्या होता है, और सिर्फ लाइफ टू डेथ ही जिंदगी नहीं होती। तो उस पे मैं कुछ काम कर रही थी लोगों के साथ, एंड इन द स्पेस ऑफ हिप्नोथेरेपी, इन द स्पेस ऑफ न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, ये सब चीजों पे, और काउंसलिंग थेरेपी। एंड तो वो मैं जो है मैं अपना साइड में करती थी, बैंडविड्थ ज्यादा नहीं थी। लेकिन जो 2-3 साल से कॉलिंग बहुत स्ट्रांग होने लग गई, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इट वाज अ बिग डिसीजन ऑफ माय लाइफ। क्योंकि इतना भरा पूरा जो है जॉब छोड़ना इतना इजी डिसीजन नहीं होता है। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मेरा लाइफ का पर्पस ये है, तो लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो अभी मैं महुआ लाइफ साइंसेस जो है मेरी संस्था, उसकी फाउंडर हूँ, जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने का काम करती है। इट्स एन एमलगेशन ऑफ बोथ स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज साइंस।
1: वाओ, दिस इज वन बिग टास्क जो आप कैरी कर रही हैं, वेरी वेरी सिंसियर। एंड ऑफ कोर्स उसके पीछे जो रीजन आपने मुझे बताया वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। ठीक है महुआ जी, तो थैंक यू सो मच, हमें पता लगा कि आप कौन हैं, कहाँ हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में आपसे बातचीत करें, इस पॉडकास्ट के बारे में बातचीत करें, तो जैसा आपने अभी अभी अपने परिचय में बताया, ह्यूमन लाइव्स, ह्यूमन वैल्यूज, और किस तरीके से हम अपने को कनेक्ट कर सकते हैं टू अ हायर पावर, अपने अंदर के अपने सोए हुए जो विचार हैं शायद उनको हिप्नोटिज्म के थ्रू हम बाहर निकालें, रिजॉल्व करें। सो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, यानी कि आध्यात्म के बारे में, जिसके बारे में ये प्रोग्राम है, आपको कब सुनने में आया, कब आपको पता चला, या किसने बताया, व्हेन?
0: देखिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं। अगर मैं अपना हिस्ट्री में देखूं, इट वाज परहैप्स कहीं पे इनग्रेन्ड था शायद। और अभी मैं जब सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि देखिए, मेरे जो जो हमारे जो फॉर्मेटिव एज एज से हम गुजरे हैं, मुझे लगता है कहीं पे ये 1900 का दशक में ना स्पिरिचुअलिटी का जो दौर था वो थोड़ा सा धीमा पड़ गया था। अब मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरे दादाजी उससे पहले जो थे, परहैप्स 1800s, लेट 1800s में, तब वो बहुत ज्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव था। बट आई थिंक 1900 से लेकर 2000 के बीच ये थोड़ा सा ये जो सारे रिवोल्यूशन हुए ना हमारे, आफ्टर द फ्रीडम, आवर फ्रीडम स्ट्रगल, और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो सब के चक्कर में पीपल वेंट इनटू अ सर्वाइवल मोड, जो कि तब वो सर्वाइवल एंड जॉब एंड एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान आने लग गया। तो मैं अगर अपना अपना खास करके अपना बचपन देखूं, हमारे घर में पूजा पाठ बहुत कुछ होता था। हम जाते थे रामकृष्ण मिशन, हमारे घर में दुर्गाष्टमी का पूजा होता था, तो वो सब तो होता था। बट आई कंसिडर देम एज वेरी रिचुअलिस्टिक। मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेडिटेशन करना चाहिए, साधना करना चाहिए, या इससे ऐसा होता है।

0: ये कनेक्शन बन सकता है, ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं कभी। ये तो मेरे ख्याल से मैंने यू नो थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेटिव इयर्स ही सीखा है। और जैसे मैंने आपको बताया 2013 में, लाइफ उससे पहले बहुत अलग थी, लेकिन 2013 से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया मेरे अंदर। एंड आई थिंक तभी से मुझे ये इसका आभास हुआ स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि मैंने मैंने वो खुद फील किया, एक्सपीरियंस किया। तो मेरे मेरे लिए तो मेरे ख्याल से तभी से ये बहुत ज्यादा डेप्थ पकड़ा।
1: ऑल राइट, आई गेट इट मैम। बिल्कुल फ्लो है जिंदगी का जो हमें डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स पे या सही पाथ पे लेके जाता है। और ठीक है ना, वैसे भी अगर हम कनेक्ट करें अपने आप को, और फिर जिस तरह यू नो क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स की बात आप जो कर रही हैं, उसमें वी ऑल टेक बर्थ ऑन दिस अर्थ विद ऑल दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमें बताए ही, हम रियलाइज भी कर लेते हैं उसको। तो चलिए मुझे फिर स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा मतलब समझाइए ना, अध्यात्म का मतलब समझाइए। क्या समझूं मैं अध्यात्म से?
0: देखिए समीर जी, मेरे लिए जो है ना स्पिरिचुअलिटी का मतलब है द प्रोसेस ऑफ सीकिंग, सीकिंग द ट्रुथ, द मोस्ट ऑथेंटिक ट्रुथ। और हमें वो ट्रुथ कहाँ मिलेगा? वो ट्रुथ हमें बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकता है, बिकॉज इट्स इट्स ऑल माया, जैसे हम जानते हैं। तो हमें वो इल्यूजन से दूर होके हमें वो ट्रुथ को सीख करना है। तो उसके लिए हमें, ऑफ कोर्स, मुझे लगता है हमें जो है अपनी अंदरूनी जो हमारी जो जर्नी है उसे शुरू करना बहुत जरूरी है। तो हमें इनवर्ड फेस करना पड़ेगा पहले। हम जो है बाहर मुखी होके हैं, अभी सारा दुनिया को देख रहे हैं, बट द मोमेंट वी टर्न इनवर्ड्स एंड मूव इनसाइड अस, तब जो है हम अपने अपने आप को ढूंढ पाएंगे। एंड फॉर मी जो है ना स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है नोइंग योर स्पिरिट, और स्पिरिट तो सोल ही है, हमारी आत्मा ही है। तो अपने जो असली स्वरूप से जुड़ना, उसी को मुझे लगता है, मेरे हिसाब से वही स्पिरिचुअलिटी है। इट इज बेसिकली क्योंकि देखिए जैसे बाहर जो होता है ना वो आपके भीतर का ही एक रिफ्लेक्शन है जो आप बाहर देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसका मतलब है कि माइक्रोकॉजम जो है वो वही मैक्रोकॉजम हमें दिखाता है। मैक्रोकॉजम इज द यूनिवर्स एंड माइक्रोकॉजम इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अस, इनसाइड आवर बॉडी। तो ये जो पूरी यूनिवर्स है यही समाई हुई है हमारे अंदर भी, वही वही सारे स्ट्रक्चर्स, वही सारे एलिमेंट्स, वही सारे तत्व सब हमारे अंदर ही हैं। तो जिस वक्त हम जो है कि जगत को जानने का कोशिश करेंगे, वो हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग लगने लगेगा। तो अच्छा यही है कि फिर पहले हम अपने आप से शुरू करें। तो मुझे मुझे ये भी लगता है कि जैसे ही हम अपने आप को जानना स्टार्ट करेंगे ना, हमारे अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी आने लगेगी, क्योंकि हम अवेयर होते रहेंगे कि हम, सपोज कोई इंसान जो है ना बहुत, सपोज लेट्स से बहुत एंग्री काइंड ऑफ पर्सन है, तो उसे क्या दिखेगा दुनिया में? उसे हर चीज में गुस्सा ही आएगा, हर इंसान के ऊपर उसको एंगर ही आएगा, क्योंकि वो अंदर से बहुत टूटा हुआ होगा। हो सकता है कोई पास्ट अनहील्ड उसका कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उसके साथ हुआ है जो अनहील्ड है, या किसी वजह से वो अपने आप से कभी प्यार ही नहीं किया। तो वो इंसान जो है वो हमेशा गुस्सा करेगा। हम क्या सोचते हैं जनरली कि अरे ये तो इतना गुस्सैर इंसान है, इससे बात ही मत करो, इसको अवॉइड करो, इसको ऐसे करो, बट कोई जानने का कोशिश नहीं करता है कि हर इंसान का अपना पास्ट होता है और उसका जो प्रेजेंट होता है वो बहुत प्रभावित होता है उसके पास्ट से। तो मैं मतलब अपने तरफ से बोलूं ना समीर जी, तो मुझे हमेशा, मैं किसी को भी पहले देखती हूँ, मैं उसे जज नहीं करती हूँ, क्योंकि हर इंसान जो है ना अपना वो पास्ट लेके आया है। एंड दैट इटसेल्फ इज व्हाट आई फील इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि आप एकदम न्यूट्रल हो जाइए। आप बहुत ज्यादा अपना जो परसेप्शन है, क्योंकि हमारा परसेप्शन, हमारा बिलीव्स, वैल्यूज, जैसे आप बता रहे थे ना कि वैल्यू सिस्टम से, बिलीव से हमारे जो थॉट्स हैं उसी से बनते हैं, और उसी को अगर हम थोड़ा सा नलिफाई कर देते हैं तो हमारा जो है वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव बन जाता है, तो हम बेहतर समझ सकेंगे किसी और को। सो ये इनर अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, जब आपका मन, आपकी जो आपकी आत्मा, आपका जो डायरेक्शन जो भी है आप ले रहे हैं जिंदगी का, वो सारी चीज जो अलाइन हो, तभी आपका जो रिलेशन है अपने साथ वो बहुत ज्यादा फर्म बनते जाएगा, एंड इट विल बिकम डिवाइन इन इटसेल्फ बिकॉज यू आर देन बिकमिंग प्योर, राइट? एक एक लेयर आपका निकलते जा रहा है, यू आर बिकमिंग ग्रॉस से सटल की तरफ आप जा रहे हो, आप प्योर बनते जा रहे हो, अपने आप यू नो थिंग्स फॉल इन प्लेस, एंड दैट इज वॉट स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू मी.
1: राइट, एब्सोल्युटली राइट. अब आपने बिल्कुल सही सही बहुत मतलब नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में ही क्लियर बताया है. अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से सभी के लिए. तो अगर हम आज की डेट में हैं तो हम ट्राई करते हैं जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है उनके लिए हम थोड़ी चीज़ें क्लियर करें, क्योंकि बहुत साफ बात है इतना एक्सपीरियंस उन लोगों को अभी नहीं होगा कि वो इतनी गहराई में जाएं इन चीज़ों की. तो आपको क्या लगता है जो आपने डेफिनेशन अभी दी या एक्सप्लेन किया, यूथ को अगर इसको समझाएं, आज की जनरेशन को इसको समझाएं कि भला देखिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, और वो अच्छा मोर ओवर इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती कि यूथ आज की डेट में या कहें तो कभी का भी इस चीज में इंटरेस्टेड होता है कि भाई ये चीज मैं प्रैक्टिस करूं मैम तो मेरे लिए क्या फायदेमंद है. तो हाउ वुड वी एक्सप्लेन दिस टू द जनरेशन, द यंग जनरेशन, कि स्पिरिचुअलिटी ये है और ये आपके लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ पीसफुली. सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस टू देम?
0: या मुझे लगता है देखिए आज का जो जनरेशन है वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, एंड वी कैन नॉट नेगेट दिस फैक्ट. समीर जी, मुझे लगता है बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है वर्ल्ड में ऑलरेडी, दे आर वेरी अवेयर. ये बहुत मतलब दिस इज समथिंग विच आई रियली रिस्पेक्ट आज के जनरेशन में. हाँ, दो तरह की चीजें होती है यहाँ पे, बट मुझे लगता है जो इनर सीकिंग है ना, मतलब टू लीड अ पर्पसफुल लाइफ, जो आपने बताया कि हमें क्या मिलेगा इससे, ये जो क्वेश्चनिंग ऑफ द नॉर्म है, नॉट नॉट एक्सेप्टिंग थिंग्स एज इट इज, किसी ने बोला, हमारी मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, या वो कर रहे थे इसलिए हमें भी करना है, इट्स नॉट लाइक दैट. एंड इट इज नॉट इन अ इसका मतलब ये भी नहीं कि वो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में, या डिसेंट कर रहे हैं, या वो हमें कन्फ्रंट कर रहे हैं, वो बड़े रिस्पेक्ट के साथ हमें पूछ रहे हैं. एंड आई रियली मेरे भी दो बच्चे हैं समीर जी, मेरा बेटा जो है 15 साल का है, बेटी 11 साल की है. तो जब वो, मेरा बेटा ऐसा ही है कि वो हर चीज को ना एक्सेप्ट नहीं करता है नॉर्म को, वो मुझे क्वेश्चन करता है मम्मा ऐसे क्यों करना है मुझे. और माई माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बिकॉज दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये एज इज एक्सेप्ट कर लेना है. इट इज लाइक आइदर आई कन्विंस यू और यू यू नो कन्विंस मी, एंड हुएवर कन्विंसेस ईच अदर इज वॉट वी नीड टू काइंड ऑफ एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, राइट? ये जबरदस्ती नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं है. तो जैसे मैं बता रही थी, तो एक इनर सीकिंग जो है ना आज के जेनरेशन में कुछ लोगों में ऑलरेडी ये चीज है. अब ये बात अलग है कि देखिए यंग जब होते हैं बच्चे या एडोलेसेंस या टीनेजर्स में, वो तो हमें सभी लोग, वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू, और हमें पता है कि देर इज एन हार्मोनल सर्ज, और थोड़ा सा वो लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, इंप्रेशनेबल माइंड्स होते हैं उनका, वो लोग इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं बाहर की चीजों से, तो इस वजह से थोड़ा उनका अप डाउन होता है. बट द गुड थिंग इज कि दे सीक, दे आर क्वेश्चनिंग ओल्ड सिस्टम, वो लोग जो है मीनिंग खोज रहे हैं, वो लोग इमोशनल सेफ्टी खोज रहे हैं, पर्पज खोज रहे हैं अपने काम से. तो ये बहुत पॉजिटिव एक इंडिकेशन है. एट द सेम टाइम जो एक चीज जो है ना कि स्पिरिचुअलिटी का एक ट्रेंड भी बन गया है, ये मैं पर्टिकुलरली यंग जनरेशन को नहीं बोल रही हूँ, दे आर ओनली कंज्यूमिंग, राइट? दे आर सीइंग व्हाट इज बीइंग प्रोजेक्टेड टू देम. बट ये जो ट्रेंड है ना, दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ. जो आजकल बहुत सारे ऐसे यू नो कुछ भी रील्स बन जाते हैं मैनिफेस्टेशन को लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, सी दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी डीप सब्जेक्ट्स, राइट? स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी वेरी डीप थिंग, इट इज अ वेरी पर्सनल जर्नी किसी की, इट इज नॉट आउट इन द ओपन. हाँ, आप बता सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कुछ लोगों के साथ जो लोग लाइक माइंडेड है, जो लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बट इट इज नॉट फॉर एवरीवन इज व्हाट आई फील. क्योंकि बहुत लोग आएंगे, कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, एंड उसको मजाक में उड़ा के चले जाएंगे. विच पेन्स मी, ऑनेस्टली मुझे बहुत ये पेन करता है, क्योंकि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन इज व्हाट आई फील. एंड अभी इसको क्या है ना कि अभी अपियरेंस को भी इसके साथ क्या बोलूं मैं आपको, इसको मिला दिए हैं. लाइक ऐसा दिखना चाहिए, अगर कोई स्पिरिचुअल है तो उसे तिलक लगाना चाहिए, उसको धोती कुर्ता पहनना चाहिए. ऐसा नहीं होता है. स्पिरिचुअलिटी लाइक आई सेड इज अ वेरी पर्सनल थिंग, इट्स अ इनवर्ड जर्नी. आप कितना सिंपल इंसान है वो डिपिक्ट करता है. मन से आप कितना डीप है, कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना हम्बल है, कितनी रेजिलियंट है, वो डिपिक्ट करता है आपका स्पिरिचुअल डेप्थ को. और ये जो ट्रेंड वाला चीज है ना, वो मुझे नहीं पसंद है ऑनेस्टली, बिकॉज दिस इज समथिंग. आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ. इस बार जो ये जो आपका कुंभ मेला जो हुआ था लास्ट हमारा,
1: जी
0: इसमें आप देखिए, आई थिंक फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 60-70 करोड़ पीपल वेंट देयर. एंड आई हैव सीन, मैंने मतलब मेरे कितने जान पहचान के लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे समीर जी, दे वेंट इन द लास्ट लेग, लाइक लास्ट 1 वीक, वो फेब्रवरी का 3rd वीक, 2nd वीक, 20 तारीख, 22 तारीख को वो लोग मतलब टू जस्ट एंश्योर कि दे डोंट मिस अपॉन एनीथिंग, मतलब ताकि वो आके इंस्टा में अपना पोस्ट दे सके. दिस रियली हर्ट मी, बिकॉज आई नो पर्सनली कि दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुंभ. एंड दिस इज समथिंग दैट आई फील इज नॉट ओके. और ये जो बहुत सारे जो जस्ट टू कैच अप विद द ट्रेंड जो करते हैं ना, वो नहीं, मुझे आई थिंक दैट इज नॉट ओके. बट अदरवाइज वेर एवर पीपल आर डूइंग विद द राइट इंटेंट, नहीं जानना एक चीज है विच इज एब्सोल्युटली फाइन. हर किसी को हर चीज नहीं पता होता है, एंड वही सीखने का तरीका है. बट ये जो है ना कि थोड़ा बहुत वो जो ट्रेंड फॉलो करना जस्ट टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड एंड डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ ओनली दैट इज समथिंग दैट आई थिंक इज समवेयर दिस जनरेशन नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड काइंड ऑफ टेक अ बैक सीट ऑन. क्योंकि
1: Absolutely.
0: स्पिरिचुअल ये आप देखिए, ट्रू स्पिरिचुअल जो आदमी होगा ना, वो आप वो बहुत सॉफ्ट एंड हम्बल होगा अंदर से. ये आपको ऑटोमेटिकली आपको हम्बल बना देगा. दैट डजेंट मीन दैट यू आर वीक, वो आपको बहुत स्ट्रांग भी बनाएगा, बहुत स्ट्रांग, ताकि आप एकदम सेंटर्ड रह सके, आप मोर रिस्पॉन्सिबल हो सके. लेकिन आप परफॉर्मेंस के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप दूसरों के एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए नहीं करेंगे, यू विल बी विद इन योर सेल्फ.
1: आई गेट इट, आई गेट इट. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं. ट्रेंडिंग होना, फोमो, कि को भी वही करना
0: जी
1: है जो सारी दुनिया कर रही है, अदरवाइज पीपल विल कॉल मी स्टूपिड फूल. ये एक बहुत बड़ा वायरस है जो हम लोगों के अंदर भरा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते इसमें. युवाओं की बात हो रही थी, बात हो रही थी कि हम किस तरीके से अपने युवाओं को ये चीज सिखाएं. तो यहां पर बस रुककर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. एंड आई हैव अ भजन स्पेसिफिकली फॉर यंग जनरेशन, तो आई वुड जस्ट लाइक टू प्ले इट हियर. थैंक यू मैम.

0: यस मैम ऑफ कोर्स। अब बात यह हो गई कि हम लोग इसी दुनिया में हैं, मैं हुई आप भी, और हम स्पिरिचुअलिटी की सीरियसनेस को या इसकी क्वालिटी को समझ पा रहे हैं। हम ये भी समझ रहे हैं जैसा आपने अभी अभी बताया कि यूथ के लिए या जनरेशन के लिए जो कि बहुत ज्यादा एंक्शस है जानने के लिए, वो क्वेश्चन पूछती है, तो उनको भी हमें समझाना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब आज के जमाने में, और फिर आपने तो बताया कि आप आईटी प्रोफेशनल रहे 20 ईयर्स, तो जो आज की डेट में टूल्स अवेलेबल है, दैट इज सोशल मीडिया। आज के वक्त में सबके हाथ में फोन है और हर वक्त ही सोशल मीडिया में डूबा हुआ है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। मैम, जो लोग समझ पा रहे हैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से सही रूप में, उसके ट्रू एसेंस में, उसकी आत्मा के तरीके से इनको कैसे समझाया जाए, तो सोशल मीडिया का यूज करें तो हाउ वुड वी डू दैट, क्योंकि तो आप तो आईटी प्रोफेशनल रहे इसलिए पूछ रहा हूं।
1: देखिए, टेक्नोलॉजी का जो है ना बहुत महत्व है समीर जी, हमें सिर्फ उसका यूसेज का ध्यान रखना है। एंड जैसे मैं आपको बता रही थी ना, ये सारी चीजें जो है ये कंटेंट कंजम्पशन रूट में ना चले जाए, ये हमें ध्यान रखना है। इट इज खाली कंज्यूम ना करें, बट टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा अभी रोल है। एंड स्पेशली सोशल मीडिया जो आपने पूछा ना, वो बहुत एक्सेसिबल कर दिया है, उसने कर दिया है स्पिरिचुअलिटी को, विच इज वेरी गुड। आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे पहले मेरी मम्मी इज लाइक 72 ईयर्स एंड शी इज अगेन अ वेरी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वुमन, तो उन्हें वो संस्कार चैनल, वो सब जो भी है ना आपका, वो सारे चैनल्स देखना उनको बहुत पसंद है। नाउ एवरी टाइम शी स्टेज सम डेज विद मी, आई मीन फ्यू मंथ्स विद मी एंड फ्यू मंथ्स विद माई सिस्टर, तो वो जो है जब ही आती है, तो क्योंकि मेरे घर में टीवी देखने का मुझे टाइम ही नहीं है ऑनेस्टली, तो बाकी बच्चे जो देखते हैं अपना, एंड तो मैं जनरली वो चैनल्स एक्टिवेटेड नहीं रखती हूँ। तो जब भी मेरी मम्मी आती थी पहले, तो वो हमेशा बोलती थी कि बेटा मैं तुम मेरे लिए वो चैनल्स वापस से एक्टिवेट करा दो, तो मैं जैसे ही वो आती थी तो मैं उसको वापस से कर देती थी। शी यूज टू एंजॉय ऑल हर व्हाटएवर शी वॉचेस। नाउ अभी जब से वो स्मार्टफोन उनके पास आया है, शी डजंट डिपेंड ऑन मी एंड दोज टीवी चैनल्स, क्योंकि शी इज नाउ सेल्फ सफिशिएंट। आई सेड कि मम्मी क्या चैनल, बोले कि नहीं टीवी में ठीक है जो है ठीक है, बट जनरली वो सुबह वगैरह वो जब उठ जाती है, वो तो 4 बजे उठती है अपना, एंड वो अपना उठ के गीता पाठ वो सब अपना खुद ही लगा लेती है। मतलब इवन टीवी में भी विदाउट द डिश टीवी शी हैज दिस, वी हैव इंटरनेट राइट, सो यूट्यूब में अपना हरे कृष्णा टीवी जो भी अपना देखना होता है उनको आराम से लगा लेती है एंड बैठ के देखती है वो। और घर में भी कुछ कुछ चलते रहता है मंत्र पाठ वगैरह, तो एक वाइब्रेशन भी बना रहता है अच्छा सा। सो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं भी खुद जब ड्राइव, मतलब ऑफिस जाना होता है, कहीं लॉन्ग ड्राइव में मैं जाती हूँ 1 घंटा का, बैंगलोर का ट्रैफिक आपको पता ही है, तो मैं जो है मैं कुछ तो लगा देती हूँ अपना, मतलब यू नो, सो दैट आई एम आइदर आई डू अ गीता सारांश, या फिर मैं सुनते रहती हूँ स्वामी अवधेशानंद स्वामी जी का, उनका अपना देखते रहती हूँ। मैं खुद क्रिया योग में इनिशिएटेड हूँ, तो मैं उसके ऊपर कुछ अपना देखने लगती हूँ, तो जो भी मेरा अपना चॉइस है, या आई लुक फॉर, आई मीन आई हियर फॉर सम लीडर्स का अपना, उनका कुछ सुनते रहती हूँ, सो आई ट्राई टू यूज। तो आप देखिए कितना वो एडवांटेज बन गया हमारा कि सोशल मीडिया है या आपका जो भी टेक्नोलॉजी है, उसका हम लोग अगर सदुपयोग कर सके तो उसको हम लोग कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जैसे ही वो डूम स्क्रोलिंग में आ जाता है, या आप जो बोलते हैं ना बिंज वॉचिंग में आ जाता है कि एवरी सेकेंड यू आर जस्ट स्क्रोलिंग इट विदाउट स्टॉपिंग, तो वो चीज जो है देन इट इज कंज्यूमिंग यू देन राइट, इट इज नॉट हेल्पिंग यू। आपका जो टाइम, आपका जो पूरा दिन, वो जो है हम अपना बेकार कर देते हैं। सो ये इंफॉर्मेशन को लेके जब तक हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट में या खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ यूज कर सके, आई थिंक इट इज अ बून, बड़ा ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। बट अगर वो ना हो सके देन दैट बिकम्स अ लिटिल चैलेंज। तो और एक चीज
0: जी जी जी
1: या और एक चीज जो मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी जो मैं सोशल मीडिया में स्पेशली इंस्टाग्राम एंड वो सब में ना आप देखेंगे कि काफी लोग जो है ना जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो रेलेवेंस कितना है उनका, जो भी नॉलेज लेवल या अपना लाइफ एक्सपीरियंस से या जो भी है, वो लेके बोल रहे हैं विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या दे आर जस्ट कॉन्टेंट मेकिंग मशीन्स कि जो भी जो भी आज किसी ने किया तो उसको कॉपी करके 4 वायरल, 10, 15, 20 वायरल वही टॉपिक पे, वही चीज पे, चाहे रेवेडी हो चाहे कुछ हो, तो कुछ हो, अब कोई नहीं देख रहा है कि देखो इसका रेलेवेंस क्या है, इसमें सही है कि नहीं है. पीपल कंज्यूम कर रहे हैं ना, बहुत लोग क्या होता है ना, जो नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ओरिजिनल क्या है या ऑथेंटिक कंटेंट क्या है, एंड ये सारे जो कुछ फेक भी होते हैं वो सब क्या है, तो उन वो लोग क्या होते हैं ना, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं. मुझे उसी चीज से थोड़ा सा घबराहट होती है कि मैं बोलती भी हूँ लोगों को, एंड समटाइम्स स्कूल्स का भी कभी कभी मुझे बुलाते हैं फॉर सम टॉपिक्स, पर्सनल डेवलपमेंट टॉपिक्स के लिए, बच्चों को बात करने के लिए. तो मैं वही बोलती हूँ, बेटा देखो यू हैव टू वॉच थिंग्स फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स. किसी का भी कुछ भी नहीं सुन लो, आप थोड़ा सा देख लो एंड देन यू कंज्यूम, एंड डोंट टेक एवरीथिंग ऑन इट्स फेस वैल्यू. थोड़ा सा आप, थोड़ा सा यू रिसर्च, यू स्टडी, यू अंडरस्टैंड, एंड देन सी इफ इट इज रियली रेजोनेटिंग आपके साथ, वो बैठ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है.
0: आई गेट इट मैम, आई गेट इट. दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब भी जब आप बता रहे थे ना, तो फिर आई रियलाइज्ड वन थिंग विच इज एक्चुअली प्रॉपिंग अप इन माई माइंड राइट नाउ. लेकिन बस मैं आई जस्ट टेक ए स्मॉल पॉज, एक प्यारा सा भजन यहाँ पर पेश करके मैं वापस आता हूँ आपके पास.

0: तो मैम, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, आई गॉट इंट्रीग्ड अबाउट दिस न्यूरो साइंस ग्राउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन. तो अभी आपने जैसे सोशल मीडिया के बारे में, उसको यूज करते हुए हम किसे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बताया मुझे. तो आपका जो ये एक्सपर्टीज है न्यूरो साइंस ग्राउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन, पहली बात तो एक
1: जी
0: मैम इसको थोड़ा सा मुझे समझाइए, और फिर ये बताइए कि इस चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं विद द अमलगमेशन ऑफ सोशल मीडिया टू गिव अ राइट मैसेज टू टुडेज वर्ल्ड.
1: देखिए, जैसे मैं बता रही थी ना कि 2013 से जब से ये इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में हुए, तो आई वाज अ वेरी साइंस ओरिएंटेड पर्सन, रैशनल माइंड, लॉजिकल थिंकिंग, जैसे हमारा होता है ना. बट क्या हुआ ना, जब जब व्हेन आई लॉस्ट माय ब्रदर, द आई वाज इन अ कंप्लीट डिनायल मोड. आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट फॉर एटलीस्ट 2-3 मंथ्स, एंड इट वाज अ वेरी सडन थिंग व्हिच हैपेंड. एंड तब ना मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि लाइफ इज मोर देन व्हाट वी सी विथ आर फिजिकल आईज, व्हिच इज लाइक फ्रॉम बर्थ टू डेथ. देर हैज टू बी समथिंग विच इज बियॉन्ड दीज टू विंडोज, एंड दैट इज वेयर माई ओन क्वेस्ट, मेरा जो क्वेस्ट स्पिरिचुअलिटी का, वो स्टार्ट हुआ. और फिर मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ने लगी, अध्ययन करने लग गई. मैं सीखना चाह रही थी, मैं डेस्परेटली गुरु खोज रही थी कि कोई मुझे बताए कि क्या होता है. एंड तब, समीर जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ कुछ मेरे साथ मेटाफिजिकल थिंग्स भी हुए, जो शायद लोगों को, अभी मैं सोचूं तो अभी तो समझ में आता है, तब मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था. एंड देन आई अंडरस्टूड कि नो, दिस इज सो. तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. तो आई स्टार्टेड विथ रेकी हीलिंग. उसके बाद मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग जो होता है ना, कि आप यू नो, आप यू कैन रीड, यू जोन इनटू अ थिंग, हाउ यू सेंटर योरसेल्फ. फिर उसके बाद आप उस पर मेडिटेट करके आप कैसे किसी के रिकॉर्ड्स रीड कर सकते हो, हाउ यू कैन अलाइन योर सोल, व्हाट, हाउ यू कैन नो कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. तो बहुत डीप वो होने लगा. एंड जब जब मैं बात करने लगी लोगों के साथ, तो फिर जब मैं उनको रीडिंग्स बताती थी, तो वो बहुत उनके लिए भी बहुत हैरत वाले चीज होते थे, क्योंकि उनको भी कभी बहुत कभी उनको ऐसा वो लोग कभी सोचे ही नहीं. बट जैसे जैसे मैं बताती गई, तो उनको फील होने लगा कि हाँ, ऐसा तो है, ऐसा तो है. एंड तब से मुझे और ज्यादा इंट्रीग करने लगा ये. तो मैं फिर ह्यूमन बिहेवियर और न्यूरो साइंस पे बहुत अध्ययन की, स्टडी की. एंड देन आई ऑल्सो डिड माई 5 लेवल्स ऑफ क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी, जहां पे आपका जो है सारा क्लिनिकल जो भी हिप्नोथेरेपी, आप जैसे जानते ही हैं, इट इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द वेरी रिनाम पॉपुलर बिहेवियरल चेंज टूल, राइट. तो इट इज नॉट स्टेज हिप्नोसिस. बहुत लोगों का मिथ भी है कि स्टेज हिप्नोसिस जैसे किसी को वशीकरण कर लिया, इट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्ररी टू दैट. दिस इज अ थेरापेटिक मोडालिटी. और जैसे आप जानते हैं कि ये जो सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, इंक्लूडिंग हमारे जो ओबामा हैं, या विराट कोहली बोल लीजिए, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन का जो ब्रेन सर्जरी हुआ था, दैट वॉज अंडर हिप्नो एनेस्थेशिया. माने बिकॉज बिकॉज ही सी इन यूएस एंड अदर प्लेसेस दे गिव अ लॉट ऑफ इम्फेसिस ऑन ह्यूमन राइट्स, राइट, एंड ह्यूमन व्हाट डू यू से, ह्यूमन राइट्स एंड नीड्स. तो वो लोग हर चीज केमिकल इससे नहीं इंड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही जैसे दिया जाता है वहां पे, चॉइस भी दिया जाता है, फॉर एनी सर्जरी यू वॉन्ट हिप्नो एनेस्थेशिया और रेगुलर एनेस्थेशिया, केमिकल एनेस्थेशिया. सो देर आर मोडेलिटी. सो उसपे मैंने बहुत अध्ययन किया, मैंने अपना स्टडीज किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, सेम लाइफ रिग्रेशन इन बिटवीन, सो लाइफ बिटवीन लाइफ्स में. सो वो सब फिर मेरे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, ये सब जैसे मैंने जैसे जैसे करते गई ना, तो बहुत चीजें ना क्लैरिटी, ये एक तरफ से हो रहा था जहां पे मैं सीख रही थी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मेंटोर्स, और दूसरी तरफ से मेरा अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन जो हो रहा था अंदरूनी, जिससे मैं अपना साधना कर रही थी. तो पहले तो मैंने इनर इंजीनियरिंग किया, फिर मैं 2018 में, जब मैं बहुत ज्यादा मतलब डेस्परेट थी गुरु के तलाश में, एक बार मैं स्वामी योगानंदा का, मैंने वो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा था बहुत पहले, तो उसके तब तो कुछ नहीं हुआ, बट उसके बाद मुझे एक अजीब सा खिंचाव होने लगा कि जहां पे मुझे कोई तो बता रहा है, कुछ तो हो रहा है, जहां पे मुझे ये पता चला कि देर इज समथिंग दैट आई हैव टू कंप्लीट, आई मीन आई हैव टू रीस्टार्ट फ्रॉम दिस लाइफ, मतलब जो कि मैं पास्ट लाइफ में अधूरा छोड़ी हुई थी, एंड दैट केम टू मी एज क्रिया योग. तो मैं तब बहुत डेस्परेटली, अभी तो गुरु भी आपको पता है कि थिंग्स आर समटाइम्स लिटिल कमर्शलाइज एंड यू नो यू डोंट नो, यही मैं आपको समझा रही थी कि ऑथेंटिक और बहुत अच्छे लोग हैं, और हमारी संस्कृति जो है एंड वर्ल्ड में भी आई थिंक एवरी रिलीजन एवरी कंट्री हैज यू नो दीज जेम्स, बट दे आर ऑल हिडन. वी इट इज डिफिकल्ट, इट्स अ डिफिकल्ट पाथ कि हम उन तक पहुंच सके. तो बट आई एम बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मुझे एक लिविंग मास्टर से इनिशिएशन हुआ क्रिया योग का. तो तब मेरा अपना वो भी रूट चल रहा था, एंड तो मैं ये दोनों का मिला के, मतलब स्पिरिचुअल और ये जो यू नो द साइंस न्यूरो साइंस पर्सपेक्टिव की व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन, सो एक एक लोब्स का क्या होता है, कैसे अमिगडाला सर्वाइवल को वो करता है, कैसे हम यू नो बिहेव, क्यों हम बिहेव करते जो हम करते हैं एट सम पॉइंट इन टाइम, क्यों कोई लोग इस तरह करते हैं, सेम सेम ट्रिगर पॉइंट में एक आदमी किसी तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा आदमी अलग तरह से बिहेव कर रहा है, व्हाई डज दिस हैपन. तो ये सारी चीजें, और जब आई स्टार्टेड वर्किंग विथ क्लाइंट्स तो ये बहुत ज्यादा यू नो और रिवील होने लगा, एक एक लेयर एज इफ, एंड वही चीज मुझे ना आगे और उस पे रिसर्च करने स्टडी करने के लिए हेल्प करते रहा. आज जो मैं करती हूँ कि अभी बिकॉज आई हैव डन यू नो आई वर्क्ड विथ मेनी पीपल ये 13 12 13 साल में, तो अभी और एक जो वो तो मैं करती हूँ थेरापेटिक प्रैक्टिस, बट उससे भी जो अभी लास्ट 7 8 साल से जो मैंने रिसर्च करके एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे लिए, मतलब मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज है, एक प्रोग्राम है जिसमें मैं प्रेग्नेंट वुमेन के साथ काम करती हूँ, उसका नाम है मातृत्व, जिसमें हम जो है ना गर्भ संस्कार, जो हमारे जो अभिमन्यु एंड प्रहलाद के टाइम के जो चीजें हैं, या गर्भ उपनिषद में जो लिखा गया है, जो जो हमारे वेदाज में लिखा गया है, उसका जो वो 9 महीने कैसे एक इंसान का एक लाइफ टाइम डिसाइड करता है, दोज 9 मंथ्स डिसाइड 90 ईयर्स ऑफ लाइफ, कैसे वो होता है, और कैसे वो 9 महीना गर्भ का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है फॉर नॉट ओनली द सोल दैट इज कमिंग, एंड इवन प्री कॉन्सेप्शन, कि माँ बाप क्या कर सकते हैं टू इनवाइट यू नो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोल, अ प्योर सोल इनटू देयर लाइव्स, उसकी क्या क्या वो है, वो सब के ऊपर मैं यू नो पोस्ट बनाती हूँ सोशल मीडिया में, पोस्ट करती हूँ, एंड आई आई डू क्लासेस ऑल्सो, आई टेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन दोज ऑल्सो. एक जर्नी है. तो एंड देन ये जो आप सोशल मीडिया के थ्रू से इसका अवेयरनेस स्प्रेड करने का बात कर रहे हैं, ये तो ब्लॉग से या आपके जो पॉडकास्ट से, या फिर सोच लीजिए आपका जो भी यू नो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, चाहे थॉट लीडरशिप हो, चाहे आपका यूट्यूब वीडियोस हो, फेसबुक वीडियोस हो, ये जितना हो सके, मतलब डिपेंडिंग ऑन माय बैंडविड्थ, मैं करते रहती हूँ ताकि ये अवेयरनेस बढ़ते रहे. तो या इसी पे काम चल रहा है सभी जी.
0: ओके ऑल राइट दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ कोर्स कि किस तरीके से आपने ये सब चीज़ों को डेवलप किया और किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन आज की जनरेशन के लिए या आज की जनरेशन छोड़िए आज के वक्त के लिए किया जा रहा है. बहुत सिंपल बहुत बढ़िया. तो चलिए विल जस्ट टेक अ पॉज फॉर अ भजन, निर्गुण भजन, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा सोच सकें, विचार कर सकें जो कुछ भी आपने अभी तक बताया हमें.

0: बहुत बढ़िया, अमेजिंगली ब्यूटिफुल मैम. बस चलते चलते मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, वो डू यू थिंक, बिकॉज आप न्यूरोसाइंसेस में भी हैं, आज के जमाने में हैं, डीप स्टडी की है, तो आई सिंसियरली अप्रिशिएट दिस फैक्ट दैट यू माइट बी एबल टू एक्सपेक्ट व्हाट इज गोइंग टू कम इन नियर फ्यूचर और मे बी इन फार फ्यूचर. क्या लगता है आपको, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, क्या ये और पावरफुल होगी, लोगों के पास जाएगी या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे एंड मे बी जिंदगी, लोगों की जिंदगी और बहुत खूबसूरत हो जाए. सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कैन यू पॉसिबली सी?
1: मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव फ्यूचर है समीर जी, बहुत ब्राइट है स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है ना, अभी बहुत अवेयरनेस आने लगी है लोगों को. लोग अभी जिंदगी ऐसे नहीं जीते हैं, जैसे मैं आपको बताई ना, अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है. मैं भी कभी बचपन में आई हैव नॉट सीन यू नो लिटिल लिटरल सेंस में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मैंने अपने घर में नहीं देखा. हो सकता है बहुत सारे घर में हो. यस, देयर हैज बीन रिचुअल्स, मंदिर जाना, टेंपल जाना, वो अलग चीज होता है. बट ये जो अपने लिए, बिकॉज एक तरफ देखिए आप, बाहरी दुनिया में ना स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है, दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है एवरी डे, बिकॉज आप देर इज यू नो टेक्नोलॉजी, नाउ AI, देर इज सो मच स्पीड एंड कॉम्पिटिशन, और अनसर्टिनिटी भी बढ़ते जा रही है. इस वजह से जो है ना, ह्यूमन का जो बेसिक नीड है, कोर जो हमारी जो जरूरतें होती हैं, जो कि लाइफ में मीनिंग लाने का, एक ग्राउंडेड रहने का, एक जो इमोशनल सेफ्टी, जो कनेक्शन, जो बॉन्डिंग, जो रिलेशनशिप का जो डेप्थ, अपने अंदर का जो हमारे जो क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ कनेक्शन को स्ट्रांग करने का वो जो चाव है, वो और ज्यादा बढ़ते जा रहा है. पहले शायद थी, बट अभी मुझे लगता है और ज्यादा होते जा रही है, क्योंकि ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज हैपनिंग इन द आउटर वर्ल्ड. तो इस वजह से स्पिरिचुअलिटी पे बहुत लोग लीन करने लगे हैं, बिकॉज वो लोग देख रहे हैं कि इससे उनको बहुत फायदा भी मिल रहा है. तो आउटर इंटेलिजेंस तो बढ़ेगी, लेकिन इनर विजडम के बिना जो है वो लाइफ फ्रेगमेंटेड फील होता है लोगों को, और इस वजह से वो लोग जुड़ने लगे हैं. अभी आप देखिए बहुत सारे कल्ट या बहुत सारे जो चीजें हैं, लोग मेंटर्स, गुरुज के पास, एंड एवरी एस्पेक्ट आप देखिए, लीडरशिप में भी, हमारी ऑफिस में, कंपनीज में, एट एवरी लेवल, CEO लेवल में भी पीपल आर गोइंग बैक. अभी एक लीडरशिप ट्रेनिंग अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज CXO का ट्रेनिंग हो रहा है, इट इज नॉट ऑन टेक्नोलॉजी, उसका जो कोचिंग हो रहा है, बिकॉज आई डू कोचिंग ऑल्सो, वो कोचिंग जो है ना, इट हैज टू बी 360 degree, कि कोई इंसान जो है उसका लाइफ इज लाइक अ पाई, यू नो पिज्जा का जो वो होता है ना, एक एक स्लाइस जो है एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डिपिक्ट करता है. उसमें करियर या वर्क या जो भी है वो एक स्लाइस है, उसके साथ उसका रिलेशनशिप, उसका जो फैमिली, उसका जो पैशन एंड उसका अपना जो हॉबीज, फ्रेंड्स, वो सब चीज मिला के उसकी जिंदगी है. तो अगर हम सिर्फ एक ही चीज में फोकस करेंगे तो That will not yield. आप हेल्थ उसमें सफर करेगा, या रिलेशनशिप सफर करेगा, या हो सकता है पैसे बहुत कमा रहे हैं लेकिन आपकी बॉन्डिंग ही नहीं है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो एक कोई फुलफिलमेंट नहीं फील होगा. सो इस फुलफिलमेंट को फील करने के लिए ये जो लाइफ में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और ये हमें देता है स्पिरिचुअलिटी. ये लोग समझने लगे हैं कि हमें सेंटर्ड रहना है, हमें कॉन्शियस रहना है, इमोशनली कैसे हम रेगुलेटेड रह सकते हैं, और पर्पस ड्रिवन लाइफ लीड करना है. हम 80 साल में पहले क्या था कि रिटायरमेंट तक कर लिया, फिर घर बना लिया, बच्चे बड़े हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, वो देख के हम खुश होके हमारी जिंदगी, क्योंकि लाइफ इजी था, लाइफ वॉज सिंपल दैट टाइम, तो उनको दैट वॉज वॉट दे सीक्ड. बट आज की जिंदगी में लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि फाइनली वी हैव टू सोचना पड़ता है कि फुलफिलमेंट कैसे फील होगा. हर स्टेप में हमें ये फील होने लगा है. तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है अभी हमें और ज्यादा डीपली रूटेड होना पड़ेगा ये ह्यूमन नीड्स के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, एंड जो हो रहा है, एंड इट विल ओनली इंक्रीज.
0: जी बिल्कुल सही बात है. आगे फ्यूचर में यूं तो हम भविष्यवेत्ता नहीं है, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट थिंग्स टू टर्न अराउंड एंड अच्छी तरीके से हमारी जिंदगी को इन्फ्लुएंशियली अच्छा बनाने की कोशिश हो रही है. बहुत बहुत बढ़िया। तो महुआ मैम, बस चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपके थॉट्स जो हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, उनको क्या कहना चाहोगे आप? गिव अ मैसेज टू देम सो दैट दे कैन टेक इट होम, थिंक ओवर इट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग।
1: देखिए, सिंपल सा मैसेज यही है कि लाइफ को सिंपली लीड करिए, कोई जरूरत नहीं है कॉम्प्लिकेशंस का, डजंट मैटर एक्सटर्नल वैलिडेशन का, वो थोड़ा सा पॉज करिए। मुझे पता है आंख जैसे ही बंद करते लगता है सारा दुनिया छूट जा रहा है हमसे, हम पीछे रह गए हैं। ये सबसे बड़ा डर होता है हमारा लाइफ का, बट हर मूवमेंट प्रोग्रेस नहीं होता है। आप मूवमेंट तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, बट प्रोग्रेस नहीं है वो, प्रोग्रेस तो है जो आप अपना गोल की तरफ कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है पॉज करना जरूरी है, थोड़ा सा रुक रुक के, एक एक फेज में, साल में एक बार, 5-6 दिन का 4 दिन का आप रुक के ना थोड़ा सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करिए अपना लाइफ का, कि मैं सही भी जा रहा हूँ कि मुझे रास्ता थोड़ा कोर्स करेक्शन करना है। बस ऐसे आप करते रहोगे ना तो जिंदगी एकदम, आप कहीं गलती का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गलती करेंगे भी तो यू हैव टाइम, यू हैव देन पॉज टू रियलाइज इट एंड मेक करेक्शंस। बस सिंपल सा है।
0: राइट, अमेजिंग। सो दोस्तों, टेक होम मैसेज जो एटलीस्ट पूरे बातचीत में महुआ मैडम से मुझे मिला है, वो इमीडिएटली तो यही है, जस्ट गो स्लो, द म्यूजिक वॉन्ट लास्ट बट योर लाइफ शुड बी, सो टेक इट ईजी, इतनी तेज तेज भागने की जरूरत नहीं है, टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक, थिंक, अपने आप के साथ वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए। महुआ मैम ने कहा ना, सुबह सुबह एक थोड़ा सा मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये सब क्या है, ये वक्त अपने साथ गुजारने की बात है। बहुत खूब महुआ मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर अ वेरी वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस वी हैड टुडे। बहुत सारी बातें अभी सोचने की हैं। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक, आई डू मेडिटेशन, बट आज की रात में मेडिटेशन का यही टॉपिक होने वाला है मेरे लिए। लेट मी जस्ट थिंक, आपने जो कुछ भी कहा है, तो थैंक यू सो मच महुआ मैम, आपका बहुत बहुत आभार है। I would like to sincerely convey my regards to you and thanks to you. Thank you, ma'am.
1: Thank you so much, Sameer ji. It was so nice. बहुत interesting बातें की आपने आज, और privilege है, मैं भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका और आपके चैनल का, और आशा करती हूँ कि जो भी हमारे ऑडियंस हमें सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ भी थोड़ा वैल्यू एड हो पाएगा। With that, thank you so much.
0: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है संगीत की दुनिया का सरगमी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, जीवन में अक्सर हमसे कहा जाता है कि एक रास्ता चुनिए और उसी पर चलिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये साबित कर देते हैं कि अगर जुनून सच्चा हो तो एक नहीं कई रास्तों पर एक साथ सफलतापूर्वक चला जा सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही बहुआयामी व्यक्तित्व मौजूद है जिन्होंने चिकित्सा और कला दोनों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। पेशे से एक प्रतिष्ठित पीडियाट्रिशियन जो वर्षों से नन्ही जिंदगियों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन सफेद कोट के पीछे एक संवेदनशील कलाकार भी है, एक सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट और पोएट। 11वीं कक्षा में शुरू हुआ संगीत का सफर उन्होंने मैड्रास मेडिकल कॉलेज के म्यूजिक बैंड तक ले गया, जहां उन्होंने न केवल हिंदी बल्कि तमिल गीतों से भी श्रोताओं का दिल जीता। उन्होंने इंडियन आइडोल के टॉप 100 कंटेस्टेंट्स में अपनी जगह बनाई, देश भर के कवि सम्मेलन में भाग लिया, भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान

0: गलत स्वर हो सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण शर्मा, पीडियाट्रिशियन, सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट, पोएट। डॉक्टर साहब, रेडियो के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच जो आपके इस मंच पर मुझे आने का मौका मिला।
0: तो डॉक्टर साहब, तो ऐसा करते हैं, शुरुआत शुरुआत से ही कर लेते हैं और शुरुआत आपके बचपन से करते हैं। कुछ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, फॉर्मेटिव ईयर्स के बारे में बताइए, कैसे आपका बचपन किन परिस्थितियों में, कैसे किन वैल्यूज के बीच बीता, कुछ उसके बारे में बताइए।
1: हाँ सर, हम लोग जो है बेसिकली मेरा जन्म जो है मथुरा के पास एक छोटा सा गांव है वहां हुआ, आयरा केड़ा नाम से गांव था।
0: अच्छा।
1: हम लोग जो है तो फैमिली सारी जो है विलेज से, सब गांव से थे। पापा का जो है गवर्नमेंट जॉब में था, यूपी गवर्नमेंट जॉब में जॉब थी उनकी। पापा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे एज ए इंस्पेक्टर थे। तो
0: अच्छा।
1: हम लोगों का स्टार्टिंग का एजुकेशन गांव में हुआ। उसके बाद पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी तो हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो है जा करके रहे। फिर सेवंथ क्लास से हम लोगों ने मथुरा शिफ्ट हो गए। हम लोग फिर मेरा उसके बाद की सारी एजुकेशन मथुरा में हुई। मथुरा में मैं सेंट पॉल्स स्कूल्स में रहा 10th तक। फिर मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा और माता जी सरला शर्मा जी जो है वो एक हाउस वाइफ है। मेरी एक छोटी बहन है जो कि दिल्ली सेटल्ड है। तो हम छोटी सी चार लोगों की फैमिली, मध्यम लोअर मिडिल क्लास, ना बहुत ज्यादा पैसे, छोटी छोटी खुशियां हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती थी। बस यही जीवन एक आम जीवन रहा सर।
0: ये तो बहुत ही मजा आ गया। आप मथुरा के निवासी हैं, कृष्ण की नगरी के निवासी हैं, ये तो सुन के बहुत ही मजा आ गया आपकी बात का। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये डॉक्टर बनने का विचार कैसे मन में आया? क्या बचपन में सोच लिया था कि डॉक्टर ही बनना है, या बाद में धीरे धीरे ये विचार बनता गया और आप आगे बढ़ते गए इस लाइन?
1: एक्चुअली सर जो है क्योंकि बहुत ही माली हालत से थे हम लोग जो है, एक लोअर इकोनॉमिक स्टेटस मान लो हमारा था। तो हम जो है स्टार्टिंग में तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये डॉक्टर जैसा ड्रीम तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। तो जब 11th 12th में पहुंचे तो ऐसा लगने लगा कि हर कोई कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रखता है अपने बच्चों से। तो हमारे माताजी पिताजी ने भी कुछ अपेक्षाएं रखी और हमसे दोस्तों के थ्रू मुझे पता पड़ा कि जो है डॉक्टर बनने के लिए कोई एग्जाम होता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। बट क्योंकि हम कोई बहुत होनहार बच्चे नहीं थे शुरुआत से ही, तो ज्यादातर दोस्तों ने सबने यही कहा कि नहीं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये तो क्या है, जिले से कोई एक निकलता है साहब, आगरा से कोई एक निकलेगा, मथुरा से कोई एक, तो ये बस की बात नहीं है तुम्हारे। वो लोगों ने बहुत लैग पुलिंग करी कि जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर उस समय उस दौरान जब सब लोग नेगेटिव शो कर रहे थे, उस समय ये बीच अंदर जो है पनपा कि नहीं, इन सबको मुझे रॉन्ग प्रूव करना है। तो जो है फिर उस दौरान एक ऐसा वाक्या हुआ मेरे साथ में कि जो जीवन भर हमेशा याद रहता है मुझे, कि मेरा 11th में एडमिशन जो है हम लोग केंद्रीय विद्यालय में जब लेने पहुंचे तो वहाँ के प्रिंसिपल जो थे उन्होंने मेरा एडमिशन फॉर्म देखा और मेरे क्या 10th में जो है परसेंटेज काफी कम थे, 58% कुछ थे। तो
0: अच्छा।
1: मैंने जब एडमिशन फॉर्म में लिखा था साइंस बायोलॉजी लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जो है साइंस बायोलॉजी क्यों लेना चाहते हो। तो उन्होंने मैंने कहा कि सर मेरे को जो है डॉक्टर बनना है। तो उन प्रिंसिपल सर ने वो मेरा फॉर्म मेरे सांखों के, मेरे पिताजी और मैं बैठे थे, मुझे आज तक याद है वो जो लम्हा,
0: जी।
1: उन्होंने मेरे सामने वो फॉर्म फाड़ा था और मेरे सामने मेरे ऊपर फेंक दिया था। वो जो है बोलते हैं कि इस परसेंटेज पे तो बेटा तुम जानवरों के डॉक्टर भी नहीं बन सकते, इंसानों के तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो लम्हा था। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि जो है जानवरों का नहीं, अब इंसानों का ही डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। तो वहां से शुरुआत हुई सर इस चीज की।
0: बहुत ही बहुत ही एक ट्रिगर था जो आपकी लाइफ में हुआ, और
1: जी सर,
0: मतलब एक तरह से कुछ कुछ धन्यवाद उन हेडमास्टर साहब को भी देना चाहिए कि जो ऐसी बात कह दी
1: मैं
0: आपको। हाँ

0: मैं तो जब मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ था मैं गया था, मैंने कहा
1: अच्छा
0: एक बार उनका आशीर्वाद जरूर लूंगा, अगर काश उन्होंने उस दिन वो नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं होता।
1: अरे क्या क्या क्या बढ़िया बात पे
0: बिल्कुल
1: आपने शुरुआत कर दी। एक ऐसी घटना है जो हिला के रख देती है आदमी को, और बचपन के
0: बिल्कुल
1: उस
0: सर,
1: एज में अगर कोई ऐसा कर दे तो वो आपके हमेशा एक वो रह जाता है आपके दिमाग के अंदर बात।
0: जी जी सर,
1: बिल्कुल
0: वो
1: सही,
0: भी मेरे पापा के सामने, और मेरी नौ वो इंसल्ट सिर्फ मेरी नहीं थी, मेरे
1: हाँ
0: फादर की भी इंसल्ट
1: सही
0: थी, तो
1: सही
0: मुझको वो चीज 4 गुना चुभी की जो है, मतलब कि मेरे फादर को ऐसा लगा कि जो है क्या कहते हैं ये पता नहीं क्या करेगा लाइफ में, तो
1: सही बात है, सही बात है।
0: सर
1: नहीं, तो
0: इस तरह से सर।
1: बिल्कुल, तो आप ने संगीत की औपचारिक शिक्षा ली है क्या कभी, और फिर मेडिकल एंट्रेंस की भी तैयारी की, संगीत और इन दोनों को साथ लेके चलना कितना मुश्किल होगा उस टाइम, बचपन से ही आपको
0: हाँ
1: संगीत का शौक लग गया था, कैसे
0: जी
1: करते
0: जी
1: थे आप
0: सर,
1: भी?
0: एक्चुअली फिर जो है सर मेरे को जो है एडमिशन बायोलॉजी मिली थी केंद्रीय विद्यालय में, मुझे वहां पे जो है मेरे नंबर तो इस लायक थे नहीं, बट प्रिंसिपल सर ने वहां जो है बड़े बहुत ही हम्बल थे, बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने कहा ठीक है बेटा हम तुम्हें दे देते हैं एडमिशन बायोलॉजी में, कुछ करके दिखाओगे तो। लेकिन तो उसके दौरान वहां मैं बायोलॉजी ली, लेकिन स्कूल में फिर थोड़ा जो है जब एकेडमिक चालू हुई, क्लासेस चालू हुई, तो जो है संगीत की जो तरफ मेरा रुझान बढ़ा, स्कूल की तरफ से आया पहले। फिर जो है मैं एक हमारे क्या कहते हैं, मेरी सिस्टर जो है वो संगीत सीखने जाती थी एक मैडम के पास, तो मैं
1: ओके
0: उसको छोड़ने जाता था सिस्टर को, तो
1: अच्छा
0: मैं वहां बैठ जाता था जो है छोटी सिस्टर के साथ में। तो वो आज भी याद है, मैम का नाम था वंदना, वंदना मैम थी वो, अब वो संगीत सिखाती, मैं वहां बैठा रहता सब बच्चे देखते, तो मेरे को उस दौरान ऐसा लगा कि मैं भी गा सकता हूँ, तो मेरे अंदर वो रुचि पैदा शुरू हुई। तो फिर मैंने मैम से सीखना शुरू करा थोड़ा थोड़ा, तो उस दौरान मैंने एक थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग संगीत में लेना शुरू करी। बट मीन वाइल जो है क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर बहुत था, तो बहुत ज्यादा उसमें जो है नहीं घुस पाया फॉर्मल ट्रेनिंग में, तो जो है तो मैं खाली जितना समय मिल पाता था तो मैं उनके पास जाकर के जो है संगीत के बारे में जानता था।
1: हाँ, तो ये एक तरह का संजोग ही रहा कि आप अपनी सिस्टर को छोड़ने जाते थे और वहां बैठे रहते थे, वही जैसे गुरु पढ़ा तो किसी और शिष्य को रहा है, लेकिन साथ में बैठे कोई और भी सीख लेता
0: यही हुआ सर, यही हुआ, यही
1: है। हाँ, कुछ कुछ कुछ बिल्कुल एकलव्य
0: वहां पे
1: का,
0: शुरुआत हुई थी संगीत के सफर की।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल एकलव्य जैसी बात हो गई। चलिए, तो डॉक्टर साहब, आप अपन ने संगीत की बात कर ली है, तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा माहौल को संगीतमय बना ही लेते हैं। आप अगर इस टाइम कंफर्टेबल हो तो आप एक कोई आपका कोई पुराना गीत या कोई भी एक गीत, उसका मुखड़ा अगर आप सुनाना चाहें तो सुनाइए, बिल्कुल स्वागत है आपका।
0: जी जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनाता हूँ।

0: सो सर, ये गाना था मेरा लम्हे, मेरा पहला ओरिजिनल कंपोजिशन रिकॉर्ड किया था सर।
1: मजा आ गया साहब, डॉक्टर साहब। ये तो हमारे यहाँ तो सब लोग आते हैं, थोड़े बहुत पुराने हिंदी के सॉन्ग सुनाते हैं। ये इस तरह से कंपोजिशन और किसी ने गिटार पे गा के सुनाया तो हमें तो बहुत ही मजा आ गया। एकदम नई
0: थैंक
1: चीज
0: यू,
1: हो गई हमारे रेडियो स्टेशन के लिए। तो
0: थैंक यू
1: वाह,
0: सो मच सर,
1: बहुत
0: थैंक यू
1: बहुत
0: सो मच।
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जब ये पीछे लम्हों की बात चलिए डॉक्टर साहब, तो ऐसा करते हैं कि कुछ पुराने अपने मेडिकल कॉलेज चेन्नई के किस्से भी तो कुछ होंगे आपके साथ में, कुछ यादें होंगी, और जब आपने ये गाना कंपोज किया होगा तो उससे जुड़ी कोई बात हो तो कुछ याद दिलाइए हमारे को, फिर आपके म्यूजिक बैंड के सीख के बारे में बात करते हैं।
0: जी सर, जी सर। कॉलेज में तो जैसे ही हमारा सिलेक्शन हुआ था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में, तो उस समय काउंसलिंग के दौरान जो है सबका ये रहता है कि अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। तो
1: जी
0: काउंसलिंग में जो है उस समय टॉप 3 में था मद्रास मेडिकल कॉलेज। इंडिया टुडे की एक मैगजीन में जो है एक रैंकिंग आती थी,
1: जी
0: तो उसमें जो है क्योंकि मेरी रैंक अच्छी थी, मेरा 734 कुछ रैंक था ऑल
1: अरे
0: इंडिया
1: वाह।
0: में, तो मेरे को कॉलेज सारे अवेलेबल थे, मिल रहे थे मुझे साथ, लेकिन मेरे को था कि टॉप 3 कॉलेज में जाके पढ़ाई करनी है। तो उस समय बहुतों ने मना किया कि नहीं, वहां पर बहुत चैलेंजिंग रहेगा, लैंग्वेज डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट मुझे तो वो और ज्यादा वो मजा आ रहा था कि ये चैलेंज भी, और लाइफ में कम से कम इसी दौरान हम एक नई लैंग्वेज सीखेंगे फिर। तो सर इस तरह से मैंने मद्रास मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। तो अब एडमिशन लेने के बाद में वहाँ पे थोड़ी सी स्टार्टिंग में तो काफी प्रॉब्लम्स रही, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इश्यू। दूसरा था इंग्लिश, हम बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं जानते थे, वहां पे बिना इंग्लिश के काम ही नहीं
1: सही
0: चलता।
1: सही बात है।
0: तो लेकिन सो ऑल जो है हमने सब चीजें सीखी सर हमने चेन्नई में। फिर जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तो तमिल में भी इंटरेस्ट आने लगा, धीरे धीरे इंग्लिश भी जो है सीख गए, लेकिन तमिल जो लैंग्वेज थी लोगों को, बाकी मेरे मित्रगणों को जो है थोड़ा सा लगता था कि दे वाज फीलिंग प्रेशर की जो है उनको, यार ये तमिल और सीखनी पड़ेगी जब जा करके यहाँ रहेंगे। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे साथ कुछ ये था कि मुझे मजा आ रहा था तमिल सीखने में। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये पहले ही आ जाते यहाँ तो इतना अच्छा लग रहा था। तो अब उस लैंग्वेज को सीखने के साथ साथ ही जो है वहाँ कॉलेज के जो मैंने मेरे इस तरह के जो लड़के जो संगीत में रुचि रखते थे, क्योंकि तो उस कॉलेज में मेरे से पहले कभी कोई म्यूजिक बैंड नहीं था।
1: अच्छा
0: और जी सर, तो हम लेकिन चेन्नई में क्या होता था कि जैसे वहाँ इंट्रा चेन्नई और इंट्रा इंटर तमिलनाडु वाले पूरे जो मेडिकल कॉलेज होते हैं तो उनमें फेस्ट होते थे, तो उनमें कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो अब वो लेकिन हमारे कॉलेज से कभी कोई बैंड जाता ही नहीं था परफॉर्म करने के लिए। बाकी हम जब किसी कॉलेज के, जहाँ जैसे चेन्नई में दो मेडिकल कॉलेज और हैं जो गवर्नमेंट के हैं, एक स्टेनले मेडिकल कॉलेज था, एक किलपॉक मेडिकल कॉलेज। अब हम जब वहां जाते तो देखा हमारी कॉलेज की तरफ से कोई बैंड ही नहीं आता है। तो उस
1: अच्छा
0: समय ये विचार आया मेरे की जो है यार कोई बात नहीं, मेरे को जो है तमिल का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं, बट फिर भी कुछ गाने मैंने तमिल में सीखे, और फिर मैंने अपने जैसे कुछ मित्रगण ढूंढे और मैंने एक बैंड बनाया। उसके बाद फिर हम जो है चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, कई जगह जो है क्या कहते हैं अपने कॉलेज की को रिप्रेजेंट करते थे बैंड के थ्रू जो है म्यूजिक फेस्ट में।
1: डॉक्टर
0: जी
1: साहब,
0: सर,
1: गजब का काम किया आपने। देखिए पहली बात है कि आपने साउथ के कॉलेजेस का, मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट, वहां का थोड़ा सा एजुकेशन का स्टैंडर्ड तो हमेशा से अच्छा रहा ही है। तो
0: जी
1: एक तो
0: सर,
1: वहां
0: जी
1: एडमिशन ले लिया, फिर आपने जाके वह तमिल सीख ली, विच इज नॉट एन इजी लैंग्वेज टू लर्न।
0: जी
1: मतलब
0: सर, जी
1: कोई
0: सर,
1: इजी लैंग्वेज नहीं है तमिल सीखना साउथ, और स्पेशली तमिल। मलयालम कुछ
0: जी
1: लोग सीख
0: सर,
1: लेते हैं
0: राइट
1: लेकिन तमिल नहीं सीख पाते। और
0: सर,
1: फिर
0: राइट
1: आपने
0: सर,
1: उसमें गाने भी गा लिए, और
0: जी
1: आपने म्यूजिक
0: सर,
1: बैंड भी बना लिया, और फिर
0: जी
1: कंपटीशन में
0: सर,
1: भी जाने लग गए। तो कितने सारे काम आपने कर लिए, मतलब आप तो बिल्कुल एक तरह से माउंट एवरेस्ट चढ़ गए वहां का। वह बहुत
0: थैंक यू
1: मुश्किल।
0: सर, थैंक यू,
1: हाँ,
0: थैंक
1: बहुत बड़ी
0: यू
1: बात
0: सो
1: है,
0: मच
1: बहुत
0: सर,
1: बड़ी
0: थैंक
1: बात
0: यू,
1: है, मजा आ गया।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: तो तमिल भाषा में आपने गाने भी सीख लिए, तो एक तमिल टेलीविजन म्यूजिक चैनल पर भी आपका एक प्रदर्शन हुआ है, वो कैसा
0: जी सर,
1: एक्सपीरियंस था, वो कैसा एक्सपीरियंस था?
0: एक्चुअली सर वो कॉलेज फेस्ट से ही जो है मेरे को जो है एक टेलीविजन म्यूजिक शो था, तो हम लोगों ने कोई उसके लिए अलग से ऑडिशन नहीं दिया, हमारा कॉलेज का मेरा परफॉर्मेंस देख करके उस जो वहाँ पे जजेस आते थे तो उन्होंने जो है अप्रोच किया था मुझे कि आप जो है क्या कहते हैं एक हमारे शो में जो है तमिल गाना गाओगे क्या। मैंने डेफिनेटली क्यों नहीं, एक जया टीवी करके वहाँ बहुत फेमस
1: हाँ,
0: जो
1: बहुत
0: है
1: फेमस है,
0: कंटेस्टेंट
1: बहुत फेमस है,
0: बहुत
1: आई नो। हाँ
0: जी, तो उस पे जया उनके जो है वो प्रोड्यूसर थे, एक प्रोग्राम आता था कोई सिंगिंग का, तो उस प्रोग्राम में जो है मेरे को जो है एक बार गाना गाने का मौका मिला था जो है, तो मैंने वो जीवन भर याद रहेगा, वो मैंने तमिल गाना गाया था टेलीविजन
1: तो
0: पे।
1: ऐसा करते हैं, आपसे बाद में एक हिंदी गाना सुनते हैं, कुछ हमें एक तमिल गाने की लाइन आप कैसा गाते थे कुछ सुना सकते हैं क्या आप, हल्का सा
0: जी जी बिल्कुल
1: छोटी
0: बिल्कुल
1: मोटी
0: सर, एक दो
1: सुन।
0: लाइनें याद है मुझे
1: हाँ
0: अभी।
1: सुनाइए, थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि हमारे इस शो में तमिलियंस बहुत जुड़ते हैं रेडियो पे।
0: अरे वाह सर वाह, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो कोशिश करता हूँ सर वो
1: हाँ बिल्कुल
0: गाने की
1: बिल्कुल
0: जो है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ले उन श्वास तई तन आग तेड़ी पाते, मैं अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ये तमिल इसकी लाइनें आगे की याद नहीं आ रही सर।
1: हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। तो चलिए यहाँ इस तमिल गाने पे और आपके म्यूजिक चैनल के नाम पे रुक के एक हम ब्रेक लेते हैं और एक अच्छा सा गाना आपका सुनते हैं, बढ़िया सा, और फिर आगे इस बातचीत को जारी रखते हैं।
0: श्योर सर श्योर सर।

0: हाँ, वेलकम बैक डॉक्टर साहब। तो अब आते हैं एक और आपके जीवन के बहुत ही बड़े संगीतमय अनुभव की तरफ, विच इज इंडियन आइडोल। इंडियन आइडोल के मंच, प्रतिष्ठित मंच तक पहुंचना बहुत गायक का सपना होता है और कोई आसान काम भी नहीं है। तो ये इंडियन आइडोल की जर्नी आपकी किस तरह से शुरू हुई, ये कैसे किया आपने?
1: जी सर, मैं उस समय था सेकेंड ईयर MBBS में, तो इंडियन आइडल 2 उस समय स्टार्ट हुआ था ऑडिशन। तो हमारा सेकेंड ईयर MBBS में ये जो प्रॉप होता है हमारे, क्या 1.5 ईयर्स का होता है वो प्रॉप, तो
0: अच्छा,
1: एग्जाम भी लेट होते हैं। हमारा सेकेंड ईयर शुरू ही हुआ था उस समय, तो जो है उस समय ये इंडियन आइडल ऑडिशंस की डेट आई, तो जो है उस समय चेन्नई में ऑडिशन नहीं था उसका, तो हमें मुंबई के लिए फिर जो है डेट और वो थी, टिकट बुक कराई और बिना घर बताए हम मुंबई पहुंच गए।
0: ओके, हाँ
1: तो सर वहाँ जो है अगर पहुंच रहे, रात को पहुंचे थे, और सुबह जहाँ जो ऑडिशन का जो स्टेडियम था वो ऑडिटोरियम, वहां जाकर के देखा तो वहां जो लाइन थी वो, मतलब कि लोग एक दिन शाम से, मतलब अगले दिन सुबह, और 24 घंटे पहले से लाइन में लगे हुए थे लोग।
0: अच्छा,
1: और तो फिर हम लोग रात को वहां जाके लगे लाइन में, और अगले दिन जो सुबह ऑडिशन टाइम स्टार्ट होना था, जब तक तो वो सारी लाइन एक स्टेडियम में घुमानी पड़ी। इतनी इतना रश मैंने लाइव में नहीं देखा था एक किसी ऑडिशन के लिए। तो
0: अच्छा
1: सर उसमें फिर जो है सर, एक्चुअली क्या होता है कि जब ये ऑडिशंस में स्टार्टिंग के राउंड जब नंबर आए, तो आदमी सोचता है कि जब टीवी में देखते हैं कि अन्नू मलिक है, सोनू निगम जी बैठे हैं, तो सीधा उन्हीं से शुरुआत होती है, ऐसा नहीं होता। एक स्टार्टिंग के राउंड्स में तो काफी अननोन जो है जजेस होते हैं, जो कि फेमस नहीं है, संगीत के जो है ज्ञाता लोग हैं, वो लोग एक बेसिक सा स्क्रूटनी कर देते हैं। तो पहले वो राउंड हुआ एक, उसके बाद में फिर जो है हमें शाम तक बिठाया, फिर जो है अगले शाम को फिर एक और राउंड था जो उसमें सेलेक्ट हुए थे, फिर अगले दिन जो है फिर एक दिन ब्रेक था 1-2 दिन, फिर हमें वहीं पे ही होटल दिया गया रुक के, जो लोग सेलेक्ट हो गए थे जो है। फिर उसके फिर हमारा जो है टॉप 100 जो है, मैं जब पहुंचा था तब सारे इंडिया से उन्होंने फिर कंटेस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए थे जो सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद हमें फिर हमारे टॉप 100 में जब सारे हो गए थे, उस दौरान फिर जो है अनु मलिक जी, सोनू निगम जी और एलिशा चेनॉय थे उस समय जज थे।
0: अच्छा,
1: तो उस दौरान फिर हमसे उनसे हमारी मुलाकात हुई, हम लोग उनसे मिले, उन्होंने बेसिक सारी बताई, बातें बताई किस तरह गाना है। उस दौरान जो है काफी अलग अलग लोगों से और संगीत के इतने धुरंधर लोगों से जो है मुलाकात हुई, उस समय बड़ा टेंशन भी हुई, यार हम तो कुछ भी नहीं है। लोग तो मतलब दिन रात बस म्यूजिक ही म्यूजिक कहे हुए, हम लोग तो जो है कहाँ है, उनके सामने तो कहीं डटते ही नहीं हम। लेकिन फिर भी अपना जो एक जुनून अलग था कि भाई नहीं, करना है कुछ, करना है जरूर। तो जो है उस दौरान जो है फिर एक राउंड में मैं बाहर निकला था, जब टॉप 50 के लिए सिलेक्शन हो रहे थे, तो उसमें अन्नू मलिक जी ने मुझसे सवाल पूछा था कि जो है कि अरुण आप ये बताओ कि आज आपको मेडिसिन और संगीत में से एक चीज चुननी है तो क्या चुनोगे, वो आज ही डिसाइड करो। तो सर
0: अच्छा
1: अब जो है मेडिसिन, और उस समय मैंने बोल दिया सर मेडिसिन के लिए तो मैंने दिन रात मेहनत करी है, कैरियर है वो मेरी लाइफ का, म्यूजिक मेरा पैशन है, तो पैशन के लिए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा सर, जब बहुत मेहनत करी है, पैशन मेरा पैशन कंटिन्यू कर सकता हूँ कैसे भी। तो उस दिन मेरे को बाहर कर दिया गया था इंडियन आइडल से जो है।
0: अच्छा, तो ये मतलब खैर जवाब तो आपने सही दिया, लेकिन ये भी एक रीजन उनके दिमाग में रहा हो कि ये पूरी तरह संगीत को समर्पित नहीं है। लेकिन
1: हाँ
0: ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो खैर बाद में भी जो सब तरह के लोग जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल है
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: आपने माहौल बड़ा अच्छा बताया है इंडियन आइडल का। तो कुछ और इंडियन आइडल में किस तरह से ये सब कराओके पे ही होता है वहां ये गाना, या लाइव ऑर्केस्ट्रा चलता है जब आप वहां अपना ऑडिशन देते हैं, क्या होता है?
1: नहीं, कैरियोके तो बिल्कुल नहीं होता सर वहाँ पे, वहाँ
0: अच्छा,
1: लाइव होता है सब कुछ, ज्यादा बहुत ज्यादा म्यूजिशियंस नहीं होते, एक जो है मोस्ट ऑफ द टाइम 3 ही लोग होते थे, एक पियानो पे जो है सिंथेसाइजर पे, एक जो है गिटार, और एक जो है ड्रम्स बीट्स के लिए,
0: अच्छा
1: वो
0: अच्छा
1: जो
0: अच्छा
1: पैड आता है पैड पर
0: अच्छा अच्छा
1: बस,
0: अच्छा अच्छा
1: तो उसी पर ही ज्यादातर स्टार्टिंग के जो राउंड्स होते थे। ये जो अपन देखते हैं पूरा बैंड के साथ में जो टीवी पे जो आता है, ये तो टॉप 20-30 में
0: वाह,
1: जब आ जाते हैं, जब शुरू होता है ये
0: तब
1: लाइव
0: शुरू होता है,
1: टेलीकास्ट।
0: तब शुरू होता है। ओके, कोई ऐसी यादगार, कोई ऐसी सीख या कोई अनुभव इंडियन आइडल से रिलेटेड, आप जब इन लोगों से बात करते थे, जजेस से या अपने साथियों के साथ, कोई ऐसा रहा कोई जो अभी भी आपको याद आ जाता है और हंसी आ जाती है उस बात पे याद करके?
1: काफी किस्से रहे सर जो है उस दौरान जो है, लेकिन जो मैंने सीखने वाली चीज ये थी कि जो है वही जो जब मैंने MBBS के लिए जब अपन मेडिकल की प्रिपरेशन करते थे, तो हमें हमारे जो सर थे कोचिंग में, तो उनका एक दादा बेटा कि जो है ना बीच के लोगों को कुछ नहीं हासिल होता है ना, या तो आपके अंदर जो है जुनून है तो आप हासिल कर पाओगे, और अगर जुनून नहीं है सिर्फ कई लोग क्या यहाँ मैं देख लेता हूँ एग्जाम दे के हो गया तो डॉक्टरी कर लेंगे, वो नहीं होगा। तो वो चीज जो भी मैंने सेम चीज वहां देखी कि संगीत में जुनून चाहिए, जुनून आपको पीछे नहीं हटना है, अगर जुनून है तो आप कुछ भी कर जाओगे, जुनून नहीं है सिर्फ जो है क्या कहते हैं लेट्स सी, तो वो लेट्स सी वाला सीन नहीं होता। बिल्कुल
0: बहुत बहुत गहरी बात कह रही डॉक्टर साहब आपने। अच्छा, क्योंकि ये संगीत एक ऐसा महासागर है, पूरी जिंदगी निकाल दी है इसमें क्लासिकल सिंगर्स ने, और उनको अगर आप देखो तो एक महासागर है जिसमें लोग चलते ही जाते हैं, चलते ही
1: जी
0: जाते
1: सर,
0: हैं।
1: नो डाउट नो डाउट नो डाउट
0: बहुत,
1: नो डाउट।
0: संगीत तो एक गजब का ही है। मैं तो अभी भी, अब यहाँ जयपुर में हर रोज कोई नए प्रोग्राम होते रहते हैं, लोग गाना गाते हैं, हर तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, और बढ़ती जा रही है, भीड़ भी बढ़ती जा रही है।
1: नो डाउट सर, बिल्कुल बढ़ती जा रही है, बिल्कुल
0: सही
1: बिल्कुल।
0: बात है। चलिए,
1: फॉर मी एक्चुअली म्यूजिक इज नॉट जस्ट क्या कहते हैं कोई एक कला नहीं है, मैं तो एक्चुअली म्यूजिक को एक तरह से मेडिटेशन है।
0: बिल्कुल
1: मुझे
0: सही,
1: ऐसा लगता है कि आदमी जितना म्यूजिकली इन्वॉल्व है ना, वो काम अपने आप को अपने कंट्रोल रहता है उसका अपने ऊपर।
0: तो चलिए रुक के यहाँ फिर एक आपका गाना सुनते हैं और इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं। इतनी बढ़िया इंडियन आइडल की बातें आपने हमें, हमारे साथ शेयर कर दी हैं, फिर
1: थैंक यू
0: एक
1: सर,
0: गाना
1: थैंक यू
0: सुनते
1: सर,
0: हैं आप।

0: हाँ डॉक्टर साहब, तो वेलकम बैक। अब आते हैं थोड़े से आपके प्रोफेशन के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट और पीडियाट्रिक्स में स्पेशलाइजेशन के दौरान संगीत के कुछ समय के लिए आपको पीछा रखना पड़ा होगा, तो वो दौर कैसा रहा होगा आपने जब बिल्कुल ही अपने इसकी तैयारी शुरू की स्पेशलाइजेशन की?
1: जी सर, जी सर, वो भी बड़ा चैलेंजिंग था। वो सारा दौर मेरा जयपुर आके ही शुरू हुआ था सर।
0: ओके, अच्छा।
1: मैंने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद मैं फिर जॉब करी कई जगह। उस दौरान मैंने सीएम रहा, मैं सीएमओ रहा, नोएडा में, दिल्ली में, चेन्नई में
0: अच्छा
1: भी जॉब करी थी मैंने। फिर
0: अच्छा
1: मैं जयपुर में आफ्टर एमबीबीएस मैं जूनियर रेजिडेंट रहा। यहाँ नारायण विद्यालय से शुरुआत हुई थी,
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: तो हुआ। उसके बाद फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हो गया था। तो मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ वो जो हुआ नागपुर से, तो
0: ओके, अच्छा।
1: जो है मैंने डीसीएच वहां से करा था फिर जो है। और लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेक्शन तक मेरे से संगीत बिल्कुल पीछे हट गया था, क्योंकि मैं दिन रात सिर्फ, क्योंकि उस समय शादी हो चुकी थी, तो जो है उस समय ये था कि अब लाइफ में जब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मिली तो क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर गवर्नमेंट जॉब में कहीं रहना पड़ेगा बाहर, और मैं जयपुर छोड़ना नहीं चाहता था। तो जो है फिर, लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने सोच लिया कि अब मेरे को अपना पैशन वापस से जिंदा करना है। और जो है फिर मैंने जो है संगीत की सारी चीजें दोबारा से जो है अपने आप को रिफाइन करा, रियाज शुरू करा प्रॉपरली। और उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान में बहुत ज्यादा जो है म्यूजिकली कॉलेज में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि पढ़ाई का ड्यूटी टाइमिंग्स का बहुत प्रेशर होता था। मतलब 24 24 घंटे, 38 घंटे, 36 घंटे हम सिर्फ ड्यूटी पे ही रहते थे, तो
0: सही बात
1: वो
0: है
1: उस दौरान तो पॉसिबल नहीं है सर।
0: ना, रेजर जब इंटर रेजिडेंसी की बात होती है, बहुत इम्पोर्टेंट,
1: राइट राइट सर। तो
0: बहुत
1: उसके बाद जब खत्म हो गया, उसके बाद में धीरे धीरे जो है दौर शुरू हुआ मेरा यहाँ जो है जॉब का, जॉब के साथ साथ फिर मैंने जो है अपना लिखने का जो शौक था उसको मैंने सोचा। मैं एक्चुअली क्या था कि मैं पुराने गाने जब गाता था कहीं पर, तो हर कोई क्या होता था कि आपको वॉइस को उस पुराने सिंगर से कनेक्ट करता है,
0: जी
1: अरे किशोर जी ने गाया है तो वो किशोर जी का अच्छा था, या आप वो तो लीजेंडरी सिंगर्स हैं वो लोग, तो उनसे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते देखो अपन लोग उसका। लेकिन तो उस दौरान फिर मैंने सोचा कि मैं लोगों को अपनी आवाज के गाने, खुद की आवाज में अगर मान लो सुनाऊं जो है, जो मेरे लिखे हुए कॉम्पोजिशन है, तो फिर मैंने गाने शुरू करे थे। कॉलेज लम्हे जो मेरा पहला गाना लिखा था कॉलेज की यादों को लेकर के, और वो मैंने किया, वो काफी पसंद किया लोगों ने। यह है उसके बाद सिलसिला चलता चला। फिर मैंने अभी इस समय 11 सॉन्ग्स रिलीज हो गए मेरे सारा भी।
0: अरे वंडरफुल। तो चलिए ऐसा करते हैं कि एक अपना कंपोजिशन कोई सुनाइए, आप एक मुखड़ा सुनाइए भले ही, फिर हम आपका वो वाला गाना भी सुनेंगे, रिकॉर्डेड भी। एक
1: जी
0: एक
1: जी
0: कोई मुखड़ा सुनाइए।
1: जी सर, मैं सुनाता हूँ। ये गाना जो मैं सुना रहा हूँ सर, ये अभी मेरा रिसेंट रिलीज है, मैं ही
0: हाँ
1: क्यों।
0: हाँ मैं क्यों राइट।
1: जिंदगी तू बता क्या इरादा तेरा, कुछ तो दे जवाब तू

0: जो भी छुपा है अगले मोड़ पे जिंदगी तू बता।
1: थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं और एक और आपका एक और गाना सुनते हैं आपका, और फिर हम बातचीत को जारी रखते हैं।
2: भूलिए जब जब बरसात आती है मेरी बेचैनी को मिले चैन जो इस दिल को।

0: हाँ डॉक्टर साहब, अब आते हैं आपके एक और दूसरे पैशन की तरफ, जो इसमें आपने भी बड़ी महारत हासिल कर ली है एज ए यूट्यूबर। तो 2018 में आपका पहला, जैसे अभी आपने बताया, ओरिजिनल सिंगल लम्हे, ये एल्बम रिलीज हुआ लम्हे,
1: जी सर,
0: जिसने
1: जी
0: आपने
1: सर, जी
0: स्वयं लिखा है, कंपोज किया है और गाया है।
1: जी सर,
0: तो
1: जी
0: वो कैसा लम्हा था जब पहली बार आपने इसको किया, और क्या किसी ने कोई प्रेरणा दी आपको कि आप करो इस तरह से, पहला गाना अपना कंपोज भी करो, लिखो भी और गाओ भी?
1: एक्चुअली सर जो है लिखने का जो प्रेरणा थी ये सडनली जो है मेरे अंदर, ये काफी समय पहले मैंने क्या शायरियां लिखना शुरू करा था।
0: जी
1: तो वो हो गए बात होगी जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो उस समय बस ऐसे ही कुछ लाइनें अगर मन में आई तो लिख दिया। तो जो वो जो एक शुरुआत थी धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। फिर जो है कुछ एक शायरी लिखी, फिर दो, फिर चार, ऐसे करके मैं एक अपनी डायरी में शायरियां लिखता चला गया। लेकिन कुछ पता नहीं था कि ये शायरियां कहाँ लेके जाएंगी, कुछ पता नहीं था इनका क्या होगा। लेकिन जो है एक यूं ही जो है एक मंच मिला मुझे चेन्नई में। चेन्नई में वाइल MBBS जो है एक प्रोग्राम में ही एक कवि आए थे, उनसे मुलाकात हुई। तो उनने कुछ कविताएं सुनी तो उन्होंने कहा कि जो है यार आप आओ हमारे साथ भी कवि सम्मेलनों में जोड़ो। उस दौरान मैंने जो है एक शुरुआत में एक दो कवि सम्मेलन करे, उसमें जो है बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। तो फिर मेरे अंदर वो और अच्छा लिखने की जो है
0: अच्छा।
1: इच्छा जागृत हुई। अब चेन्नई में ही जो है भाई मेरे को एक मौका मिला, एक एक्चुअली नेशनल कवि सम्मेलन का एक था। तो
0: अच्छा
1: उन्होंने, लेकिन उनका एक टॉपिक था, उन्होंने कहा कि इसमें जो विनर होगा उसको प्राइज मिलेगा। उन्होंने कहा था भ्रूण हत्या पर लिखना है आपको।
0: अच्छा अच्छा
1: तो उस दौरान एक मैंने कविता लिखी थी भ्रूण हत्या पे, और वो मैंने ताज चेन्नई में था वो प्रोग्राम, और काफी अच्छे अच्छे जज थे उसमें, काफी बड़े बड़े कवि आए थे जो है, हास्य कवि जो थे उसमें काफी फेमस है, जो क्या नाम है, शर्मा, महेंद्र शर्मा है,
0: सुरेंद्र
1: और
0: शर्मा,
1: सुरेंद्र
0: सुरेंद्र शर्मा जी, हाँ
1: शर्मा, वो
0: सुरेंद्र
1: आए थे।
0: शर्मा,
1: सुरेंद्र
0: हाँ अच्छा।
1: शर्मा जी, उनसे बहुत ही करीबी से मुलाकात हुई उनसे जो है। उन्होंने मुझे आज भी याद है, उनने मुझे एक लाइन बोली थी, बेटा तुम्हारी उम्र में तो हम फूल पत्तियों पे लिखते थे, तो इतने सीरियस इश्यू पर कैसे लिख तो बड़ा वाकया आज भी याद रहता है। तो उस कवि सम्मेलन में सर मैं विनर रहा था, मुझे जो है अच्छा गोल्डन ट्रॉफी और काफी उनके हाथों से वो सम्मान मिला था
0: अरे
1: मुझे
0: वेरी
1: जो है।
0: गुड, बहुत बढ़िया। तो
1: जी सर,
0: बस
1: जी
0: ठीक
1: सर,
0: है।
1: जी सर,
0: तो कुछ देखिए, आपको शेर व शायरी का शौक है, शेर व शायरी का शौक मुझे भी है, तो कोई
1: अरे
0: शेर व
1: वाह,
0: शायरी या कोई कोई छोटा सा अगर कुछ सुनाना चाहें आप, तो एक
1: जी सर, बिल्कुल बिल्कुल
0: वो भी
1: बिल्कुल,
0: हो जाए।
1: तो
0: बिल्कुल
1: एक कवि से कभी पूछना ही नहीं है, तैयार रहते हैं सब।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्वागत है इरशाद।
1: जी सर, तो अर्ज किया है सर कि जलता हूं अगर तो जरूरी नहीं कि दिया हूं मैं,
0: वाह वेरी गुड।
1: जलता हूं अगर तो जरूरी नहीं कि दिया हूं मैं, लड़खड़ाया हूं अगर तो जरूरी नहीं कि पिया हूं मैं,
0: ओहो वाह,
1: लड़खड़ाया हूं अगर
0: अगर
1: तो जरूरी नहीं कि पिया हूं मैं, क्या खबर थी कि हाले जिंदगी एक रोज इस कदर हो जाएंगे, क्या खबर थी कि हाले जिंदगी एक रोज इस कदर हो जाएंगे कि जिंदा तो हूं मगर जरूरी नहीं कि जिया हूं मैं,
0: अरे वाह वाह, बहुत
1: जिंदा तो
0: बढ़िया,
1: हूं मगर जरूरी नहीं कि जिया हूं मैं।
0: वाह,
1: थैंक यू
0: जिंदा
1: सर,
0: तो हूं मगर जरूरी नहीं कि जिया हूं मैं, वाह क्या बात है,
1: थैंक
0: बहुत
1: यू सो
0: बढ़िया।
1: मच
0: ये तो
1: सर।
0: हमें पता नहीं था, नहीं तो हम तो एक प्रोग्राम आपके साथ शेर व शायरी का ही कर लेते
1: थैंक
0: बहुत मजा आ गया। आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, आप गाते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, शायरी भी करते हैं। तो आप ये थोड़ा सा अपने YouTube चैनल के बारे में बता दिए, इतने म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आप ओरिजिनल सॉन्ग रिलीज
1: हाँ
0: करें, तो अब ये जो प्रोसेस होता है एक गीत के जन्म से लेकर उसको रिलीज तक का, ये प्रोसेस कैसे होता है, ये किस तरह से
1: जी
0: चलता
1: जी सर, एक्चुअली मैंने मेरे YouTube चैनल तो है, दो YouTube चैनल्स हैं, एक तो
0: है?
1: मेरे नाम से बनाया है मैंने अरुण शर्मा नाम से,
0: जी
1: एक मैंने बनाया था म्यूजी रिकॉर्ड्स, एक लेबल जो है मैंने उसको असाइन करा, एक लेबल के थ्रू उसको बना करके उस पर डालता हूँ फिर मैं।
0: अच्छा
1: तो इसमें ये होता है कि जैसे कुछ गाने जो है मैंने, जैसे मैंने अभी एक गाना लिखा था और वो गाना बहुत अच्छा चला जो है, काफी सारी एनजीओ ने उसको यूज करा है, मैं भी पढ़ूंगी ओ माँ।
0: अच्छा
1: तो वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पर था, और उसको जब मैंने कंपोज किया तो वो जो गाया है एक लड़की थी मुजफ्फरनगर, इरम फातिमा,
0: अच्छा
1: उन्होंने गाया इस गाने को, और वो गाना बहुत सुर्खियां बटोरी है उस गाने ने, काफी जो है पेपरों में उसका वो रहा। और वो गाना इस तरह के गाने जो मैं जैसे कोई दूसरे सिंगर्स में रहते हैं तो वो मैं अपने लेबल के थ्रू रिलीज करता हूँ।
0: अच्छा मैं समझ
1: एक्चुअली क्या
0: गया।
1: होता है सर इसमें, जैसे मान लो अपना आपने कॉम्पोजिशन अपन ने रेडी किया, गाना कैसे बनता है, कॉम्पोजिशन हमने जैसे दिमाग में आई, धुन आई, धुन के हिसाब से फिर अपन ने लिरिक्स आए, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है फील कि वो आप किस दिशा में जा रही है वो फील उसकी। तो इस तरह ये गाना जैसे रेडी होता है, फिर हमारा क्या है कि जैसे उस गाने को आपने प्रोडक्शन करवाया, म्यूजिक प्रोडक्शन से प्रोडक्शन करके डबिंग हुई, डबिंग करके वो मिक्स मास्टर होके रेडी हो गया। अब इसमें इस जैसे सारे दो चीजें होती हैं कि YouTube पर डाल दो, एक तो एक होता है कि वो गाना सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी बजे, तो उसके लिए क्या होता है कि आजकल पहले बहुत डिफिकल्ट होता था, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट नाउ अडेज। अभी तो आराम से अपन, जैसे क्या होता है कि कुछ कंपनीज हैं जो कि आपको आपसे एनुअली कुछ चार्ज लेती हैं, 3-4 हज़ार रुपए एनुअली लेती हैं, और आप उनको अपना उनको उनकी साइट पर सारा डिटेल शेयर करना होता है, हमारा ऑडियो डालना है, अपना सॉन्ग का नाम टाइटल पूरा क्लियर करके वो सारा काम वो करती हैं। वो आपके ऑडियो को सारे प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाएंगी, और साथ में उस की स्ट्रीमिंग से जो

0: रेवेन्यू जनरेट होगा वो आप तक जो है आपके अकाउंट में पहुंचाएंगे।
1: अच्छा,
0: जी, तो ये आजकल जो है ट्यून कोर है, डिस्ट्रोकिड है, कई बड़े बड़े कंपनीज हैं जो कि आजकल इसी वजह से आजकल ये आसान हो गया है कि अपन को गाने बना करके अपन सारी दुनिया तक पहुंचा देते हैं ये है। और सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये सारी
1: करते
0: चीजें।
1: ही ये तो बहुत नई चीज पता लगी डॉक्टर साहब मेरे को तो। ये आपका मतलब है बेसिकली ये सब प्रोफेशनलाइज हो गया एक तरह से, सारा
0: यस सर, यस सर, यस सर,
1: प्रोफेशनलाइज हो गया है सारा मामला।
0: जी सर, जी
1: तो
0: सर,
1: नए लोगों को बड़ा चांस मिल रहा है इसपे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, इसमें सिर्फ
1: हाँ,
0: अगर
1: लगातार करते रहना,
0: लगातार करते रहो बस, ये इम्पोर्टेंट
1: आप गैप नहीं दे सकते, बिल्कुल सही।
0: ना, ना, ना, ना, ना, ये है, जी सर।
1: तो चलिए यहाँ एक रुक के एक आपका हम रिकॉर्डेड गाना और सुनेंगे और फिर
0: जी
1: उसके
0: सर,
1: बाद
0: जी सर,
1: आखिरी सवाल।
0: जी सर, जी सर,
1: समय कैसे जा रहा है पता ही नहीं लग रहा
0: पता ही नहीं पड़
1: अब ये
0: चुका।
1: बहुत काफी टाइम हो गया अपने को बात करते हुए। और मुझे लग रहा है कि बहुत कम बातें कर पाए हम समय सीमा की वजह
0: हाँ
1: से, अदरवाइज लगता है
0: सही
1: तो अब
0: सर,
1: 2-3 घंटे बैठ के बात करते रहते हैं ऐसा लगता है।
0: नहीं
1: चलिए रुक
0: नहीं
1: जाते,
0: बिल्कुल,
1: एक गाना सुनते हैं फिर।
0: थैंक यू सर।

0: हाँ डॉक्टर साहब, तो वेलकम बैक। तो अब ये जैसे मैं ही क्यों, आपका जो नवीनतम गीत है ये काफी इसको पॉपुलरिटी मिल रही है, तो अब
1: जी
0: ये
1: सर।
0: बताइए आगे आपका क्या प्लान है, कुछ और क्या आने वाला है आपकी तरफ से अपने
1: जी सर,
0: प्रशंसकों में।
1: अभी मैंने मेरे पास में अभी एट प्रेजेंट करंटली करीबन 7 to 8 songs रेडी हैं, सब
0: ओह
1: रिलीज होंगे। यस
0: अच्छा,
1: सर, इसमें हर महीने एक गाना निकालने का प्लान है बस अभी इसमें मेरा। तो सबसे अभी रिसेंट में जो है, एक मैंने अभी बहुत अच्छी गाना लिखा है, परिंदा।
0: अच्छा
1: परिंदा गाना जो है वो मतलब मेरी, वो गाना मेरे काफी सोल के क्लोज है वो। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि, क्योंकि मैं हॉस्पिटल के साथ साथ क्या एक एनजीओ भी चलाता हूँ,
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: तो जी सर, तो जो है सब ह्यूमन एंड लव नेचर फाउंडेशन नाम से एनजीओ है वो। तो उसमें जो बच्चे हैं उन बच्चों को कास्ट करूंगा मैं, और कुछ बच्चों की जिनकी जिंदगी हमने सच में बदली है, उनको उनकी स्टोरी को उस गाने के थ्रू दिखाना चाहूंगा मैं। तो वो
0: ओके
1: मेरे को उम्मीद है कि वो गाना काफी लोगों के दिलों तक पहुंचेगा। थैंक
0: चलिए, बहुत बढ़िया, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: यू
0: तो
1: सर, थैंक यू
0: और
1: सर,
0: ये एनजीओ भी चला रहे हैं आप, इतने सारे काम एक साथ कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ी बात है।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू
0: तो
1: सो
0: डॉक्टर
1: मच।
0: अरुण शर्मा जी, आपकी यात्रा हमें सिखाती है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, जुनून को कभी त्यागना नहीं चाहिए, चाहे मेडिकल कॉलेज के दिन हो, इंडियन आइडल का मंच हो, कवि सम्मेलन का संसार हो, या ओरिजिनल म्यूजिक की रचनात्मक दुनिया, आपने हर मोड़ पर अपने भीतर के कलाकार को जीवित रखा है। मुझे विश्वास है आपकी कहानी हमारे श्रोताओं, विशेषकर युवाओं को यह प्रेरणा देगी कि जीवन में सफलता केवल एक पहचान बनाने में नहीं, बल्कि अपनी सभी प्रतिभाओं को सम्मानपूर्वक जीने में है। रेडियो परिवार की ओर से हम आपके उत्तम स्वास्थ्य, निरंतर सफलता और आपकी संगीत एवं साहित्यिक यात्रा के लिए बहुत शुभकामना देते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: थैंक यू सो मच सर, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा आपके इस मंच पर आकर के सभी श्रोताओं के साथ जुड़ने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।
0: तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही, मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक शख्सियत के साथ, नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर, सुनना ना भूलिएगा।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें।
4: आइए दोस्तों मिलवाते हैं आपको जोसेफीन बेकर से, जो एक प्रसिद्ध कलाकार रहीं और समाज सेविका थीं। बर्बरता के अनगिनत जंगलों से होकर दुनिया यहां तक पहुंची है, जो अमेरिका आज दुनिया भर में मानवाधिकार के कागज बांटता फिरता है, वहां कभी श्वेतों ने अश्वेतों का जीना मुहाल कर रखा था। अमेरिका के कुछ इलाके तो इतने बदनाम थे कि दंगा छिड़ते ही अश्वेतों को अपने घर डेरे से भागकर कहीं छिपना पड़ जाता था। एक ऐसा ही इलाका था पूर्वी सेंट लुई, जहां एक अश्वेत लड़की घरेलू नौकरानी का काम करती थी। ना पिता का कोई ठिकाना था और ना मां को ही बेटी की कोई चिंता थी। महज 8 साल की उम्र में ही अपने लिए रोटी कमाने की जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई। काम लेने वाले 24 घंटे काम लेते थे और छोटी सी छोटी गलतियों पर भी बहुत पीटते थे। वो अपने लिए रोटी कमाते कमाते 11 साल की हो गई। अक्सर दोनों हाथ काम में लगे रहते, कभी कपड़े धोते हुए तो कभी कपड़े सहेजते हुए, और नजरें स्कूल की खुली किताब की ओर चली जाती थी। पढ़ने का खूब मन करता था। वो सोचती थी काश उसके भी माता पिता होते तो वो स्कूल जा पाती, अच्छी जिंदगी जीती। उस दिन हाथ में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था उनके। उसे मालकिन ने जला दिया था क्योंकि कपड़े धोने में कुछ ज्यादा साबुन लग गया था। अब एक तरफ तो पूरे घर का काम था, दूसरी ओर स्कूल की पढ़ाई, और तीसरी ओर हाथ का दर्द और जलन। तभी फिर एक बार पूर्वी सेंट लुई में हल्ला मच गया। श्वेत शायद फिर बर्बरता पर उतर आए थे। अश्वेत जान बचाने के लिए बदहवास भागे जा रहे थे। उस लड़की ने काम रोककर खिड़की से देखा, निग्रो लोगों के घर फूंक दिए गए थे। आसमान धुएं से भरने लगा था। जान बचाने के लिए सब लोग भाग रहे थे। श्वेत मालिकों के घरों से भी अश्वेतों को खोज खोज कर निकाला जा रहा था और मारा जा रहा था। हैवानियत का गजब का मंजर था। वो लड़की भी भाग खड़ी हुई। कोई तो ऐसी जगह होगी जहां वो मुंह छिपा सकेगी। दूसरे बच्चे भी जान बचाए सड़कों पर चीखते रोते भाग रहे थे। वो ये सोचती हुई भाग रही थी कि हम बच्चों ने भला क्या बिगाड़ा है, बच्चों को तो बख्श दो। काश दुनिया में ऐसी नफरत ना होती तो बच्चों से सभी लोग प्यार करते, बच्चों से प्यार करते तो किसी भी तरह की हिंसा से बच जाते। खैर दंगा तो थम गया, पर दिल के अंदर हमेशा के लिए दर्द रह गया। वो बहुत बुरा दिन था और बहुत काली रात। पास बहती हुई मिसिसिपी नदी के चमकदार जल में भी किसी महिला या बच्चे की चीख पुकार घुली मिली सी लगती थी। पूर्वी सेंट लुई से उस बच्ची का मन उखड़ गया। अगर किस्मत में अपनी मेहनत पर ही गुजारा लिखा है तो कहीं और, ठीक वहीं चला जाए। जिंदगी ने मौका दिया, वो न्यूयॉर्क चली आई। सड़कों पर ही रहती, सड़कों पर ही नाचती, कुछ पैसे मिल जाते, बाद में नृत्य मंडलियों के साथ जुड़ गई। वो समझ गई कि मंच पर चढ़ना काफी नहीं है, मंच पर सभी को नजर आना भी बहुत जरूरी है। फिर क्या था, मंच पर वो कुछ ऐसा करने लगी कि सबका ध्यान खींचने लगा। लोग उन्हें जोसेफीन बेकर नाम से जानने लगे। फिर एक दिन कलाओं की नगरी पेरिस से बुलावा आया। उदार पेरिस ने नए अश्वेत कलाकार को हाथों हाथ लिया। वो बहुत तेज नाचती थी, मानो अगली बार कोई नाचने न देगा। फिर उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, सड़क से उठकर महलों में पहुंच गईं, दुनिया के पहले अश्वेत सितारों में गिनी जाने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजियों ने जो आतंक मचाया, तब वो अन्याय के खिलाफ जासूस बन गईं। युद्ध के बाद उनका सम्मान बहुत बढ़ गया, बड़े बड़े लोग उनके नृत्य गायन के मुरीद होने लगे, लेकिन बर्बर अमेरिका उनकी आंखों से कभी ओझल नहीं हुआ। एक मौका आया जब 1963 में उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पक्ष में वॉशिंगटन की प्रसिद्ध सभा में भाषण दिया। अश्वेतों पर जुल्म के खिलाफ बेकर उस सभा में एकमात्र महिला वक्ता थी। उन्होंने कहा, मैं राजाओं रानियों के महलों और राष्ट्रपतियों के घरों में गई हूं, लेकिन अमेरिका के किसी होटल में जाकर एक कप कॉफी नहीं पी सकती। ये सोचकर मैं पागल हो जाती हूं, गुस्सा आता है, तो आप जानते हैं मैं अपना बड़ा मुंह खोल देती हूं। और फिर देखिए, जब जोसेफीन अपना मुंह खोलती है तो पूरी दुनिया सुनती है। वो जर्मनी के चंद रत्नों और राष्ट्र नायकों में शुमार रखती हैं। उन्हें बच्चों से इतना प्यार था कि अलग अलग धर्म और अलग अलग नस्ल के 12 बच्चों को उन्होंने गोद ले रखा था। एक ऐसा परिवार बना रखा था जिसे वो द रेनबो ट्राइब कहती थी। दुनिया 10 दिसंबर को जब भी मानवाधिकार दिवस मनाती है, जोसेफीन बेकर को जरूर याद किया जाता है।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: दोस्तों, गूगल मैप में अब एक और सुविधा आनी चाहिए। गूगल मैप हमें ये भी बताना चाहिए कि आगे आरटीओ खड़ा है, अगर डॉक्यूमेंट्स ना हो तो यहीं से वापस लौट लो।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? जिस मुल्क का शरीर और समाज दोनों बीमार हो चुके हों, आखिर वो देश कैसे तरक्की करेगा? कोई गम के साए में डूबा हुआ था और कोई ये देखकर खुश हो रहा था कि उसकी आंखों के आगे से जनाजा निकल रहा है। मैं हैरान हूं इस मुल्क की सोच से, क्योंकि जिस मुल्क में किसी के घर में छाया मातम किसी और के लिए शगुन बन जाए, वो मुल्क आने वाले 70 सालों में तो क्या 700 सालों में भी तरक्की नहीं कर सकता? इस मुल्क में कहीं करोड़ों रुपए सड़ रहे हैं तो कहीं करोड़ों भूख से मर रहे हैं। इस मुल्क में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन तो चलाया जाता है, लेकिन फिर भी दिन रात बलात्कार का कोहराम है। जिस मुल्क का शरीर और समाज दोनों बीमार हो चुके हों, वो आखिर कैसे तरक्की करेगा? मैंने देखा है इस मुल्क में आस्था पर अंधविश्वास को हावी होते हुए। मैं हैरान हो जाता हूं जब खुद को सभ्य समाज का पढ़ा लिखा वर्ग बताने वालों की आंखों में अंधविश्वास की चादर चढ़ी हुई पाता हूं। जब तक इस मुल्क में अंधविश्वास के नाम पर खून का खेल यूं ही चलता रहेगा, जब तक आस्था की असमत से अंधविश्वास का दाग नहीं हटेगा, यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मैंने देखा है इस देश के बच्चों को जो अपना भविष्य खरीदने के लिए मजबूर हैं, जो डोनेशन के नाम पर काला धन बांट पाता है, वही यहां बेहतर शिक्षा का हकदार बन पाता है। जो मुल्क खुद के भविष्य पर ताले लगाता हो, आखिर वो मुल्क कभी कैसे तरक्की कर सकेगा? मैंने देखा है यहां मजहब के नाम पर खून की नदियां बहते हुए, भाई को भाई की जान लेते हुए। मैंने देखा है लोगों को भगवे और हरे के लिए लड़ते हुए। जब तक ये मुल्क भगवा और हरा छोड़ तिरंगा नहीं उठाएगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। जिस दिन ये मुल्क केवल एक नेता नहीं बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की तरक्की का एहसास कर लेगा, जिस दिन इस मुल्क में सभी को शिक्षा का समान अधिकार मिल जाएगा, जब इस मुल्क के लोगों को दूसरों के दुख में दुख का एहसास हो पाएगा, जब इस मुल्क का प्रत्येक वासी अपनी अपनी जिम्मेदारी की चादर ओढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा और सच्चे नागरिक का कर्तव्य निभाएगा, उस दिन सही मायनों में यह मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ेगा।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आइए दोस्तों, सुनाता हूं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ रचनाएं। बाधाएं हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मति हर्षित कैसा श्रम श्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहूति में, जलना होगा गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।

जिंदगी सिर्फ एक एहसास है, जी से जियो तो मीठा एहसास है, तू खट्टा मीठा एहसास है, बरस दर बरस जी मैंने जिंदगी, यहां तक चल के आए हैं हम, ये जिंदगी तेरा शुक्रिया, आगे भी परवान चढ़ाए रखना, ये जिंदगी जी से जी है मैंने तुझे, ओ जिंदगी यकीनन जी से जियो तो मीठा एहसास है जिंदगी।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? जब शनै शनै उम्र बढ़ जाएगी, इत्र की जगह आयोडेक्स की खुशबू आएगी। कहता हूं अब भी मिल लिया करो, ये घड़ियां पलट कर नहीं आएंगी। अभी तो आंखों में नूर है बाकी, अभी तो आंखों में नूर है बाकी, फिर खूबसूरती नजर नहीं आएगी। अभी तो यार हैं चलते अपने साथ, अभी तो यार हैं चलते अपने साथ, फिर केवल छड़ी ही नजर आएगी। सुन लो आवाज दोस्तों की, सुन लो आवाज दोस्तों की, फिर कानों में मशीन नजर आएगी। हंस लो खिलखिलाकर आज, हंस लो खिलखिलाकर आज, फिर नकली बत्ती सी ही झलक दिखलाएगी। जब दोस्त बुलाएं चले आओ, फिर डॉक्टरों से फुर्सत ना मिल पाएगी। समझ जाओ यारों, समझ जाओ, ये मस्त उम्र फिर नहीं आने वाली।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: गप्पू ने पूछा, अरे यार तुम गटर में कैसे गिर गए? चप्पू ने कहा, अरे यार क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, गटर का ढक्कन खुला हुआ था, मुझे लगा सोशल डिस्टेंसिंग का गोला है।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।
1: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है। यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम जावा की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
6: कुछ कहती हैं सब्जियां,
7: आज बच्चे खेल खेल में सब्जी बने हैं। उन्होंने मिलकर तय किया कि बबलू महाराजा कद्दू बनेगा, उसकी राजकुमारी मिर्ची बनेगी चिन्नम्मा, मुन्ना राजकुमार करेला बनेंगे, सोनू राजकुमार प्याज बनेंगे, टमाटर बनेंगी पिंकी, पिंटू राजकुमार आलू बनेंगे और मुर्गन राजकुमार गाजर बनेंगे। सब्जियों की महासभा आरंभ होती है।
8: सब्जी खेलेंगे।
9: चिन्नम्मा तुम मिर्ची बनोगी,
10: पिंकी तुम टमाटर बनोगी।
11: अरे मैं क्या बनूंगी, मुझे भी तो बताओ। मैं भिंडी बन जाती हूँ।
12: मैं करेला बनूंगा।
13: बबलू तुम दही बनोगे,
14: मिर्ची बनोगे,
15: मैं मिर्ची,
16: तुम टमाटर बनोगे।

0: राजकुमारी मिर्ची।
1: हाँ पिताजी।
0: तुम जानती हो कि मुझमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। मैं कई रोगों से लोगों को बचाता हूँ। हाँ, मैं या तुम्हारे भाई तुमसे कुछ कह दें तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हम सब मिलकर रहें तो सबका भला होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, बेटी राजकुमारी मिर्ची, तुम कुछ कहो बेटी।
2: पिताजी, मैं स्वाद में तीखी हूँ, लेकिन लोगों की आंखों की रोशनी बढ़ाती हूँ।
0: बिल्कुल।
2: उनकी त्वचा की रक्षा करती हूँ।
0: सही।
2: मुझे ये समझ में नहीं आता कि राजकुमार टमाटर, करेला, आलू और गाजर क्या करते हैं। प्यास, तुम तो बताओ तुम क्या करते हो।
3: बहन मिर्ची, मैं स्वाद में बहुत सादी हूँ। मैं सभी सब्जियों के साथ घुल मिल कर रहती हूँ।
2: अच्छा।
3: और हाँ, मैं बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती हूँ।
2: ओ, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं फिर भी खुद को बड़ा समझती हूँ।
3: अच्छा, बड़ा समझती हो।
4: हाँ, बड़ा तो मैं भी हूँ। मैं करेला हूँ। मैं कड़वा तो हूँ पर सेहत के लिए अच्छा हूँ।
5: तुम सब मुझे कैसे भूल गए।
6: अरे बताओ बताओ कौन हो तुम।
5: मैं हूँ सब्जियों का राजा आलू।
4: आलू
7: आलू आलू पसंद है।
2: आलू तो हमें बहुत पसंद है।
7: आलू के फायदे तो बताओ।
5: मैं सभी को शक्ति देता हूँ।
8: मुझे भी चाहिए शक्ति।
9: मुझे भी शक्ति। मुझे चाहिए। मुझे चाहिए।

0: ये सब तुम्हारे भाई बहन हैं, इनसे मिलजुल कर रहना चाहिए।
1: जी पिताजी, मैं इनके साथ मिलजुल कर रहूंगी।
0: शाबाश।
2: हाँ हाँ, सब मिलजुल कर रहेंगे।
3: हाँ, सब मिलजुल कर रहेंगे।
0: ये हुई ना बात।
1: गाजर, आलू, करेला, तुम सब मेरे भाई बहन हो।
2: हाँ मिर्ची, हम
3: भाई बहन।
4: तभी अचानक से राजकुमारी मिर्ची गिर पड़ती है।
1: ओ, मैं तो गिर गई।
2: अरे मिर्ची,
4: सभी भाई बहन उसे मिलकर उठाते हैं।
0: देखा बेटी, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें कितना चाहते हैं। चाहते हैं ना?
1: जी पिताजी।
0: सभी ने मिलकर तुम्हें उठाया?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, देखो बेटी, मिलकर रहने से सभी का फायदा होता है, होता है कि नहीं?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, प्यार फैलता है, एकता बढ़ती है, बढ़ती है ना एकता?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, तो इसलिए बेटा हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
1: हाँ पिताजी, आप सही कहते हैं। मैं खुद पर घमंड करती थी, असली प्यार तो मिलजुल कर रहने में है।
0: हाँ।
1: मैं आगे से कभी घमंड नहीं करूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: बाबुआ की आवाज़।
1: शिक्षक जो गढ़े बचपन को,
2: ये कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चा करता है कि बच्चे के जीवन के सर्वांगीण विकास में अभिभावक और मुख्य रूप से शिक्षक की क्या भूमिका होती है।
1: साथियों, शिक्षकों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण के परंपरागत ध्वनि कार्यक्रमों की शैली से थोड़ा अलग है। यह कार्यक्रम विश्व के महान आविष्कारक और वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के जीवन और उपलब्धियों के इर्द गिर्द बुना गया है।
3: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की सातवीं संतान थे।
4: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
1: साथियों, बच्चा जिज्ञासाओं का पिटारा होता है, वह तो प्रश्न पूछेगा ही, तब तक जब तक हम उसे पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यदि उसे हतोत्साहित किया तो शायद फिर वह कभी नहीं पूछेगा।
3: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
5: अपनी मां को यह चिट्ठी दे देना।
3: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी मां को दे दी।
6: मां, ये चिट्ठी।
3: मां ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
4: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
6: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
4: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
6: अच्छा,
4: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
6: अच्छा,
4: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छे।
1: तो शिक्षक मित्रों, ये घटनाक्रम एक बेहद गंभीर प्रश्न पैदा करता है। जरा सोचिए कि यदि आप बालक थॉमस एडिसन के शिक्षक होते तो किसी बच्चे का मूल्यांकन कैसे करते और उसकी सूचना बच्चे के अभिभावकों को किस प्रकार देते। साथियों, आप भी शिक्षक हैं। आपने सुना कि एडिसन की मां, जो स्वयं शिक्षिका थी, उन्होंने किस प्रकार अपने बच्चे के किसी भी प्रश्न को नजरअंदाज नहीं किया। तो फिर क्यों ना हम भी यथासंभव बिना खींचे बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें।
4: उनकी माँ जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंक गणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
3: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।

0: और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा।
1: तो सुना आपने दोस्तों, रेल के डब्बे में ही प्रयोगशाला, जिसका अंतिम परिणाम दुर्घटना थी। जी हाँ, बच्चा कौतुक और रोमांच से भरा होता है, वह जरूर नए नए प्रयास करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में हमें उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, पीटना समाधान नहीं है। तो आइए अब सुनते हैं उनकी शिक्षक माँ ने किस तरह इन परिस्थितियों का सामना किया।
0: उनकी माँ उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी माँ के कारण ही उत्पन्न हुई।
2: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
3: ओह,
0: मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
1: तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, एडिसन की माँ स्वयं शिक्षिका थी, लेकिन अक्सर अभिभावक शिक्षक नहीं होते, है ना? तो कितना अच्छा हो यदि बच्चे के जीवन में एडिसन की माँ की तरह ही हमारी भी सकारात्मक भूमिका हो जाए।
2: थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
0: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थी और मुझ पर विश्वास करती थी। उन्होंने ही मुझे बताया कि मुझे किसी के लिए जीना है। कोई ऐसा है इस दुनिया में जिसे मुझे निराश नहीं करना है।
1: साथियों, हम सब जानते हैं कि थॉमस एडिसन को मुख्य रूप से बिजली के बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है। वैसे उन्होंने 1300 के लगभग आविष्कार किए और उनका पेटेंट लिया।
0: बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
2: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले, लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
0: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
2: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
0: लगभग 10,000 बार।
2: 10,000 बार?
0: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
2: अच्छा,
0: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
2: अरे वाह।
0: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
2: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
0: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
2: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
0: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
2: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गई। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
0: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
4: और अब सुनते हैं एक अरबी लोक कथा जिसमें अपराधी के विरुद्ध गवाही दे रहा है एक दरख्त।
5: पुराने जमाने की बात है, एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपए का दावा किया। काजी ने पूछा,
6: तुम्हारे पास कोई गवाह है?
5: आदमी ने कहा,
6: नहीं, बगैर किसी गवाह के कैसे काम चलेगा। हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि मैं उस शख्स से कसम लेकर पूछूं।
5: दावा करने वाला शख्स ये सुनकर बुरी तरह रोने लगा और बोला,
7: हुजूर, ये शख्स बहुत कसमें खाता है, इसकी कसम पर आप एतबार ना करें, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
5: काजी ने जब उस आदमी को इस तरह रोते देखा तो वो समझ गया कि उसका दावा सच्चा है, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बगैर किसी गवाही के फैसला भी नहीं दे सकता था, इसलिए उसने पूरा किस्सा जानने की कोशिश की। दावा करने वाले ने बताया,
7: हुजूर, ये मेरा पुराना दोस्त है, इसे एक बार किसी काम के लिए 100 रुपए की अशद जरूरत थी, ये बहुत परेशान था, इसने अपनी परेशानी का जिक्र मुझसे किया, मुझे इसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ और मैंने जिंदगी भर की कमाई जो सिर्फ 100 रुपए थी अपनी कमर से खोलकर इसके हवाले कर दी। इसने ये रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी। अफसोस, आज इस बात को 4 महीने हो गए लेकिन इसने अब तक मेरे रुपए वापस नहीं किए।
5: काजी ने पूछा,
6: तुमने किस जगह इसको रुपए दिए थे?
7: एक दरख्त के नीचे।
6: जब तुम्हारा कहना ये है कि तुमने एक दरख्त के नीचे उसको रुपए दिए थे तो फिर ये क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं है?
5: काजी ने दूसरे शख्स से पूछा,
6: तुम क्या कहते हो, क्या ये दरख्त और जगह की बात सही है?
8: ये झूठ बकता है, मैंने न उस दरख्त को देखा है और न ही उस जगह को जानता हूँ, मैंने तो इससे कर्ज लिया ही नहीं।
5: काजी ने उसकी बात सुनकर कहा,
6: अच्छा, तुम अभी यहीं बैठो।
5: फिर दावा करने वाले शख्स से कहा,
6: तुम परेशान मत हो, उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है, चलो और गवाही दो।
5: काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। पहले शख्स ने कहा,
7: काजी साहब, मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त नहीं आएगा।
5: काजी ने उसकी बात सुनकर अपनी मोहर उसको दी और कहा,
6: ये मोहर ले जाओ और दरख्त से कहना कि ये काजी की निशानी है, तुम जो कुछ जानते हो उसकी गवाही काजी की अदालत में हाजिर होकर दो।
5: मुद्दई ने काजी की मुहर ली और चला गया। दूसरा शख्स वहीं बैठा रहा। काजी साहब दूसरे मुकदमों को सुनने और फैसले करने में मसरूफ हो गए और उस शख्स की तरफ से निगाहें हटा ली। थोड़ी देर के बाद काजी ने अचानक उससे सवाल किया,
6: वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं?
5: उसने जवाब दिया,
6: अभी नहीं।
5: काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ हो गए। मुद्दई काजी की मुहर लेकर दरख्त के पास गया। वहां उसने दरख्त को काजी की मुहर दिखाई, उससे कहा,
7: काजी ने तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया है।
5: वो कुछ देर तक जवाब के इंतजार में वहीं खड़ा रहा और जब कोई जवाब नहीं मिला तो बहुत रंजीदा होकर काजी के पास लौट आया। उसने काजी साहब को बताया,
7: हुजूर, दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो मेरे साथ अदालत में गवाही देने आया है।
6: तुमको पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ पर गवाही देकर चला गया।
5: काजी ने फिर ये फैसला सुनाया,
6: मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपए उसे वापस दिए जाएं।
5: दूसरा शख्स ये फैसला सुनकर फौरन बोला,
8: काजी साहब, मैं तभी से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई भी दरख्त गवाही देने नहीं आया, फिर आपने ये फैसला कैसे कर दिया?
5: काजी ने जवाब दिया,
6: बेशक यहाँ कोई दरख्त नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुमसे अचानक पूछा था कि क्या वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा, तो तुमने जवाब दिया था कि अभी नहीं। अगर ये बात सच ना होती तो तुम ये जवाब हरगिज ना देते कि वो अभी वहां ना पहुंचा होगा।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, झाबुआ की आवाज।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के हर कोने से और हर जाति और उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर पूर्व के राज्यों के रणबांकुरों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे। इन्हीं में से एक महिला क्रांतिकारी थी रानी गाइडिनल्यू, जिन्हें उनके गांव वाले रानी पुई नाम से पुकारते थे। रानी पुई का अर्थ है रानी माँ। गाइडिनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को नागालैंड के लांगकाओ नामक स्थान पर हुआ। वो रांगमेई नाम की आदिम जाति से संबंध रखती थीं।

0: लोगों के अत्याचार तो बढ़ते जा रहे हैं, इसके आपको संघर्ष करना पड़ेगा जरूर।
1: क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे हटो हटो, बंद करो ये गाना।
2: अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरे बात छोड़ दो।
1: अरे तुझे चौप, कान खोल कर सुन लो, कल से ये तमाशा, ये मजमा, ये नाच खाना बंद। अब ये जमीन हमारी है, तुम लोगों का इस पर कोई अधिकार नहीं।
0: हमारी जमीन का हमारा अधिकार
1: चौप। अब ना कोई ये लकड़ी लेगा और ना कोई अपना जानवर चलाएगा इधर। ओके,
0: अरे ये तो हमारी जमीन है,
2: इस मिट्टी में तो हम पैदा हुए हैं, ये कैसे दे देंगे हम आपको?
0: अरे भला फिर हम क्या खाएंगे, अपने जानवरों को क्या देंगे?
2: ये तो गलत है, अत्याचार है हम पर।
0: अरे हमारे बच्चे तो भूखों मर जाएंगे।
1: चलो भागो यहाँ से, हट जाओ।
3: भाइयों, हिम्मत और समझदारी से काम लो, हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे।
0: हाँ जरूर लड़ेंगे, बिल्कुल।
3: हम अपनी जमीन अवश्य वापस लेंगे, चाहे कुछ क्यों ना करना पड़े।
2: हाँ जादो नाग भैया, हम लड़ेंगे, हमें अपने हथियार उठाने ही पड़ेंगे, ये फिरंगी ऐसे नहीं मानेंगे।
0: कल से हम सभी अलग अलग पहरा देंगे, हम भी देखते हैं कैसे आते हैं वो दोबारा इधर।
2: हाँ हम उन पर हमला करेंगे, हम उन्हें यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाने देंगे, ये जंगल हमारा है।
3: ठहरो, गुस्से से बात और बिगड़ सकती है, पहले हम उनसे ऐसा न करने के लिए कहेंगे। हाँ हम उन्हें समझाएंगे कि इससे हम आदिवासियों का जीवन खत्म हो जाएगा। हम सत्याग्रह करेंगे, शांति से धरना देंगे, अंग्रेज अफसरों का घेराव करेंगे।
4: लेकिन जादव भैया, अंग्रेज मानेंगे नहीं, उनकी नीयत ठीक नहीं है, कल वो हमारे घरों पर कब्जा कर लेंगे और हम सबको मार डालेंगे।
3: नहीं गाइडिंग लू, जो अभी हुआ नहीं उसकी चिंता कैसी, हमें उम्मीद है कि अंग्रेजों के बड़े अधिकारी हमारी बातें जरूर सुनेंगे।
4: जादो भैया, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो?
3: तब तेरा ये भाई चुप नहीं बैठेगा गाइडिंग लियू, हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे।
0: हाँ ये ठीक रहेगा।
1: यही है जादो नाग।
4: अरे अरे कैसे पकड़ लोगे हमारे भैया को?
1: छोड़ो, हटो पीछे। नहीं मोंटी, ये ले।
0: क्यों मार रहे
3: हो? ए कायर, इसे क्यों मारता है? मैं तैयार हूँ मार खाने को, हिम्मत है तो मुझे मार।
2: यही है वो अंग्रेज अफसर, यही अपने सिपाहियों को भेजता है। देखो तो, देखो कैसे आंखें दिखा रहे, देखो देखो
1: सिपाहियों। अरे खड़े खड़े मुझे क्या देखते हो? हटाओ सबको इधर से, मारो पीटो भगाओ इधर से। चलो इसके साथियों को भी ले चलो। जादो नाग चला था सबको भड़काने, हमसे टकराएगा तू।

0: बच्चों, 1931 में जादोनांग पर मुकदमा शुरू हुआ और एक दिन उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ता गया। मणिपुर, असम और नागालैंड के आदिवासियों को जंगलों से बेदखल कर दिया। लकड़ियों और पेड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। मासूम आदिवासी मारे जाने लगे, कभी भूख से तो कभी गोरे अंग्रेजों की गोलियों से। यही नहीं, उन पर जुर्माना लगाया गया, उनके लाइसेंसी हथियार तक छीन लिए गए। तब आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्ष की गाइडन ल्यू ने किया। और उनके नेतृत्व में नागा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। एक बार रात का समय था, नागाओं की एक गुप्त स्थान पर बैठक हो रही थी।
1: भैया, जादोनांग की कुर्बानी को हम बेकार नहीं जाने देंगे। अब हमारे पास हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं।
2: कोई रास्ता नहीं है हमारे पास।
1: सब लोग अपनी औरतों बच्चों को सुरक्षित जगहों पर भेज दें। हर आदमी लड़ने के लिए तैयार रहे।
2: हम
1: अंग्रेजों को मजा चखाएंगे। उन्हें इस गांव में घुसने नहीं देंगे। लेकिन खबरदार, सारा काम सावधानी और हिम्मत से हो। अंग्रेज कोई भी चाल चल सकते हैं।

0: के उस पार कुछ अंग्रेज सिपाही हैं। साथियों तैयार हो जाओ।
1: तैयार है।
0: इससे पहले कि वो इधर आए हम उन पर हमला कर देंगे।

0: इस लड़ाई में कई अंग्रेज सिपाही मारे गए। लड़ते लड़ते कुछ आदिवासी भी जान गंवा बैठे। बच्चों, गाइडन ल्यू को सब प्यार से रानी गाइडन ल्यू कहते थे। ये छापामार दस्ता उन्होंने 1933 में बनाया। इन नागा आदिवासियों ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अंग्रेज तो जैसे ढीठ हो गए थे।
1: सुनो सुनो सुनो, सभी लोगों को बताया जाता है कि अपने सारे हथियार एक हफ्ते के भीतर पुलिस पोस्ट में जमा कर दें, चाहे ये लाइसेंसी हो या बिना लाइसेंसी। ऐसा न करना अपराध माना जाएगा और उन्हें पकड़कर बंद कर दिया जाएगा। कंपनी सरकार ने टैक्स लगाने का भी फैसला लिया है और टैक्स ना देने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। सुनो सुनो सुनो।
2: अब तो हद हो गई है, ये अंग्रेज किसी ना किसी बहाने हमें यहाँ से निकाल कर ही दम लेंगे।
3: हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, इन्हें टैक्स कहाँ से देंगे?
4: टैक्स भी किस बात का, हमारा देश, हमारी धरती, फिर कैसा टैक्स?
3: और क्या, हम इंग्लैंड में तो नहीं रहते, और फिर ये अंग्रेज हमें खाने कमाने दे तब ना।
4: रानी रानी, खबर मिली है कि शाम तक अंग्रेजों के सिपाही इधर आने वाले हैं। जरूर वो तुम्हें खोजने के लिए छापे मारेंगे, तलाशी लेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। अच्छा होगा कि तुम ये जगह बदल दो, हम सब संभाल लेंगे।
2: नहीं नहीं
5: रानी, भूलना मत, जीते जी इस गांव का कोई भी आदमी गद्दारी नहीं करेगा। हम जान दे देंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे,
4: नहीं खोलेंगे। और खबरदार, किसी ने टैक्स दिया तो
6: नहीं, नहीं, कोई देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा।
0: बच्चों, इस तरह रानी गाइडन ल्यू और अंग्रेज सिपाहियों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। रानी और उनके साथी ठिकाने बदलते रहे। गाइडन ल्यू ने अंग्रेजों के खिलाफ टैक्स न देने का अभियान छेड़ा और किसी ने टैक्स नहीं दिया। लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने अचानक गाइडन ल्यू के खुफिया ठिकाने पर छापा मारा। अफरा तफरी, लड़ाई, गोलियां शुरू हो गईं।
7: सिपाही लो, पकड़ लो इसको, भागने ना पाए,
8: पकड़
7: लो, इधर चल, चल, चल, पकड़ लो सिपाही,
2: छोड़ो, छोड़ो मुझे, कायरों की तह क्यों पकड़ते हो? हिम्मत है तो पहले लड़ाई करो।
7: अरे चल यहाँ से, तुम्हारा खेल खत्म, अब जेल में करना लड़ाई।
2: नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो छोड़ो मुझे।
7: सिपाही जो भी बच गया है सबको पकड़ के बांट दो, बहुत परेशान किया है हमको।
2: तो मुझे ले चलो, लेकिन इन सबको छोड़ दो, छोड़ो इन्हें।
7: अच्छा
2: छोड़ दो।
7: अच्छा, इनको यही छोड़ दूं? वाह, ताकि ये लोग फिर हमारे सिपाहियों को मारें, हमसे लड़ाई करें। ओ, पकड़ जाओ, डाल दो इसको काल को घड़ी में।
0: इस तरह रानी गाइडन ल्यू ने अपनी परवाह किए बिना अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी। इस नौजवान लड़की को जेल में बंद कर दिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। उसने 14 साल काल कोठरियों में बिताए, जहां उसे भयंकर यातनाएं दी गईं। 1939 में जब नेहरू जी ने पूर्वी भारत के प्रदेशों का दौरा किया तो गाइडन ल्यू के बारे में सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो जेल से आजाद होंगी और पूरा देश उन्हें याद करेगा। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के साथ ही रानी गाइडन लियो को भी आजाद कर दिया गया। आगे चलकर उन्होंने अपने को समाज सेवा में लगाया। उन्होंने फरक्का नाम का एक धार्मिक आंदोलन भी चलाया, जिसका अर्थ होता है पवित्र। अठहत्तर वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। रानी गाइडन लियो को भारत सरकार ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, उनमें से ताम्रपत्र, पद्म भूषण एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार आदि हैं। उनको हमेशा याद रखने के लिए भारत सरकार ने 1996 में एक रुपए का डाक टिकट चलाया। सन 1999 में भारत सरकार ने देश की 5 प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर स्त्री शक्ति पुरस्कार की स्थापना की, जिनमें रानी गाइडन लियो ज़िलियांग का नाम भी शामिल है। नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क कही जाने वाली रानी गाइडन लियो भले ही इस संसार में नहीं है, परंतु वो प्रत्येक भारतीय के हृदय में रानी के रूप में सम्मानित रहेंगी।
8: अरे रामू काका।
9: नमस्ते टीचर जी।
8: नमस्ते, कैसे हो? बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिए।
9: बस ठीक हूँ।
8: अरे क्या हुआ? बहुत दिनों से आपकी बिटिया कमला स्कूल में नहीं दिखाई दे रही। वो तो अच्छी भली 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी।
9: क्या बताऊं टीचर जी, उसकी माँ बहुत बीमार हो गई थी।
8: अरे
9: कमला ने दिन रात उसकी सेवा की। अब उसकी माँ की तो तबीयत ठीक हो गई, मगर उसका स्कूल छूट गया बेचारी का।
8: अरे
9: अब वो बड़ी भी हो रही है, उसे दूर स्कूल भेजते डरता हूँ टीचर जी।
8: कैसी बातें करते हो रामू काका। इसका भी एक हल है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय।
9: कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय,
8: जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे वाले वर्ग की लड़कियों का दाखिला किया जाता है। बस लड़की का 5वीं पास होना जरूरी है, और तुम्हारी बेटी तो 5वीं पास कर चुकी है
9: जी।
8: लड़कियां वहीं रहकर पढ़ती हैं, उन्हें दूर इलाकों से रोज आना जाना भी नहीं पड़ता।
9: अब वो तो ठीक है टीचर जी, सिर्फ दाखिले से क्या होगा? खाना पीना, कपड़े, किताबें।
8: अरे तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रामू काका, क्योंकि ये सब मुफ्त में दिया जाएगा।
9: क्या? हाँ, मुफ्त में दिया जाएगा।
8: और जब

0: तुम्हारा मन करेगा उससे मिलने का तो मिल भी लिया करना।
1: अच्छा तो क्या टीचर जी मेरी कमला फिर से पढ़ सकेगी ना?
0: हाँ, और एक दिन आत्मनिर्भर भी बनेगी।
1: अच्छा धन्यवाद टीचर जी, मैं कल ही उसका दाखिला करवाता हूँ।
0: अरे कल क्यों, आज।
1: अच्छा टीचर जी आज ही करवाता हूँ।
0: पढ़े बालिका करे उजियारा, खुशहाल बने संसार हमारा।

बहादुरी एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में मुसीबतों से लड़ने की प्रेरणा देता है। 14 वर्ष की पिंकी भी ऐसे बच्चों में से एक थी जो संकट की घड़ी में अपना धैर्य न खोकर बहादुरी का परिचय देते हैं। 1998 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित इस बालिका के बलिदान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हरियाणा राज्य की पिंकी ने न सिर्फ 5 बच्चों की जान बचाई बल्कि दुनिया के सामने अद्भुत शौर्य और धैर्य की मिसाल भी पेश की। आओ सुने पिंकी के बलिदान की कथा।

0: चलो
1: बहुत मजा आया,
2: जम्मू चलो
1: खेलेंगे।
2: अरे पिंकी, आज तो तुमने अपनी धाकी जमा ली।
1: अरे सहेली किसकी है भाई, मैंने तो मास्टर जी को वही बताया जो मुझे आता था,
3: पर हमको तो नहीं आता था।
1: अरे उत्तर तो मुझे भी आता था पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। अच्छा तो ये कमजोरी थी तुम्हारी भाई, कक्षा में झिझकने से तो बात नहीं बनती। क्यों?
2: ये तो ठीक है, अब देखना कक्षा में मैं भी जवाब दूंगा।
1: अच्छा चलो चलो घर चले।
4: चलो चलो बच्चों, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ एक दो तीन, अरे भाई पिंकी चलो जल्दी करो।
5: धीरे धीरे। अरे भाई हरीश, सभी आ गए बस में?
4: देखता हूँ उस्ताद, शायद आ गए सब। अरे ठहरो ठहरो,
1: रुको रुको ड्राइवर भैया, शंभू चढ़ रहा है, उसके पैर में चोट लगी है, रुको भैया।
4: अरे घबराओ नहीं पिंकी, जब सब चढ़ जाएंगे तभी चलाएंगे भाई बस।
1: आओ चलो चलो चलो आओ, इधर बैठो।
4: हाँ इधर आ जाओ आराम से, चलो चलो चलो चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश। हाँ भाई ड्राइवर साहब, अब चलाओ गाड़ी।
5: हाँ जी अभी लो।
4: ठीक है मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे पास ही।
1: अच्छा सुनो, मैं गीत गाती हूँ और तुम सब ताली बजाना। हाँ।
2: भाई पर ताली तो बाद में ही बजेगी ना।
1: अरे बुद्धू, गाने के साथ साथ बजानी
2: है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई ठीक है।
1: चलो पिंकी शुरू हो जाओ। बचे समय

0: स्कूल बस अपने रास्ते की ओर बढ़ी चली जा रही थी कि तभी पिंकी ने देखा कि बस के अंदर एक कोने पर रखी बैटरी के ऊपर डिब्बे में से छलक कर पेट्रोल गिर रहा है। पिंकी ने सोचा कि पेट्रोल से तो आग भी लग सकती है। फिर बच्चों ने आवाज लगाकर ड्राइवर और कंडक्टर को बताने की कोशिश की।
1: ड्राइवर भैया, भैया देखो बैटरी पर पेट्रोल गिर रहा है।
0: लेकिन बच्चों और इंजन के शोर में ड्राइवर और कंडक्टर सुन नहीं पाए कि तभी
1: अरे अरे नेहा देखो देखो आग, ये भगवान आग लग गई थी पे बैटरी पर। हां बैटरी पर ये देखो आग। हां अमित अमित चलो चलो जल्दी, राकेश प्रवीण सब और पूनम कहां है? हां शंभू आग तो बढ़ती ही जा रही है। अरे
2: अरे उस्ताद गाड़ी रोको, उस्ताद गाड़ी रोको, गाड़ी में आग लग गई है।
3: हैं आग
1: किसे कहते
3: हैं? मैं रोकता हूँ गाड़ी अभी।
2: हाँ तुम जल्दी से लोगों को मदद के लिए लाओ, पानी का इंतजाम करो, मैं यहाँ बच्चों को बचाने की कोशिश करता हूँ। अरे तो आग बढ़ती जा रही है। अरे मुझे पकड़ाओ, अरे पिंकी बेटा इसको मुझे पकड़ा दो।
1: पकड़ो इसे, कंडक्टर भैया आप भैया पकड़ो।
2: अरे मुझे पकड़ाओ, अरे पिंकी बेटा इसको मुझे पकड़ा दो, जल्दी करो। अरे ये पिंकी देखो, अरे तुम्हारे कपड़ों में आग लगी है। अरे जल्दी बाहर आओ पिंकी, बाहर आओ, तो तुम्हारे कपड़ों में आग लग गई है।
1: नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, पहले पूनम को पकड़ो। अमित अमित देखो, पहले पूनम को।
2: अरे मुझे पकड़ाओ, अरे पिंकी बेटा तुम मुझे पकड़ाओ, जल्दी से
1: आओ,
2: बाहर आओ, पहले देखो तुम्हारे आग लगी है, जल्दी आओ।
4: बच्चे के कपड़ों में आग लगी हुई है, बस के अंदर बच्चों को बाहर निकालो। ये देखो तो, अरे उसकी मदद करो।
5: अरे दमकल को बुलाओ,
6: फोन करो ना जल्दी से, बच्चे हैं छोटे छोटे।
5: अरे दमकल को बुलाओ ना भाई,
6: जल्दी बुलाओ ना जल्दी।
0: भयंकर आग में घिरी बस में से बच्चों को निकालते निकालते भी छह बच्चों ने आग में झुलस कर वहीं दम तोड़ दिया। ये संख्या बढ़ भी सकती थी, किंतु अदम में साहस और वीरता का परिचय देते हुए पिंकी ने पांच बच्चों को मौत के मुंह से बाहर निकाल ही लिया। दुर्भाग्य से इस हादसे में पिंकी अपने आप को आग की चपेट से नहीं बचा सकी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पिंकी के इस वीरता पूर्वक बलिदान के लिए उसे मरणोपरांत गीता चोपड़ा पुरस्कार मिला। वर्ष 1998 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पिंकी के अभिभावकों को ये पुरस्कार प्रदान किया। वाकई ऐसे बच्चे हमारे देश हमारे समाज की शान हैं।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતેં ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
6: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, एक बार पुनः खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, रेडियो टंटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टंटिया भील 90.8 FM की यही कोशिश रही है कि वह आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजनाओं को, महत्वपूर्ण तकनीकों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारे किसान की आजीविका सशक्त बने, साथ ही हमारे किसान को आ रही खेती में जो समस्याएं हैं उससे हमारा किसान कैसे निजात पा सके। साथ ही हम कोशिश करते हैं कि जो प्राकृतिक खेती है, हमारी जैविक खेती है, उसमें हमारा किसान जोरों शोरों से सहभागी बने, जिससे कि हमारे न केवल हमारे किसान के परिवार की बल्कि हमारे पूरे देश की जो रासायनिक खातों से जो हम उपजा रहे हैं उससे हमें मुक्ति मिल सके। तो किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं GI टैगिंग को लेकर। हाँ किसान साथियों, क्या है ये जीआई टैगिंग? आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे जीआई टैगिंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को, कैसे जीआई टैगिंग हमें मिलता है और उसमें क्या क्या किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जीआई टैगिंग दी जाती है। किसान साथियों, जीआई टैगिंग से हमें बहुत ही फायदा मिलता है, तो इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सुनेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें क्या मुनाफा मिल सकता है। चर्चा को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं ये एक रिपोर्ट।
7: जीआई टैग या पहचान उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और उनमें वहाँ की स्थानीय खूबियाँ मौजूद होती हैं। दरअसल जीआई टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं। भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है। जीआई टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्थान ना करे। देश में इसके लिए बाकायदा कानून है। ये कानून आश्वासन धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है। यानी अगर कोई मलिहाबाद के नाम से बेचा जा रहा आम अगर मलिहाबादी नहीं है तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं और इस कानून के अंतर्गत किसी उत्पाद का पंजीकरण जीआई टैग यानी भौगोलिक उपदर्शन या संकेत कहलाता है। खेती के मामले में इसका फायदा किसानों को मिलता है। उपभोक्ता मशहूर जगह की असली कृषि उपज को ज्यादा भाव देने में गुरेज भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ की माटी का स्वाद, वहाँ की जलवायु की विशेषता और स्वाद की विशिष्टता इसमें समाहित होती है। इतना ही नहीं, ये टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। जीआई टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को मंजूरी दी। ये अधिनियम 2003 से अमल में आया है। भारत में साल 2004-05 में दार्जिलिंग चाय से शुरू हुआ जीआई टैग का सफर करीब 370 उत्पादों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि 370 में से 130 उत्पाद कृषि और खाद्य क्षेत्र के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। अगर राज्यवार बात करें तो असम की तेजपुरी लीची, जोहार चावल, असम कार्बी एंगलोंग अदरक, बिहार का कतरनी चावल, भागलपुरी जरदालू, मगही पान और शाही लीची को जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, गुजरात के गिर केसर आम, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय व हिमाचली काला जीरा और राजस्थान की बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग वाले उत्पादों से दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग ने तब से और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है जब से सरकार का ध्यान वोकल फॉर लोकल की ओर स्थानांतरित हुआ है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है।

0: तो अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट देखी, जीआई टैगिंग यानी कि भौगोलिक पहचान के बारे में थोड़ा बहुत तो जान लिया। तो फिर आइए इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों से भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर बजाज से यहाँ पर। जीआई टैगिंग की जब हम बात करते हैं, भौगोलिक पहचान की हम बात करते हैं, तो ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों है, इसके बारे में आप सबसे पहले जानकारी दें।
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा आदिति आपने कि सबसे पहले जीआई यानी भौगोलिक पहचान की बात करते हैं। और शुरू में आपने कहा ही था कि असम की चाय और बनारस की साड़ियां, ये सब चीजें इतनी मशहूर होती हैं, जब भी कोई जाता है तो वो सोचता है कि इसको मैं जरूर खरीदूंगा, या अगर खाने पीने की चीज है तो इसका जरूर खाकर या उसका टेस्ट करके पता करूंगा कि ऐसा खास क्या है उसमें, और वाकई खास होता है। तो जीआई एक प्रोडक्ट, ये जो एक टैगिंग है, ये उरुग्वे राउंड के बाद जब ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था तब आर्टिकल 22 और 24 के तहत, तब ये कहा गया कि भाई हर भौगोलिक क्षेत्र की एक विशेष पहचान है, उस उत्पाद से जुड़ी हुई उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसकी एक खास विशेषता जुड़ी हुई है, तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसकी हमें उस पहचान को जो है वो बनाए रखना है कि हाँ ये जो उत्पाद है ये इस क्षेत्र का है और विशेष है, इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। तो ये एक WTO के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत हुआ। अब उदाहरण जैसे आपने दिए, हमारे यहाँ अभी 415 के करीब GI टैग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारा मलियाबादी आम है, केसर आम है, बैंगन पल्ली आम है, अल्फेंजो आम है, चाय है, और इस तरह आशाही लीची है बिहार की, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 415 के लगभग आज की डेट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 140 जो है वो कृषि उत्पाद हैं।
0: जी, तो 140 कृषि उत्पाद हम कह सकते हैं कि इनकी GI टैगिंग हो चुकी है। तो ऐसे में राजेंद्र कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, ये GI टैगिंग करता कौन है, इसके बारे में भी तो हमारे किसानों को पता होना चाहिए।
2: ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ये एक

0: वो एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, वो नॉन ट्रेडिंग न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए, यानी कि एक एसोसिएशन है जिसके कुछ मेंबर्स रिकग्नाइज करते हैं उसको और कुछ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। इंस्पेक्शन मैकेनिज्म सर्टिफाई करेगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे डॉक्टर बजाज ने बताया, एट्रिब्यूटेबल टू दैट रीजन है या नहीं। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स जो लुक अलाइक होते हैं लेकिन वो उस रीजन से आते नहीं है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन बॉडी जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जरूरी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अब जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो हम पब्लिक राइट्स की बात करते हैं, वो राइट्स जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे हम कोई ट्रेडमार्क या प्राइवेट राइट्स की बात करते हैं वो प्राइवेट ट्रेडर्स की होती हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं वो कम्युनिटी को दिए जाते हैं, और ये जो बॉडीज जो होती हैं ये कस्टोडियंस होती हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल होने के बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, और अंडर द एक्ट एक टेक्निकल कमिटी है, उसका प्रोविजन है, जो उसको एनालाइज करती है, जो उसको देखती है कि ये जो जीआई प्रोडक्ट है वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन है या नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद फिर एप्लीकेशन एडवर्टाइज होती है, 4 महीने का टाइम दिया जाता है, कोई भी एग्रीड पर्सन वहां पर अपोज कर सकता है, और उसके बाद फिर अगर कोई ऑपोजिशन नहीं होती है तो वो रजिस्टर हो जाता है, वो जीआई रजिस्टर हो जाता है। अगर नहीं होगा तो ऑपोजिशन जो है वो चलती है। तो इस तरह से ये जीआई प्रोसेस कंप्लीट होता है।
1: जी, तो पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है, इन बातों को जरूर ध्यान में यहाँ पर रखने की जरूरत हो जाती है। तो अब मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, धान हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की बहुत प्रमुख फसल है, और उसकी बासमती की हम बात करें तो पहचान है हमारे देश से, बहुत ही अच्छे स्तर पर निर्यात भी होता है। तो ऐसे में बासमती के लिहाज से जीआई टैगिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हमारे किसान और इसकी ओर बढ़ना चाहे तो?
2: देखिए अदिति, धान जैसा आपने भी कहा और पूरे विश्व में ये जानकारी है कि धान भारत के लिए विशेष तौर पर बासमती
1: जी,
2: धान
1: जी,
2: बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है
1: जी।
2: इसके लिए हमारे किसान जो हैं वो विशेष तौर पर इसके इसके लिए जिम्मेदार है
1: जी।
2: लेकिन चूंकि धान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो उसकी उपज से लेकर और उसके निर्यात तक
1: जी,
2: उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होते हैं। अब धान के लिए भारत सरकार ने विशेष प्रयास किए, अपीडा को इसका अधिकार दिया कि वो बासमती को जीआई टैगिंग करे, और इसी परिणाम स्वरूप 2016 में हमें बासमती धान, बासमती चावल का जीआई टैग, जो जैसा अभी राजेंद्र जी ने बताया, चेन्नई जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका अधिकार अपीडा को मिला
1: जी।
2: उसके बाद से अब तक पूरे जोर शोर से अपीडा इस प्रयास में कार्यरत है, इस प्रयासरत है कि हम कैसे ये जीआई टैगिंग को हम भारत से निकलकर बाहर, जहां जहां हमारा, हम करीब करीब 170 देशों में बासमती एक्सपोर्ट करते हैं,
1: बिल्कुल,
2: और उन सभी देशों में जाएं और अपने इस जीआई टैग को वहां भी रजिस्टर करें
1: जी,
2: जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा उस बात का फायदा मिले, उसका लाभ मिले, क्योंकि जितना हम निर्यात करेंगे उतना ही हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा।
1: बिल्कुल। तो जीआई टैगिंग के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का बदलाव आपने एक्सपोर्ट में देखा है, निर्यात में किस तरह का बदलाव आया है जब से जीआई टैगिंग हुई है?
2: देखिए, जीआई टैगिंग से एक बहुत बड़ा लाभ जो उस उत्पादक, उत्पाद का जो मालिक है उसको मिलता है
1: जी।
2: जीआई टैग का, जैसे कि अभी बजाज साहब ने भी बताया, जीआई टैग अपने आप में एक विशेष उत्पाद है, तभी उसको जीआई टैग मिलेगा, और जब उत्पाद विशेष है तो स्वाभाविक है उसका मूल्य भी विशेष मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कारण है कि बासमती के उत्पाद से हम बहुत लाभ, पूरा देश और हमारे देश के पूरे किसान इस बात का लाभ उठाते हैं, और पूरे संसार में हम लोगों को बासमती खिलाते हैं, इसके लिए श्रेय हमारे किसानों को जाता है।
1: बिल्कुल, इसका पूरा श्रेय जो है हमारे किसानों को जाता है, और हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन भी रहा है, और हमारे किसानों का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ है, सहयोग है। बढ़ना चाहेंगे आगे डॉक्टर बजाज, आपके पास हम यहाँ पर आना चाहेंगे। आपने बताया

0: 140 के करीब कृषि उत्पाद हैं जिनको जीआई टैगिंग मिल चुकी है, लेकिन अगर हमारे किसान या फिर कहें कि और संगठन वगैरह अलग अलग उपज की जीआई टैगिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कहाँ आवेदन करना होगा, क्या प्रक्रिया रहती है उसकी?
1: बहुत से ऐसे उत्पाद हैं, जैसे अभी हाँ। कहा कि केवल 140 ऐसे उत्पाद हैं जो कि अभी जीआई रजिस्टर हुए हैं
0: जी।
1: और हमारे तो हिंदुस्तान में बहुत सी जो उत्पाद हैं जो कि विशेषता रखते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं भारत की अतुल्य, भारत की अमूल्य निधि ये हाँ। कहा जाता है। तो बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र विशेष की प्रतिष्ठा लिए हुए हैं, तो उनको रजिस्टर कराने के लिए जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे बासमती चावल है वो हर उस किसान का हकदार है जो बासमती उगाता है, तो इसीलिए जो उत्पाद है उसको एक कोई एजेंसी जो है, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो या गैर सरकारी संस्था हो जो कि सच में हकदार है उसका कस्टोडियन बनने की, उसको लेकर वो रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं और उसका फिर पूरा एक प्रोसेस है रजिस्टर कराने के लिए, जैसा भी राजेंद्र जी ने बताया था कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और उसके बाद कस्टोडियन बनना भी आसान नहीं है। मैं अगर एक उसका जीआई का कस्टोडियन बन गया तो उसकी पहरेदारी भी करनी है मेरे को, जैसे हम बासमती की पहरेदारी भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं दुनिया में कोई जो है वो बासमती ना कहलाए, हम कहते हैं जैसे ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन होता है ना कि मेरे ट्रेडमार्क को कोई दूसरा ना इस्तेमाल कर ले, इसी तरह जब एक जीआई रजिस्टर हो जाता है तो उसका एक पहरेदारी भी करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है, भाई दूसरे को तुम नाजायज, हम उसका बगैर हमारी मर्जी के हम उसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे क्योंकि ये एक विशेष अधिकार है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जिसका वो उत्पाद है उसको हम प्रीमियम मिलता है, दूसरे उत्पाद में उसको पता होता है कि ये जो भी खरीद रहा है उसको मालूम है कि ये एक विशेष चीज है जो मैं खरीद रहा हूं और इससे मुझे जो है एक अच्छा जो है वो और कहीं नहीं मिलता दुनिया के कोने में, एक यहीं पर ये चीज मिलती है और उसका एक प्रीमियम भी उनको दिया जाता है। तो इसीलिए इसका जो है वो रजिस्टर एक संस्था कर सकती है, चाहे सरकारी या गैर सरकारी हो, और फिर उसका कस्टोडियन भी बनना पड़ता है।
0: बिल्कुल, तो आपने कहा कि एक संस्था यहां पर जीआई टैगिंग के लिए आवेदन आगे बढ़ा सकती है, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या फायदा लाता है ये जीआई टैगिंग, किस तरह से फायदेमंद साबित होता है? राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, हमारे किसानों के लिए जीआई टैगिंग कितना फायदेमंद है?
2: मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल।
2: दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी का प्रोटेक्शन 1986 से फॉर्मल ढंग से स्टार्ट हुआ क्योंकि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट है ये 2003 में आया, 15 सितंबर 2003 में, उससे पहले भी इंडिया में स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन रही और दार्जिलिंग टी जो है एक सर्टिफिकेशन मार्क है। तो 2018 में वर्ल्ड बैंक और एफएओ ने एक स्टडी स्पॉन्सर की थी जिसमें 6 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वर्ल्ड वाइड से सेलेक्ट किए गए थे, उसमें दार्जिलिंग टी भी थी और उस स्टडी का फोकस था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन से क्या फायदा होता है। तो उसमें दार्जिलिंग टी के बारे में ये बताया गया कि जब से दार्जिलिंग टी की प्रोटेक्शन स्टार्ट हुई है तो उसका बेनिफिट जो वहाँ पे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि दार्जिलिंग टी सिर्फ 87 टी गार्डन्स में ही प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि सारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस करता है, सिर्फ 87 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे दार्जिलिंग टी होती है और वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ वर्क फोर्स वो विमेन है, तो उनका एम्पावरमेंट जब जीआई प्रोटेक्शन से होता है तो उनके लिए स्कूल्स, हर टी गार्डन ओनर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो गार्डन में देता है। तो उस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि दार्जिलिंग टी की वैल्यू टुडे इन कंपैरिजन टू जो ऑर्डिनरी टी है वो इतनी ज़्यादा है जीआई प्रोटेक्शन की वजह से, और दार्जिलिंग टी वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्टेड है, उसको जो है यूरोपियन कमीशन ने भी जीआई टैग दिया था और वो जीआई टैग मिलने के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ दार्जिलिंग टी बढ़ गए हैं और जैसे ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उसका जो बेनिफिट जो है ग्रास रूट्स पर जो वर्कर्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं उन पे होता है, ऐसा ही बासमती राइस पे भी होगा। इनफैक्ट बासमती राइस का प्रोटेक्शन भी जो है उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है और अब जो है बासमती राइस जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बताया और उसका प्रोटेक्शन भी उसी लेवल पे चल रहा है जो दार्जिलिंग टी का है।
0: जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर फायदे तो अनेक हैं अगर हम जीआई टैगिंग करते हैं। रुक करना चाहेंगे अब डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आपने कहा कि अब यहाँ पर कवायदे चल रहे हैं, कोशिशें चल रहे हैं कि अलग अलग देशों में भी जीआई टैगिंग हो सके हमारे बासमती चावल की। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जीआई टैगिंग किस तरह से काम करता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
3: देखिए अदिति, जैसा कि हमारे घरेलू सिस्टम में एक जीआई रजिस्ट्रार है, उसको हर किसी कोई भी प्रोडक्ट को रजिस्टर करने का एक तरीका है
0: जी।
3: इसी तरीके से अगर हम विदेशों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहां भी लगभग वैसे ही तरीके सामने आते हैं हमारे। और अगर हम वहां अपने जीआई टैग प्रोडक्ट को अगर वहां नहीं कराते हैं रजिस्टर, तो हो सकता है वहां कोई हमारे हमारे चीज के नाम को का दुरुपयोग करके वहां वो बेचता रहे। इसलिए यदि हमें अपने जीआई प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको संभाल कर रखना है, तो ये जरूरी है कि हम अपने उस उत्पाद को जहां भी हमारा मार्केट है, हमारा जो मुख्य मार्केट है, उस मार्केट के उन देशों में जाएं और अपने उस उत्पाद को वहां भी रजिस्टर करें। इसी कड़ी में अपीडा ने एक बड़ी पहल की बासमती के लिए, क्योंकि बासमती हमारे लिए बहुत बड़ा उत्पाद है
0: जी।
3: अगर मैं दो दशक की बात करूं, 2002-03 के लगभग बासमती का जो एक्सपोर्ट था वो करीब करीब 7 मिलियन के करीब था। आज वो बढ़कर करीब 45-46 मिलियन टन हो गया। तो इस बड़े उत्पाद को, जिसका कि पूरा का पूरा लाभ और श्रेय हमारे किसानों को जाता है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम विदेशों में जो हमारे ग्राहक जो देश है, उन सभी देशों में प्रयासरत हैं कि हम बासमती को जैसा हमने भारत में रजिस्टर कराया एक जीआई प्रोडक्ट, उसी तरीके से हम विदेशों में भी जाएं और अपने इस बासमती को एक जीआई टैग के तहत वहां भी रजिस्टर कराएं। और इस कड़ी में हम करीब करीब 20 के करीब देशों में हम हमारी एप्लीकेशन जो है, हमारे प्रार्थना पत्र वहां चले हुए हैं। और इस कड़ी में करीब करीब 8 देशों में हम ऑलरेडी या तो जीआई ले चुके हैं या बासमती का हमारा एक लोगो है, या तो हमने लोगो को रजिस्टर कराया है। तो ये रजिस्टर कराने से क्या होगा कि हमारा उस देश में भी हमारा बासमती प्रोटेक्ट रहेगा, कोई और उसकी नकल नहीं कर सकता, उस नाम को मिसयूज नहीं कर सकता। और हमारे जो किसान हैं, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ जो बासमती है, वो धड़ल्ले से वहां बिकेगा और उसका पूरा लाभ उनको मिलेगा।
0: हमारे किसानों ने जो कड़ी मेहनत से बासमती यहाँ पर तैयार किया है, उसकी पहचान बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, कोई भी उसका दुरुपयोग, उसके नाम का दुरुपयोग यहाँ पर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बजाज, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जब किसी भी कृषि उत्पाद को यहाँ पर जीआई टैगिंग मिलती है, तो ऐसे में जो आसपास के क्षेत्र के किसान हैं या फिर उसी क्षेत्र के हम किसानों की बात करें, तो उन्हें किस तरह से फायदा मिलता है इसका?
1: सभी को फायदा मिलता है
0: जी।
1: जब जीआई टैगिंग हो जाता है तो जैसे ये कहा कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है
0: जी।
1: अब बासमती जीआई टैग हुआ तो जहां जहां बासमती उगाया जाता है वो उसका।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। हम चर्चा कर रहे हैं जीआई टैगिंग के बारे में। जीआई टैगिंग क्या होता है, कैसे हमें अपनी एक पहचान मिल सकती है और इसके क्या फायदे होते हैं, आइए इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते हैं इन एक्सपर्ट की मदद से।
1: आते हैं तो कुछ समस्याएं तो जरूर आती होंगी, जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगी राजेंद्र कुमार जी से कि जब हम जीआई टैगिंग पर जाते हैं तो कुछ समस्या तो आती होंगी, हमारी एजेंसियों को या संगठनों की बात करें तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जब जीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के सामने जाती है तो एक समस्या होती है कि जब एग्जामिनेशन होता है उसका, उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब उसको एनालाइज करते हैं तो उनका मेन फोकस होता है कि जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं ये साइंटिफिकली एक्यूरेट हैं या नहीं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिक है या नहीं। क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ऐसा होता है जैसे कोई इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पे जो है पास ऑफ किए गए, वो ऑथेंटिक सोर्स बहुत जरूरी है। और उसके बाद जरूरी होता है कि इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स कि जो बॉडी रजिस्ट्रेशन के लिए जारी है उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोडक्ट को एनालाइज करने का, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एसोसिएट करते हैं उस प्रोडक्ट को उस रीजन के साथ, और जब तक वो इंस्पेक्शन मैकेनिज्म उसका उसके पीछे नहीं होगा तो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कश्मीरी कारपेट्स
1: जी।
2: अब कश्मीरी कारपेट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए जो बॉडी जिसने रजिस्टर कराया है कश्मीरी कारपेट एज ए जीआई, उन्होंने क्यूआर कोडिंग की है। जब आप कारपेट लेने जाते हैं तो उसमें क्यूआर कोडिंग है और कोई भी स्मार्टफोन से किसी भी डिवाइस से उस क्यूआर कोड से ये मालूम कर सकता है कि ये कहाँ किस रीजन से है, किस वीवर ने इसको वीव किया है। तो इसलिए जब कभी भी मार्केट में कश्मीरी कारपेट बिकता है तो उसके ऊपर जो क्यूआर कोड लगाता है उससे कस्टमर जो है वो मालूम कर सकता है कि ये जेन्युइन कश्मीरी कारपेट है। तो ये जो सिस्टम है वो रजिस्ट्रार ऑफ जीआईज एग्जामिन करता है। और उसके बाद एक और मुद्दा आता है कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द बॉडी कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, कि कभी कभी जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो उस पूरे प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। बहुत एग्जांपल्स आते हैं, हैदराबाद बिरयानी का एग्जांपल बड़ा फेमस है जिसमें वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो जो बॉडी थी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी और उन्होंने जो है वो अपना टाइटल प्रूव नहीं कर पाए तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का होना, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म का होना, ट्रेसिबिलिटी का होना और फिर जो है जो ओवरऑल सुपरविजन है उसके बाद फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। और जैसे मैंने पहले समझाया उसके बाद कोई भी अपोज भी कर सकता है एप्लीकेशन, और ये अपोजिशन कहीं से भी आ सकती है, हिंदुस्तान से ही नहीं, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
1: और जैसे आपने कहा कि उसके विरोध में भी यहाँ पर सवाल उठाए जा सकते हैं, ऑपोजिशन हो सकता है, तो ऐसे में फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है, उसका जस्टिफिकेशन किस तरह से दिया जाता है?
2: उसका जस्टिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के सामने जो कि क्वेजाई जुडिशियल बॉडी है, जैसे कोर्ट्स होते हैं तो उसमें वो एविडेंस एग्जामिन होता है, जिसे दूसरी बॉडी ये कहती है जो अपोज करती है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज ये नहीं है
1: जी,
2: ये होनी चाहिए, या इसका एरिया इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा होना चाहिए। तो इस टाइप की ऑपोजिशंस आती हैं और उसको भी जो है थ्रू प्रॉपर जुडिशियल माइंड एग्जामिन किया जाता है कि ये सच है या नहीं। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट डॉक्टर बजाज ने बताया, उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 24.9, वो ये कहता है कि अगर कोई जीआई डोमेस्टिकली प्रोटेक्टेड नहीं है तो किसी कंट्री के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर उसकी जो स्क्रूटनी होती है, उसका एग्जामिनेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे बासमती का एग्जांपल दिया, दार्जिलिंग टी का एग्जांपल दिया, ये डोमेस्टिकली रजिस्टर्ड है
1: जी।
2: और इसीलिए जो है बाहर की कंट्रीज, बाहर के कोर्ट्स उसको रिकग्नाइज करते हैं कि हमने हिंदुस्तान में उसको प्रोटेक्ट किया।
1: बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ यहाँ पर समझाया है राजेंद्र जी ने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब या अगर आप जीआई टैगिंग के लिए जाएंगे तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन से हम कह सकते हैं दस्तावेजों की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है जिससे आप जीआई टैगिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब हम डॉक्टर शर्मा के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, जब हम किसी कृषि उत्पाद की जीआई टैगिंग की बात करते हैं तो उससे हमारे किसानों को ही फायदा नहीं होता बल्कि फसलों को भी उससे काफी फायदा होता है। फसल संरक्षण की हम बात करें तो उससे भी काफी मजबूती मिलती है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि फसल संरक्षण किस तरह से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है अगर हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं तो।
3: देखिए अदिति, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग कोई भी उत्पाद का जीआई टैग ले लेते हैं, लेकिन ये उससे भी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए कि उस जीआई टैग को हम कैसे संभाल कर रखें
1: जी,
3: और कैसे उस उत्पाद के साथ आगे बढ़े। क्योंकि यदि हम उस टैग का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा टैग लेने का कोई विशेष लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने बासमती का जीआई टैग लिया, हम पूरे विश्व में बासमती चावल जो है लोगों को खिलाते हैं और लोग पसंद करते हैं। उसमें विशेष अरोमा है, उसकी एक अपनी लेंथ है, उसकी एक ब्रेड्थ है, उसमें जो बायोकेमिकल जो बासमती के साथ जुड़े हुए हैं, जो कुदरती रूप में जैसे जैसे

0: जिन जिन इलाकों में बासमती होता है उनमें वो होगा ही होगा, तो हमें ये भी पक्का सुनिश्चित करना है कि वो सारी जो क्वालिटी, वो जो मानक जिनको हम कहते हैं या स्टैंडर्ड हम कहें, वो स्टैंडर्ड बासमती उत्पाद जो हमारा निकले, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ बासमती, वो सारे के सारे मानक उसमें पूरे हों। यदि वो मानक पूरे नहीं होंगे, तो अगर मान लीजिए कल को हमने कोई बासमती के नाम पर हमने चावल भेज दिया यूके में, और वहाँ लोगों ने देखा, या जो हमारे कंज्यूमर हैं वो बड़े समझदार हैं, कंज्यूमर को अगर कल को पता लगेगा नहीं ये तो बासमती जैसा नहीं है, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब वो कोई भी उत्पाद, वो बासमती हो या कोई अन्य जीआई टैग उत्पाद हो, जब वो उसका उत्पादन करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करें
1: जी।
0: यदि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका एक अच्छा मूल्य मिलता है, अच्छा भाव मिलता है, उसके एक्सपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं आती है, और किसानों के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा है, मालामाल है।
1: बिल्कुल, तो मानक के अनुरूप यहाँ पर उत्पादन करना बहुत जरूरी है, ऐसे में ही उपभोक्ता जो है ज्यादा से ज्यादा उस हम कह सकते हैं उत्पाद का खरीदेंगे या फिर सेवन भी करेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे, जीआई टैगिंग हो गई है लेकिन उन मानकों के अनुरूप उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, इस अवस्था में क्या होगा?
2: बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा दी थी, क्योंकि जीआई टैग लेना ही खाली काफी नहीं है। अब उसके बाद जैसे बासमती, तो चलो उदाहरण हम बार बार दे रहे हैं, दार्जिलिंग चाय का भी उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि पहले से ही बहुत वॉल्यूम में उसकी उपलब्धता है
1: जी।
2: ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी हमारे पास है तो सही, जीआई टैग भी ले लिया हमने, लेकिन उतना जो है उसकी वॉल्यूम में उपलब्धता नहीं है, और उपलब्धता अब उसकी होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब एक, जो भी उस क्षेत्र के जो किसान हैं वो अब एकजुट हों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब इसका जो है एक भौगोलिक पहचान हो गई है उत्पाद की, तो उसके साथ जुड़े किसान या किसान जो उनके साथ हैं जो प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं, क्योंकि खाली फसलों का ही या उन्हीं का ही जीआई टैग नहीं होता, जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनका भी जीआई टैग होता है, तो उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो एक क्लस्टर अप्रोच में चलें, जिससे कि वो मिलकर एक वॉल्यूम दे सके, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा थोड़े थोड़ी चीज से उसका कोई लाभ नहीं होगा। कई ऐसे उत्पाद हैं जो महीने में, साल में एक महीना होते हैं और उसको बेच दिया और 12 महीने उसको खत्म हो गया, उसको कोई लाभ नहीं है। तो सबको मिलकर क्लस्टर अप्रोच लेके चलना है और एक FPO बनाकर, FPCs बनाकर उसको कोशिश करनी है कि हम लोग वॉल्यूम दें, जिससे कि वॉल्यूम होने से क्या फायदा होगा, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, दूसरा हम वॉल्यूम होने से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट के लिए वॉल्यूम चाहिए, उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और अपने घरेलू बाजार में भी हम बेच पाएंगे। उससे जब कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा हमारा बिक्री होगी, तो उसका लाभ जो है वो नीचे तक जाएगा। बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं, कॉस्टिंग को ध्यान रखें और अपनी जो एक विशेष पहचान है उसको बनाए रखें। उसके अलावा जो हमारी जो जीआई टैग को अगर इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है उसको भी बचाने की पूरी कोशिश करें। ये एक तरह का ट्रेडमार्क है आपका, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी चीज है जिसको मैं या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
1: बिल्कुल, तो इस बात का भी जरूर यहां पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने बताया कि ऑथेंटिसिटी यहां पर हो जाती है जब हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उपभोक्ताओं के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ये सच में कश्मीर का शॉल है, क्या ये सच में लखनऊ का आम है? ऐसे में क्या कह सकते हैं आप हमारे उपभोक्ताओं को कि किस तरह से ऑथेंटिसिटी यहां पर प्रूफ हो?
3: जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कश्मीरी कारपेट्स में QR कोडिंग एक वन ऑफ दी मींस चूज किया गया है, जिससे कंज्यूमर अपने आप ही ऑथेंटिकेट कर सकता है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं।
1: जी,
3: ये प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जैसे दार्जिलिंग टी है या बासमती राइस है या अल्फोंसो मैंगोज है, उसमें ऑथेंटिसिटी का प्रूफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जैसे एरोमेटिक राइसेस हैं, एरोमेटिक राइसेस एक जैसे ही लगते हैं, और ये समस्या जो है हमारे सामने आई थी 1998 में, एक US की कंपनी राइस टेक, उसने पेटेंट लिया और उस पेटेंट में ये कहा गया कि बासमती राइस जो है कोई नेचर का गिफ्ट नहीं है, इसको कहीं भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उन्होंने एक राइस अपने हाइब्रिडाइजेशन से बनाया, उसकी क्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही थी जैसे बासमती राइस की होती है, एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन। और उन्होंने कहा कि ये राइस जो है हम यूएस में ही ग्रो करेंगे। तो उस पेटेंट से हिंदुस्तान काफी रैटल्ड हो गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें एपीडा और सीएसआईआर का बहुत रोल था। उन्होंने वो एप्लीकेशन फाइल की, रेवोकेशन की यूएसपीटीओ के सामने। हाँ। और ये प्रूव किया कि ये जो प्रोडक्ट है बासमती राइस, ये यहीं प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें कुछ क्वालिटीज हैं जो नेचर ने दी है और उसको जो है कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। और इस एफर्ट की वजह से वो पेटेंट जो है रिवोक हो गया, वहां की अथॉरिटी ने, वहां के कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोटेक्शन है उसको इस तरह से डिफाइन करें कि हम एनफोर्स भी कर सकें। टर्मरिक पाउडर का एग्जांपल आता है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, यूएस कंपनी ने उसको पेटेंट किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जो है रिवोक किया। तो उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की जरूरत पड़ी हमें, हमें ये प्रूव करना पड़ा कि जो टर्मरिक पाउडर है हमारा, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और उसको कोई भी जो है उस पर पेटेंट नहीं ले सकता।
1: तो जी बिल्कुल, तो ये सब हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी प्रूफ यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर जीआई टैगिंग जो करवाते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि मानकों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। अब हम निर्यात की यहाँ पर फिर से एक बार बात कर रहे थे, डॉक्टर बजाज आपके पास आना चाहेंगे, हम एपिडा की बात करते हैं। तो कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए शीर्ष संस्थान माना जाता है, जीआई टैगिंग होने के बाद निर्यात में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप लोग, इस पर क्या कहेंगे हमारे किसान ताकि ज्यादा से ज्यादा इस ओर बढ़ सके, इसके लिए हम जानना चाहेंगे।
2: अब एपिडा पूरा निरंतर प्रयासरत है कि जो भी जो जीआई टैग है, जो भौगोलिक पहचान के उत्पाद हैं, उनका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके और निर्यात बढ़ भी रहा है। वैसे मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, हम लगभग 3,00,000 करोड़ से ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में निर्यात हो रहा है और लगभग हर साल ये निर्यात जो है वृद्धि की ओर ही जा रहा है। पिछले साल तो हमने करीब 29% की वृद्धि दी इसमें।
1: बिल्कुल, बहुत ही बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं, सकारात्मक बदलाव यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल, बताएं क्या कह रहे थे आप।
2: तो भौगोलिक पहचान के जो उत्पाद हैं उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो भौगोलिक पहचान के हमारे उत्पाद हैं, जैसा मैंने कहा अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है ये हमारी, तो इसका लाभ जो है वो जो उसके हकदार हैं उन तक मिलना चाहिए और जो उपभोक्ता हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि वो भी इसका उपयोग कर सकें। तो एक विशेष अभियान चलाया हम लोगों ने, हम बायर सेलर मीट कर रहे हैं, क्रेता विक्रेता सम्मेलन कर रहे हैं, हम यहां से जो है उत्पादों को ले जाकर उनका विशेष जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, जिससे कि लोगों को बताएं कि ये जो विशेष जो उत्पाद है ये सिर्फ हिंदुस्तान में एक विशेष क्षेत्र का ही उत्पाद है, हर जगह से नहीं मिल सकता है। तो एक अच्छी एक जो है वो खरीदार को भी अच्छा लगता है उसको खरीदने में और उसका लाभ भी उसको मिलता है। विशेष अभियान चल रहा है, बहुत प्रमोशन हो रहा है और बैकवर्ड लिंकेज जैसे मैंने कहा उस तरफ हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका वॉल्यूम मिले, उत्पादन हो और बहुत जरूरी है कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बनी रहे, इस तरफ भी ध्यान रखते हैं। और बहुत जरूरी है कि अगर जीआई ले लिया तो उसका प्रोटेक्शन भी रखना है, ये ना हो कि मैं तो जीआई लेके बैठ गया और दूसरा कोई जो है उसी उत्पाद को जो है उसी नाम से बेच रहा है, ये भी नहीं होने देना, इसको भी हम लोग प्रयास रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है, बिल्कुल इस ओर हमें बिल्कुल ध्यान देना है। निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि डॉक्टर बजाज ने बताया है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है हमारे देश को, हमारे देश की एक अलग पहचान बन रही है विश्व स्तर पर। तो ऐसे में हम सभी को इस ओर भी खास ध्यान रखते हुए आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे। हम भी फिलहाल बढ़ते हैं आगे और यहां पर मैं डॉक्टर शर्मा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो जीआई टैगिंग बहुत सारे उत्पादों की हुई है, लेकिन खास तौर पर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में ज्यादा ऐसे उत्पाद देखने को मिलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी के क्षेत्र के जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
0: देखिए, ये निश्चित रूप से आदित्य आपकी बात सही है, और हमारे उत्तर भारत के जो किसान हैं उनको भी ये जरूरत है कि वो भी जैसे हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, वहाँ छोटे छोटे कई ऐसी उत्पाद हैं जिनको आगे लाके उनको जीआई टैगिंग करा के उनके उत्पादन को बढ़ा।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
0: यार दिया जा सकता है और उसके लिए ये जरूरी है कि वहाँ जो छोटे समूह हैं, हमारे जो किसान समूह जिनको आजकल पूरी भारत सरकार और पूरी राज्य सरकार भी जिनको पूरा महत्व देते हैं और उनके माध्यम से किसानों तक पहुँचने का एक प्रयास है, तो ये किसान समूह एक बहुत बड़ा रोल इसमें कर सकते हैं, जो हमारे किसानों को बता सकते हैं, उनको जा सकते हैं, उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लाके, और जो हमारी इस तरह की जो छोटी-छोटी प्रोडक्ट हैं उनको, जैसे कि बजाज साहब ने कहा कि इसमें जल्दी से अपना ये प्रयास करें किसान लोग, अगर कोई उत्पाद उनके आसपास के एरिया में, उनके जिले में, उनके तहसील में, या कोई जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ 10-12 गांव ही हो जहां पे वो विशेष रूप से वो कोई उत्पाद होता है, वो उत्पाद फल का हो सकता है, वो उत्पाद किसी सब्जी का हो सकता है, वो उत्पाद किसी अन्न का हो सकता है। जैसे अगर आप आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं, एक भालिया गेहूं है, अब वो भावनगर जिले के थोड़े से कुछ एरिया में भालिया गेहूं के नाम से उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अलग है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा, हाँ बाद में अगर हमें उसको एक्सपेंड करना है, उसका निर्यात करना है, तो वाकई में हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता को ज्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन जीआई करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आसपास हमारे किसान भाई खास तौर पर और जो हमारे किसान समूह है वो ये सुनिश्चित करें अपने आसपास के एरिया में यदि कोई विशेष उत्पाद है तो उसको जीआई के लिए आगे लेकर आए, ताकि कालांतर में आने वाले समय में वो उसका पूरा लाभ उठा सके।
1: बिल्कुल, तो जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि भावनगर का एक भालिया गेहूं है, अगर हमारे किसान उस छोटे से क्षेत्र में ही, उस दायरे में ही ना रहकर विश्व स्तर पर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो जीआई टैगिंग की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, इससे ना केवल आपके क्षेत्र को एक पहचान मिलेगी, पूरे विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश को एक अलग पहचान मिलेगी, और साथ ही साथ फायदा पूरे देश को होगा, आपको भी होगा। तो जीआई,
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।

0: एक क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलवा सकती है। इसके लिए अब हम सभी को आगे बढ़ना होगा। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं, आइए उनसे और जान लेते हैं। ऐसे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर बजाज से। डॉक्टर बजाज, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि GI टैगिंग जो है प्रसंस्कृत उत्पादों की भी की जा सकती है। अभी तक किसान अलग अलग उपज की यहाँ पर GI टैगिंग कर रहे थे, लेकिन अगर प्रसंस्कृत उपज यहाँ पर लेकर आते हैं, उत्पाद लेकर आते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया कोई अलग है या फिर वही प्रक्रिया रहेगी?
1: वही प्रक्रिया
0: जी।
1: जैसे मिठाइयां हैं, कई हमारी विशेष मिठाइयां हैं, उनका GI टैग है। बहुत सी ऐसी मिठाइयां जिनका तो GI टैग हुआ ही नहीं है, और बहुत सी जरूरत है, क्योंकि ऐसी विशेष जगह हैं, चीजें हैं जिनका हम लोग अब जानते हैं। हम रोजमर्रा में बात करते हैं कि उस जगह की ये चीज बड़ी मशहूर है, वहां जाके हम लोग जरूर खाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सी मिठाइयां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई हैं, उसकी प्रतिष्ठा है, अलग से प्रतिष्ठा है, उनको जो है वो GI टैग की आवश्यकता है। और जब GI टैग हो जाता है तो सबसे पहली तो एक मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि अब ये उत्पाद मेरे ही क्षेत्र का, हमारे ही क्षेत्र का है, और उसको जो है जो भी आएगा हम कह सकते हैं कि ये हमारा उत्पाद है, इसी क्षेत्र विशेष से मिलता है। तो जो भी उपभोक्ता आ रहा है वो उस चीज को खरीदने में उसे भी सेटिस्फेक्शन होगी और हमें बेचने में आसानी होगी। और उसके बाद जो है वो हम लोग उसका प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं कि ये उत्पाद इस जगह का है, विशेष GI उत्पाद है।
0: जब एक अलग पहचान मिल जाएगी तो उसके दाम भी काफी अच्छे मिलेंगे, तो इससे फायदा ही फायदा हमें सामने नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई तरह के कुछ बाधाएं भी होती हैं, तो राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। उपभोक्ताओं के साथ अगर किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी हो जाए या फिर ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो ऐसे में क्या किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान भी है?
2: बिल्कुल, हमारी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों हैं
0: जी।
2: उसमें जो GI ओनर होता है, जो कस्टोडियन होता है, उसको राइट दिया गया है कि वो कोर्ट में जाके एक इन्फ्रिंजमेंट एक्शन फाइल करे, और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इन्फ्रिंजमेंट के भी काफी फॉर्म्स होती हैं कि एक प्रोडक्ट जो कि GI प्रोडक्ट नहीं है वो मार्केट में पास ऑफ कर रहा है एज ए GI प्रोडक्ट। तो वो जैसे बनारसी साड़ी का एग्जांपल है
0: जी।
2: बनारसी साड़ी जैसे मेड इन चाइना हिंदुस्तान में बिक रही हैं, लेकिन बनारसी वो जो है बनारसी साड़ी के GI का इंफ्रिंजमेंट होगा, और उसमें जो है सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्रिमिनल रेमेडी भी जो है अंडर द एक्ट काफी स्ट्रिक्ट है, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस मानी गई है। उसमें जो है पुलिस जो है विदाउट एनी एनेबलिंग पावर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट भी कर सकती है, इसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो हमारा GI एक्ट काफी स्ट्रांग है और काफी मॉडर्न है, और उसमें जो प्रोविजंस हैं अगर GI ओनर उनको एनफोर्स करे तो हमारे कोर्ट जो हैं काफी फोर्थ राइट है। इनफैक्ट एक एग्जांपल दूंगा, स्कॉच विस्की एसोसिएशन हिंदुस्तान में 1980 से इंफ्रिंजमेंट एक्शंस फाइल कर रही है, और उन्होंने जो है एक तरह से बॉडी ऑफ केस लॉ बनाई है। अगर हम GI लॉ के बारे में हिंदुस्तान में देखते हैं तो SWA स्कॉच विस्की एसोसिएशन ने जो कंट्रीब्यूट किया है केस लॉ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आज तक बहुत यूजफुल रहा है
0: जी। बिल्कुल, तो काफी यहाँ पर देखिए कानूनी प्रावधान भी हैं, अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा धोखाधड़ी भी हो रही है तो आपको यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सहयोग के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। बिल्कुल, GI टैगिंग लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फायदेमंद साबित हो सकती है हमारे संगठनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, एक क्षेत्र की एक नई पहचान बनाने के लिए। तो अंतिम सवाल मैं तीनों से ही एक बार लेना चाहूंगी, उनकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, किसानों की आय को दोगुना करने में ये GI टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगी?
3: देखिए अदिति, ये बहुत ही अच्छे बात आपने उठाई, क्योंकि भारत सरकार विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार इस बात को इंगित करते हैं कि हमें किसानों की आय को बढ़ाना है
0: जी।
3: उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी उत्पाद वो करें वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो
0: जी,
3: और अगर वो जीआई टैग है तो निश्चित रूप से उनकी आय में वृद्धि होगी होगी
0: जी।
3: लेकिन किसी भी जीआई उत्पाद का जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके मन में, उनके दिमाग में उस जीआई उत्पाद के बारे में सही बात बैठना बहुत जरूरी है
0: जी।
3: और इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारा जो ट्रेसिबिलिटी सिस्टम है
0: जी,
3: वो एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। किसी भी उत्पाद का अगर हम हमारे कंज्यूमर तक
0: जी,
3: उसको ट्रेसिबिलिटी से बता पाए कि देखिए ये उत्पाद है, ये यहां से चला, यहां पैदा हुआ और उसके बाद यहां गया और उसका यहां प्रोसेसिंग हुई, यहां पैकिंग हुई और यहां जाके वो कंज्यूमर के तक पहुंचा, अगर हम ये निश्चिंतता अगर हम अपने कंज्यूमर को दे पाए तो निश्चित रूप से
0: वो खरीदेगा ही और लाभ हमारे
3: और लाभ
0: सीधा हमारे किसानों को मिलेगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपसे भी हम टिप्पणी लेना चाहेंगे, किसानों की आय को दोगुना करने में जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगा।
2: मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन है अगर हम इंक्रीज करने पे फोकस करेंगे
0: जी,
2: उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना की जाए
0: जी,
2: क्योंकि जीआई प्रोडक्ट्स जो हैं हिंदुस्तान की इमेज है वर्ल्ड में, अगर हम क्वांटिटी के पीछे भागेंगे और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बदनाम हमारे देश का ही होता है। इसलिए दोनों क्वांटिटी एंड क्वालिटी को साथ साथ चलना बहुत जरूरी है और इसीलिए जो है जीआई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन इतनी हाई नहीं होती क्योंकि उनका रीजन लिमिटेड होता है,
0: पर क्वालिटी यहाँ पर बहुत क्वालिटी मायने रखती है।
2: अगर
0: अच्छी है आपके उत्पाद की तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अच्छा दाम मिलेगा ही मिलेगा, और जीआई टैगिंग हो गई है तो ये सोने पे सुहागा साबित हो जाता है। डॉक्टर बजाज, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए क्या संदेश है आपका।
1: सबसे पहले आपको उदाहरण दे दें, जैसे एक बलिया गेहूं की बात की गई जो घरेलू बाजार में बिकता है, प्रीमियम पे बिकता है, हमने एक्सपोर्ट किया और वो भी प्रीमियम पे किया, क्यों? क्योंकि वो जीआई टैग था और जब प्रीमियम में बिका तो उसका लाभ जो है नीचे तक भी गया, सबको मिला, जो उसके उत्पादन कर रहे थे उनको भी उसका लाभ मिला। तो एक इसी तरह उदाहरण है, जीआई टैग होने पर उसका बेचना आसान है, हमें प्रीमियम मिलता है और एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं जो एक चीज उगा रहा हूँ ये विशेष है, ये दुनिया के और किसी कोने में ऐसी चीज उगती नहीं है या बनती नहीं है, ये हम ही हैं इसके निर्माता या इसको उगाते हैं, तो एक संतुष्टि भी मिलती है। आने वाली जनरेशन को भी हम कह सकते हैं कि ये चीज हमारी जनरेशन ने हमें दी है और हम आगे आपको जनरेशन को देने जा रहे हैं प्रीमियम।
4: जी हाँ किसान साथियों, जीआई टैगिंग से हमें फायदा हो सकता है। एक तो हमें ये चीज बेचने में आसानी होगी, दूसरी चीज कि जो हमें इसके लिए कहीं कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ये खुद में एक प्रसिद्ध चीज होगी कि जो भी आएगा उसे खुद ही पता है कि यहाँ की ये चीज फेमस है और वह उसे लेना जरूर पसंद करेगा। जैसे कि अपने झबवा का अभी कड़कनाथ इतना फेमस है तो हर कोई जो भी आता है वो ज़रूर चाहता है कि जो मांसाहारी है वो ज़रूर चाहेगा कि मैं इसका टेस्ट करूं। साथ ही बहुत सारे जो लोग अंडा खाते हैं वो काफ़ी अंडे की भी डिमांड है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमें इसमें जो इसको इसमें जो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम अगर ये हमारे लिए एक अच्छा है कि हम यहाँ पर कड़कनाथ होता है, इसका मतलब ये नहीं हम उसमें भर भर के पूरा कड़कनाथ पाले और जिससे अधिक पालने के चक्कर में हमारा क्या होता है, जो क्वालिटी है उसको हम खराब ना करें। हमें हमारी क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखना है, उसका भी प्रबंधन करना है, साथ ही हमें अपनी जो क्वांटिटी है उसको भी बनाकर रखना है। तो इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटाबिल 90.8 FM के साथ झबवा की आवाज।
5: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम जावा की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है। हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो पर आपकी अपनी आरजे तनुषा आपके तरानों की हमसफर को। आज का एपिसोड थोड़ा सा सोलफुल, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव और थोड़ा गहरा है। आज हम बात करने वाले हैं इमोशंस की, हीलिंग की, और एक ऐसे सफर की जहां इंसान खुद को दोबारा पा लेता है। इस खूबसूरत सफर पर आज हमारे साथ जुड़ी हैं साइकोलॉजिस्ट, करियर काउंसलर, मेटाफोर थेरेपिस्ट, टैरो रीडर और दिसुखम काउंसलिंग सर्विसेज की फाउंडर दीपा रामचंदानी, थेरेपिस्ट, टैरो रीडर और दिसुखम काउंसलिंग सर्विसेज की फाउंडर दीपा रामचंदानी जी। तो चलिए बहुत मन से, दिल से स्वागत करते हैं दीपा जी का।
2: हेलो।
1: तो दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के।
2: होता है ना, फुल ऑफ जॉय की एक नया प्लेटफॉर्म, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू SN रेडियो एंड टू यू ऑल्सो फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम, वी आर इक्वली हैप्पी एंड इक्वली एक्साइटेड, क्योंकि आप इतने सारे काम करती हैं। कुछ चीजों का तो मुझे मतलब भी नहीं पता जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में जिनका नाम लिया। तो मैं शुरुआत करूंगी आपके बचपन से, और फिर धीरे धीरे सारे राज आपके करियर के और आप जो जो करते हैं उसको खोलेंगे और जानेंगे आपके बारे में, आपके काम के बारे में, आपके जीवन के बारे में।
2: डन। ओके,
1: चलिए शुरू करते हैं। दीपा जी, मेरा पहला सवाल आपके बचपन में थोड़ा आपको ले जाएगा, जहां पे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इतने सारे इमोशनल काम से जुड़े हैं, जहां पे काउंसलिंग भी है और यू नो टैरो भी है, हीलिंग भी है, थेरेपी भी है, तो इन सब का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका कोई एक इमोशनल झुकाव हमेशा बचपन में रहा, या आपके घर में कोई ऐसा माहौल रहा। वो कौन सा पल था, वो कौन सा एहसास था जहां आपको ये लगा कि ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है? क्योंकि ये बहुत रेगुलर इंटरेस्ट एरिया नहीं है, एक बहुत अलग हटके, यू नो सब लोग है हीलिंग में नहीं जाते, सब लोग थेरेपी वर्क में नहीं जाते, साइकोलॉजी नहीं पढ़ते। तो वो कौन सा पल था, कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां पे आपने ये रियलाइज किया कि ये मेरा इंटरेस्ट है और यही मेरी कॉलिंग है?
2: सो राइट, सी ये तो बहुत सही बात है कि ऐसे ही कोई इस फील्ड में नहीं आता। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब मैं छोटी थी, जब मुझे समझ भी नहीं थी, जब मुझे साइकोलॉजी वर्ड भी शायद नहीं पता होगा, मतलब तब से ही ऐसा होने लग गया कि मेरे फ्रेंड्स है ना, सब कुछ शेयर कर लेते थे मुझसे बिना किसी डर के
1: जी।
2: और अब मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि वो एक काउंसलिंग प्रोसेस है ना, स्टार्ट हो चुका था बचपन में। मेरे फ्रेंड्स, मेरे नेबर्स भी कई बार बहुत चीजें से बता के जाते थे, स्कूल में भी मेरे से शेयर करते थे मेरे फ्रेंड्स अपने पर्सनल इश्यूज। तो धीरे धीरे आई रियलाइज कि पीपल लाइक टू शेयर देयर थिंग्स, लाइक देयर स्टोरीज, देयर पर्सनल स्टफ विथ मी। वो ऐसा समझ में आने लग गया था। एंड जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, मतलब मैं कॉलेज मैंने जब कंप्लीट किया था, उसके बाद में कुछ सालों बाद मेरे को अपनी एक टीचर मिली थी जिम में, जिनको मैंने कहा कि मेरे को आज भी साइकोलॉजी बहुत पसंद है। उन्होंने कहा वापस से पढ़ सकते हो। और वहां से ये जर्नी, एक्चुअल जर्नी जो आप पूछ रहे हैं ना, एक्चुअल जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। उससे पहले मुझे ये पता था कि ठीक है, पीपल ट्रस्ट मी, दे लाइक टू, मतलब वो मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझसे बात करना पसंद करते हैं, अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं, और जब मैं शांति से सुनती हूँ तो एक लिसनर क्वालिटी थी। पर मैं सब्जेक्ट में प्रोफेशनली काम कर पाऊंगी, ये मुझे मास्टर्स, जब मैंने 10 साल बाद मास्टर्स किया था, अपनी ग्रेजुएशन के 10 साल बाद, मतलब मास्टर्स करने के बाद भी, मैंने हिस्ट्री में मास्टर्स किया था, तो मैं कंटेंट राइटिंग का वर्क कर रही थी, थोड़ा बहुत मैंने एनिमेशन सीखा, एंड उस टाइम एनिमेशन का इतना स्कोप नहीं था यहाँ, तो मैं जहाँ जाती थी, मतलब मैं ICG से पास आउट थी, तो ICG की टीचर उसी जिम में आई थी।
1: राइट,
2: तो मैंने उनको बोला कि आई रियली लव दिस सब्जेक्ट, मेरी फेवरेट टीचर थी। और मैं सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स भी लाती थी, तभी मुझे लगा ओके, मेरा इंटरेस्ट है और मेरे को अच्छा लगता है साइकोलॉजी।
1: हाँ.
2: उन्होंने कहा आप अभी भी मास्टर्स कर सकते हो। देन आई अप्लाइड इन भवानी कॉलेज एंड देन आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक टिल नाउ।
3: वाह, कितना ब्यूटीफुल सफर रहा मैम। और आपसे बात करके इन 2-3 मिनट में ही मुझे ये एहसास हुआ कि आप बहुत सरल हैं, शायद एज अ पर्सन बहुत सटीक, सरल और सहज हैं, इसीलिए आपसे बात करना लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम हैं, शायद लुप्त हो गए हैं, जो बहुत सरलता से अपनी बात कह दे, बहुत सहजता से अपनी बात को कन्वे कर दे। तो शायद इसीलिए आपके अंदर वो क्वालिटी है कि लोग अपने आप उस एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं और आपके सामने अपने जीवन के पन्ने खोल देते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एहसास है ये। इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम शुरू करेंगे हमारे गीतों के सफर को और सुनेंगे हमारा आज का पहला गीत, ये रातें नई पुरानी।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक दीपा जी। दीपा जी, हम आपकी हीलिंग मोडालिटीज पर अगर चलें, तो आपने बताया कि आप टैरो को और मेटाफर थेरेपी को अपनी साइकोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करती हैं। अब सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है, मेरे दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। मेटाफर थेरेपी होती क्या है, ये अगर आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते, इनफैक्ट मैं भी नहीं जानती कि मेटाफर थेरेपी होती क्या है, क्या मेटाफर से सिखाना, या व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग। और दूसरा इस क्वेश्चन का मेरा यही पार्ट है कि आप आपके हिसाब से साइंस नहीं है सिर्फ हीलिंग, इसमें और भी मॉडलिटीज इंक्लूड करके आप एक बहुत खूबसूरत एक नया मॉड्यूल बना सकते हैं और एक खूबसूरत मॉडलिटी बना सकते हैं और उसको कन्वे कर सकते हैं, जिसमें आर्ट भी आ सकती है और एसोटेरिक साइंसेस भी आ सकती हैं। तो ये किस तरह से आपने डेवलप किया और इस जर्नी के बारे में, इस मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा अबाउट मेटाफर, कई बार हम कहते हैं ना कि ये शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ये मेटाफर है ना। सिंबलिक लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, अगर इसको और सिंपल कहूँ तो मेटाफर थेरेपी में हम क्या करते हैं, आपसे जैसे मैंने एक ड्राइंग बनवाई, आपने उसमें क्रेयॉन कलर्स यूज किए, मैंने आपको कहा जो आपको लग रहा है ना ये कलर्स है, ये शीट है, आप इसमें कलर्स में सिंबल जो आपको बनाना है, जो ड्राइंग बनानी है बनाए, उन सिंबल से उन कलर्स जो आपने चूज किए, जैसे आपने जिस हिसाब से हाउस बनाया, जिस हिसाब से आपने गार्डन बनाया, या आपने कुछ भी कोई कैरेक्टर भी बनाया, उसको हम एनालाइज करते हैं, हम ड्राइंग को एनालाइज करते हैं आपके इमोशंस पढ़ने के लिए। फिर आपके जो इमोशंस आते हैं, जैसे किसी का फियर का इमोशन बहुत रिप्रेजेंट कर रहा है उसका ड्राइंग, या कंफ्यूजन का, या लाइफ में करियर में आगे कैसे मोल्ड करे, वो उसकी ड्राइंग प्रेजेंट कर रही है, तो हम उस हिसाब से उसके सेशंस लेते हैं क्रिएटिव विजुलाइजेशन के साथ। दिस इज नोन एज मेटाफर थेरेपी।
0: वाओ, तो जैसे अगर मे को आपने कैनवस दिया और कलर्स दिए और मैंने एक खूबसूरत सी सीनरी बनाई, क्योंकि वही एक ड्राइंग है जो मैं हमेशा करती हूँ जब भी मुझे कोई ड्राइंग करने के लिए कहता है। आई थिंक 80% और 70% ऑफ इंडियंस वही करते हैं, एक हार्ट, एक ट्री, एक बहती नदी, दो चिड़िया, तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा?
1: वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से शेप्स यूज किए, आपने कौन से कलर्स यूज किए।
0: ओह, सो कलर्स एंड शेप्स से भी हम इंटरप्रिट कर सकते हैं।
1: डेप्थ पे जाते हैं अपन, तो डेप्थ पे जाके हम देखते हैं।
0: हाउ इंटरेस्टिंग, चलिए आगे चलते हैं। जी, आप बता रहे थे।
1: और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि कैसे साइंस के साथ साथ इसमें आर्ट भी इंक्लूडेड है, वो इसीलिए क्योंकि देखिए, इनफैक्ट ये एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि आर्ट में भी एक स्ट्रक्चर्ड होता है जब हम डेप्थ में जाते हैं इमोशंस के। सो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि साइंस है, आर्ट है, ये वो मोडालिटी है जहां हम इमोशन के डेप्थ समझ के बहुत ही इजी वे में सामने वाले को काउंसिल कर रहे हैं, उसको प्रोफेशनली सपोर्ट दे रहे हैं। रीजन जैसे मेटाफोर में हमने उसके इमोशन समझे और उस अकॉर्डिंग उससे बात की, तो उसको बेटर लगेगा क्योंकि देयर इज समवन जो समझ भी रहा है और एक रास्ता भी दिखा रहा है। एक नहीं, हम तो बहुत सारे रास्ते दिखाते हैं और उसके अच्छे बुरे पार्ट्स भी बताते हैं और आपको फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम टू चूज आपको कौन से रास्ते में जाना है। फिर चाहे हम पास्ट लाइफ थेरेपी, इनर चाइल्ड वर्क, मेटाफोर थेरेपी, आर्ट वर्क, कुछ भी करें, तो दिस कॉम्बिनेशन। और टैरो, टैरो में भी सिंबल्स होते हैं, टैरो में भी जो सिंबल्स होते हैं वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं सामने वाले के थॉट्स, फीलिंग, इमोशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्प मिल जाती है उसको अच्छे से प्रोफेशनली ऑप्शंस बताने में, इसीलिए हम इंटीग्रेट करते हैं साइंसेस और आर्ट को।
0: वाओ, हाउ इंटरेस्टिंग। और अब आपने टैरो की बात करी दी है तो मेरा मैं चाहूंगी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, अभी नहीं, जब हम आखिरी सवाल की तरफ पहुंचेंगे, तो मैं चाहूंगी कि जो हमारी अभी कॉन्वर्जेशन हो रही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोतागण हैं जो अभी हमसे जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी कि हमारी इस कॉन्वर्जेशन और हमारे श्रोताओं के साथ जो हमारा कनेक्ट है, उसके लिए आप एक टैरो पिक करें और थोड़ा सा समझाएं, सो दैट हमारे श्रोताओं को थोड़ा फील मिले टैरो का। ये मैं हर टैरो कार्ड रीडर के साथ करवाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि श्रोतागण फील करें कि एक्चुअली टैरो होता क्या है, इतना कलरफुल, इतना एनर्जी से भरा, इतना ब्यूटीफुल एक आई थिंक अगेन वो सिर्फ एक एसोटेरिक साइंस नहीं है, वो एक आर्टवर्क भी है। तो मैं चाहूंगी कि लोग और इससे जुड़ें। नेक्स्ट सवाल मेरा मैम आपसे ये है कि इनर चाइल्ड हीलिंग जो अभी आपने शब्द यूज किया, अगेन मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इनर चाइल्ड हीलिंग होता क्या है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया है अर्बन इंडिया के लिए। तो ये क्या होता है और आपके एक्सपीरियंस में अगर आप अपने बच्चे को, अपने अंदर के बच्चे को इग्नोर करते हैं तो आप क्या क्या खो सकते हैं अपनी जर्नी में, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: देखिए ये दो टर्म है, एक होता है इनर चाइल्ड थेरेपी, एक होता है इनर चाइल्ड हीलिंग। एज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट मैं इनर चाइल्ड थेरेपी ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगी, क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग हीलर्स कर लेते हैं ज्यादा अच्छे से। अब इसमें मैं आपको डिफरेंस भी बताती हूँ, फिर ये होता क्या है वो भी समझ आ जाएगा। व्हेन इट कम्स टू हीलिंग वो चक्रास पे वर्क करते हैं, ऑरा क्लीन करते हैं। व्हेन दिस कम्स टू इनर चाइल्ड थेरेपी जो मैं करती हूँ या मेरे थेरेपिस्ट फ्रेंड्स करते हैं, उसमें क्या होता है हम अंतर मन के उस पार्ट को, उस पार्ट से बात कर रहे हैं जिसको सैडनेस है, जिसको कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन थोड़ा डिसअपॉइंट कर गई, गिल्ट में ले गई। जरूरी नहीं है कि वो बचपन का ही हो, बचपन का भी हो सकता है वो इवेंट, वो टीन एज का भी हो सकता है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वो नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेड था, या वो हुआ जो सामने वाले को बहुत अनकंफर्टेबल और बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस दे गया, तो उस ट्रॉमा को रिलीज करना, उस सिचुएशन को, उस एज टाइम को रिलीज करना थ्रू थेरेपी इज इनर चाइल्ड वर्क ऑफ प्रेजेंट लाइफ, क्योंकि वो प्रेजेंट लाइफ में हुआ है। उसको चाइल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक एडल्ट समझ जाता है कि ठीक है अगर ये सिचुएशन मेरे साथ हुई है, स्टिल आई एम विथ माई सेल्फ, आई नो माई वर्थ, आई एम सेफ, आई लव माई सेल्फ द वे आई एम। लेकिन एक बच्चे को चाहिए होता है ना सेफ स्पेस, तो इसीलिए हम इसे अनहील्ड इमोशन को एक टर्मिनोलॉजी दे देते हैं, टर्म दे देते हैं जिसमें हम उसे इनर चाइल्ड बोलते हैं। और हम थोड़ा सा आर्ट प्लस साइंस वर्क करते हैं ना, हमारा वर्क फिर भी साइंटिफिक ज्यादा होता है, तो हम इसे थेरेपी बोलते हैं। जहाँ ऑरा क्लीनिंग हीलिंग आता है वो उसी एज पे जाकर जब हीलिंग करते हैं तो उसे इनर चाइल्ड हीलिंग कहते हैं। लेकिन दोनों में सेम एक बात ये हो रही है कि वो इमोशन, वो सिचुएशन, जो उस टाइम जो थॉट्स बने थे, जो विचार बने थे, उसे हील किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी इंसान का कॉलेज में रिजल्ट खराब आया और उसमें ये होप थी उसको कि अब मेरा करियर इसी मार्क्स से होगा, तो उसके लिए वो भी ट्रॉमा है, क्योंकि उसके सारे होप, ड्रीम, डिजायर उस सिचुएशन से है। तो उस टाइम एक अनहील्ड इमोशन बन जाएगा, अनहील्ड थॉट बन जाएगा कि अब तो मैं कुछ कर पाऊंगा ही नहीं, या मैं क्या करूंगा। और अगर वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो देन वहां हम या हीलर्स की सपोर्ट से, प्रोफेशनल सपोर्ट से, उस बात से बाहर निकलने का प्रोसीजर जो यूज होता है उसको हम इनर चाइल्ड वर्क कहते हैं।
0: राइट राइट, तो दोनों में अंतर क्या है? जैसे हीलिंग में तो आपने बताया चक्रास पे आप वर्क करते हैं,
1: और आप में नहीं हीलर्स वर्क करते हैं, हम लोग थेरेपी पे करते हैं। थेरेपी के दो तीन तरीके हैं, जैसे हमने उसे बोला कि ये जो भी आपको फील हो रहा है चलो हम इसको पेपर पे एक्सप्रेस करते हैं कलर्स के थ्रू, तो हो गया इनर चाइल्ड वर्क विथ आर्ट थेरेपी। जैसे हम लोग हिप्नोसिस में ले जाके कि पहली बार कब आपको प्रेजेंट लाइफ में ऐसा फील हुआ, वो सैडनेस, उसको हम बोलेंगे इनर चाइल्ड थेरेपी। जब उसने लिख के एक्सप्रेस कराया वो भी इनर चाइल्ड थेरेपी हुई, या हमने उसे क्रिएटिव विजुलाइजेशन से उसके सामने उस एज को दिखाया, और एज ए एडल्ट आज वो अपने आप को जब ये बता रहा है यू आर सेफ, आई एम हियर एंड वी विल फिगर इट आउट, एंड एक विजडम मैसेज जनरेट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इनर चाइल्ड थेरेपी।
0: तो आप इसमें पास्ट लाइफ भी, रिग्रेशन भी करते हैं क्या, आपकी वो भी मोडालिटी है?
1: हाँ, पास्ट लाइफ इज अ डिफरेंट वर्क एंड इनर चाइल्ड इज डिफरेंट, इनर चाइल्ड प्रेजेंट लाइफ, हाँ, और हम पास्ट लाइफ वर्क भी करते हैं।
0: वाओ, सो मैम आपने 5000 क्लाइंट्स से भी ज्यादा क्लाइंट्स के साथ डील किया है, कोई ऐसी कहानी ट्रांसफॉर्मेशन की जो आपके जहन में अभी आ रही हो, जो आप कभी भूल ही नहीं पाते कि ऐसा हुआ था, अगर वो हमारे साथ साझा करना चाहें? और आपका जो खुद का वेंचर है धीसुकम काउंसलिंग सर्विसेज, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, धीसुकम,
1: हाँ जी,
0: ओके, इसका मतलब क्या है, और आपने इन सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा बताएं, और सबसे पहले मुझे किसी क्लाइंट एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि कोई ऐसा जो इज वेरी स्पेशल टू यू।
1: सो देयर इज नॉट ओनली वन क्लाइंट, my all clients are like they have actually have done a great work. मतलब कितना अपने आप को एक इम्पोर्टेंस देना है, कितना सेल्फ वर्थ इज इम्पोर्टेंट, वो मेरे हर क्लाइंट ने मुझे बताया कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो हमसे हो रहा है, हम वो कर पा रहे हैं. मैं अपने कई क्लाइंट्स का देखती हूँ, जब वो आए थे मेरे पास तब उनकी अचीवमेंट ओकेश होती है या ठीक ठाक होती है, वो इतना अमेजिंगली ग्रो करते हैं कि आज वो बहुत ही अपनी, मैं ये कहूंगी अपनी फील्ड में, अपनी फील्ड में वन ऑफ द टॉप मेरे ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स. दिस इज समथिंग आई हैव सीन कि उनको एक लेवल पे जा, मतलब वो बहुत ही बेस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर में. एंड दैट इज समथिंग आई रियली लाइक इट कि आपको अपना सोल पर्पस पता चल गया.
0: Right.
1: वो बेस्ट चीज होती है लाइफ की, चाहे आप रिलेशनशिप में हो नहीं हो, लेकिन सेल्फ के साथ जो रिलेशनशिप है जो वो सॉर्ट होता है ना, और अपना सोल पर्पस समझ आता है तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है. और ये मेरे सारे क्लाइंट्स के साथ हुई है कि जब वो आते हैं तब अपने करियर को लेके अगर कंफ्यूज हैं तो आज वो टॉप कर रहे हैं, उनका मैं नाम न्यूज़पेपर में देखती हूँ. रिसेंटली मैंने अपने एक क्लाइंट का देखा था, उसके बोर्ड में नाम मेंशन था.
0: तो
1: दैट वाज, मैं क्या कितनी स्टोरीज बताऊं, कम पड़ जाएंगी. एक नहीं, मेरे पास तो बहुत है
0: जी,
1: सक्सेस स्टोरीज बहुत है मेरे पास
0: जी. और अब थोड़ा सा धी सुखम के बारे में बताएं, इसका मतलब और इसका मकसद.
1: इसका मतलब तो ये होता है, धी होता है संस्कृत शब्द जिसका मतलब होता है मन, और सुखम होता है शांति. हमारा मन है ना बहुत सारे लॉजिक्स में जाता है, बहुत सारे थॉट्स में, एक होता है इनर क्रिटिक थॉट प्रोसेस, उसको शांत करना और एक प्रेजेंट हैप्पी लाइफ में अपने आप को ग्रो करना बहुत इम्पोर्टेंट है. होता है फंक्शनिंग माइंड, आपने ये वर्ड सुना फंक्शनिंग माइंड. हमारा विजन यही है दी सुखम के साथ कि हमने एक हैप्पी फंक्शनिंग माइंड के साथ चैनलाइज कर पाए अपने इमोशंस को और ग्रो कर पाए.
0: लाइक एक्टिव माइंड की वो जो प्रेजेंट में एक्टिव रहे वैसा.
1: हाँ हाँ, क्योंकि अगर वो फंक्शनिंग नहीं होगा, फंक्शनिंग का मतलब जैसे हम लोगों को पता है कि कब हम उठे हैं तो हमें ब्रश करना है, खाना खाना है, हम अपनी रूटीन लाइफ को भी नॉर्मल फंक्शन कर पा रहे हैं, जब बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कहीं से कहां पहुंच गए. फंक्शनिंग उस वर्ड को कहते हैं हम लोग, जहां पे नॉर्मली हमारी चीजें चल रही हैं. हाँ, एक्टिवली चल रही है, राइट, वी कैन से दैट. तो हमारा विजन है तो यही, माना आपको लगेगा ये तो बहुत ही इजी विजन है.
0: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत टफ है ये. और क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग स्लीप वॉकिंग कर रहे होते हैं, हम सब कुछ ऑटो मोड में इतना बह जाते हैं कि हम किसी भी काम को करते समय एक्टिवली उसके बारे में फील ही नहीं करते. जैसे व्हेन आई एम एक्चुअली ईटिंग फूड, मैं उस खाने को महसूस ही नहीं करती, क्योंकि मैं सारा टाइम ये सोचती रहती हूँ कि खाने के बाद मुझे क्या करना है या खाने से पहले मेरा कितना काम रह गया. सो मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग लाइक दैट, ज़ॉम्बीज की तरह. तो बहुत ही बहुत डिफिकल्ट है इस आज के डे एंड एज में. आज से शायद 10 साल पहले भी चीजें बहुत अलग थी, बट आज हम जिस टाइम एंड एज में पहुंच चुके हैं वहां बहुत अच्छा काम है, ये बहुत डिफिकल्ट काम है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं. सो कंग्रेचुलेशन टू यू एंड कंग्रेचुलेशन टू धी सुखम. आई होप इट रीचेज ग्रेट हाइट्स और बहुत बहुत सक्सेसफुल हो आपका वेंचर मैम.
1: थैंक यू सो मच
0: जी. तो इसी एहसास के साथ दोस्तों हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वॉन्ट टू ग्रो अप वंस अगेन.

को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक दीपा जी। दीपा जी, मेरा अगला सवाल है कि आप करियर काउंसलिंग भी करते हैं और बहुत एक्टिवली आपके क्लाइंट्स रहे हैं करियर काउंसलिंग से रिलेटेड। तो जब हम आज के यूथ की बात करते हैं, जिनको सब लोग बहुत इजीली डिस्कार्ड कर देते हैं और अंडर द रग कर देते हैं कि ये तो जनरेशन ही पूरी खराब है, तो ऐसे में जब आप ऐसे बच्चों से डील करते हैं, इस जनरेशन से डील करते हैं, जनरेशन अल्फा, जी, व्हाटएवर, तो आपके लिए सबसे की रिसोर्स

0: क्या होता है कि सक्सेस का एक्चुअल मीनिंग आप क्या कन्वे करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो आपसे करियर काउंसलिंग सीख करते हैं, और किस तरह से आप चीजों को अमलगमेट करके उनके लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जहां पे वो सिर्फ एक हैप्पी करियर चूज करें, एक सक्सेसफुल एंड हैप्पी करियर, नॉट जस्ट सक्सेस इन नंबर्स बट अ होलसम हैप्पीनेस इज वॉट दे शुड चूज. तो आप किस तरह से काउंसिल करते हैं, अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस में शेयर कर सकें?
1: हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो भी वर्क है ना वो क्लाइंट सेंटर्ड ज्यादा है, चाहे वो कोई सी भी जनरेशन हो, कोई भी एज हो, क्लाइंट जैसा वैसा कम्युनिकेशन. और अभी जो मेजरली चैलेंजेस और इश्यूज मैंने देखे हैं वो ये है कि हमें तो नहीं बोलूंगी, कुछ लोगों को अपने आप से कनेक्ट होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगने लग गया है कि बाहर से हमारे लिए क्या जजमेंट आएगा. इमेज कॉन्शियस जो थोड़ा उन्हें ऐसा लगने लग गया है कि बाहर से हमारे लिए क्या जजमेंट आएगा. इमेज कॉन्शियस जो थोड़ा ज्यादा इसीलिए भी हो गए हैं क्योंकि अब सब सोशल एप्स में ज्यादा हैं, और भी बहुत रीजंस हैं इसके. तो आप जैसे जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हो कि अभी जो चल रहा है उसमें कैसे हम काउंसिल करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि अगर नहीं चला तो हमें लोग कैसे जज करेंगे, अगर हम ये नहीं कर पाए तो लोग क्या बोलेंगे. और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अभी भी लोग ऐसा समझ रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे वो अभी भी कंसर्न है. क्योंकि अब तो
0: चीजें बहुत चेंज हो गई हैं.
1: हाँ, लेकिन अंदर से नहीं हुई है. ऐसा लगा था कि ठीक है, नाउ वी आर मोर मॉडर्न एंड मोर ओपन माइंडेड, बट स्टिल दैट छोटे छोटे बच्चों को भी इस बात का टेंशन ज्यादा है कि अगर हम नहीं कर पाए तो
0: क्या होगा.
1: एग्जैक्टली. वो एक चैलेंज डेफिनेटली है. और उसके उनके अपने रीजन है, इसमें यहाँ पे कुछ गलत सही की बात नहीं है.
0: करेक्ट
1: नहीं है, बिकॉज उनको उनके ऊपर ऑब्वियसली इतना प्रेशर है तभी उनके पास ये थॉट आया, नहीं तो आता ही नहीं.
0: करेक्ट.
1: तो कहीं ना कहीं उनपे ये प्रेशर है, फैमिली से है, बाहर से है, सबसे है, वो कमेंट नहीं कर सकते, बट प्रेशर है, ये जरूर प्रॉब्लम है. अब है तो, बट कहीं ना कहीं अगेन जो मेन बात है जो अभी बहुत ज्यादा है कि सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. जब हमें अपनी वर्थ पता होती है, हम अपने करियर में बेस्ट करते हैं और हम सक्सेसफुल होते हैं, तभी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो अपनी वर्थ समझ गए हैं, इसलिए उनके करियर में वो बेस्ट कर रहे हैं. नॉट इन नंबर्स बट हाँ, दे आर हैप्पी ऑल्सो. मतलब दे आर गुड इन नंबर्स ऑल्सो, बट दे आर हैप्पीली सक्सेसफुल
0: विथ बैलेंस, वर्क लाइफ
1: बैलेंस. या दे हैव. नाउ व्हेन इट कम्स टू करियर काउंसलिंग, we check their personality also, not only the aptitude. Inborn ability होती है aptitude, लेकिन उसके साथ personality भी उतना important है, interest भी उतना important है. तो इन तीनों का combination ही career counseling में सबसे important बात है हमारे लिए. जो इंसान सबसे बात करना चाहता है और design करता है, और जो इंसान किसी से बात नहीं करना चाहता और design करता है, दोनों designer है.
0: Right.
1: बट उनका प्रोफेशन जो सबसे बात करना चाह रहे हैं उनका अलग होगा, और जो किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहता वो कंप्यूटर डिजाइनिंग में जाएगा. सो इन दिस वे जो आप पूछ रहे हैं कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस में पर्सनालिटी भी इम्पोर्टेंट है, एप्टीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है, और उनका इंटरेस्ट भी, प्लस जो उनके फियर, जो भी उनके फियर हैं, उनके लिए हम उनको साथ में काउंसिल करते हैं. If you trust yourself and you know your worth, things will not be very difficult for you.
0: Right. Right.
1: Yeah.
0: Also, इसी के साथ अभी आपने एक word use किया, safe spaces. तो अगेन जिस टाइम में हम रह रहे हैं, जिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इसमें इंसान को इमोशनली सेफ फील करने के लिए आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है मैम?
1: ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने साथ सेफ फील करने के लिए अपना एनवायरमेंट सेफ बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं ये नहीं कह सकती कि आप खुद को जानते हो, खुद को समझते हो तो बस इतना काफी है. नहीं, एनवायरमेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. और अगर लगता है कि एनवायरमेंट बहुत अनहेल्दी है और फिर भी उधर ही रहना है,

0: तो अपनी बाउंड्रीज बनाना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक
1: डिफिकल्ट
0: इशू
1: है मैम बाउंड्रीज बनाना, क्योंकि बहुत सारे लोग नो नहीं कह पाते
0: बहुत
1: और मैं
0: ज्यादा
1: खुद इससे
0: डिफिकल्ट हो
1: स्ट्रगल
0: गया है।
1: करती हूँ।
0: हाँ हाँ हाँ
1: जी
0: हाँ बहुत डिफिकल्ट हो गया लोगों के लिए, आई एग्री विथ यू।
1: जी
0: लेकिन बाउंड्री बनाने का मतलब रूड होना होता ही नहीं है ना। अगर मैं कहूँ कि तनुषा मैं ना आज इतना ही बात कर पाऊंगी, इससे ज्यादा मेरे लिए आज कंफर्टेबल नहीं है, हम कल बात करेंगे, तो क्या ये आपके लिए रूड है?
1: नॉट रियली, बिकॉज आई अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट कि भाई आपका एक कट आउट है एंड यू रीच
0: एग्जैक्टली
1: दैट। यस
0: आज हम इस टॉपिक को इतना ही देखते हैं, थोड़ा कल बाद में देखेंगे। अभी के लिए अपन दोनों के लिए इतना ही कंफर्टेबल है, नहीं तो मैस हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। ये बाउंड्रीज है ना, और डिपेंड करता है सी। अब ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट हर जगह यूज नहीं हो सकता, कुछ बातों में यूज हो सकता है कुछ में नहीं। लेकिन अगर हम बाउंड्रीज को ढंग से समझें तो डेफिनेटली हम अपनी तरफ से तो अपना पार्ट कर सकते हैं, फिर हमें सेफ फील होगा। बट हाँ, इसके साथ एक और बात है, सेल्फ डाउट और फियर प्रेमाइसेस से चलने से सेफ फील नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सेल्फ डाउट और फियर प्रेमाइसेस को ज्यादा एंटरटेन कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें इजी प्रोसेस लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में वो टफ हो जाता है। राइट, तो हम चाहे छोटे छोटे स्टेप लें अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ और करियर में, बट जहां हमारा ट्रस्ट बैठता है, जहां हम अपने लिए ग्रो कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम सेफ भी रहेंगे।
1: बिल्कुल, तो बाउंड्री
0: जी,
1: सेट करना इज हेल्दी और नो कहना इज इम्पोर्टेंट। राइट,
0: दैट इज रिक्वायर्ड इन अ रिसेंट वे। या
1: वरना हम ओवरवेल्म हो जाएंगे, इतना कुछ है हमारे आसपास। अगर हम सबको हाँ कहते रहेंगे तो कहाँ तक गाड़ी पहुंचेगी, हम हमारे लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाएंगे और वो बहुत अनहेल्दी सिचुएशन होती है। तो जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, बहुत ही डीप और सटीक बातें आपसे हो रही हैं। इसी एहसास के साथ हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और सुनेंगे हमारा अगला गीत आज का, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से।

0: दीपा जी, अब हम वापस आ गए हैं मेरे फेवरेट सेगमेंट में, जहां हम टैरो के बारे में बात करेंगे। और आप मुझे बताएंगे कि टैरो आपके लिए, अगेन बिकॉज आप उसको अपनी हीलिंग मोडालिटीज, अपनी थेरेपी में यू नो यूज करते हैं, और उसको एक तरह से एक टूल की तरह यू नो अपनी थेरेपीज को फ्यूल करने के लिए एक यू नो एक कैटलिस्ट है आपके लिए टैरो। तो इसी सिचुएशन में, इसी यू नो एक थॉट प्रोसेस से, अगर आप हमें बताना चाहें कि टैरो आपके लिए क्या एक फ्यूचर बताने की मोडालिटी है, या प्रेजेंट को समझने की, या इट इज जस्ट अबाउट एनर्जीज ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, और या हम इससे फ्यूचर कुछ जान सकते हैं, आपके हिसाब से टैरो क्या है? एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन, अगर आप एक कार्ड पिक कर सके हमारी आज की रीडिंग के लिए।
1: ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो मेरे लिए लाइफ गाइडेंस है। लाइफ गाइडेंस प्रेजेंट को ज्यादा बताता है, और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग अगर हम चेंजेस करते हैं या प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ में बेटरमेंट लाते हैं, तो फ्यूचर थोड़ा बेटर भी होता है ना। कहते हैं ना, एक गलत स्टेप और सब उल्टा हो जाता है,
0: डोमिनो इफेक्ट हो जाता है। जी
1: एग्जैक्टली, तो मैं टैरो को वैसे यूज करती हूँ। कई बार हमें जो फ्यूचर दिखता है 3 महीने बाद, वो फ्यूचर वैसा नहीं रहता है। फ्यूचर तो प्रिडिक्ट करना समवेयर इज नॉट हेल्दी अकॉर्डिंग टू मी। मेरे लिए टैरो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा है, जहाँ पे फ्यूचर दिख तो रहा है, बट वो फ्यूचर में हम अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस या अपने आप को संभाल तो सकते हैं, ये मुझे पता है।
0: तो मैं साइकोलॉजिस्ट
1: हूँ, हाँ मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ,
0: right.
1: तो मैं प्रिडिक्शन में जा भी नहीं सकती।
0: राइट
1: जी,
0: ब्यूटिफुली आंसर्ड। एंड यस, कि अगर टैरो को हम राइटफुली यूज करें और प्रेजेंट एनर्जीज कोई सच में पहचान सके, तो शायद फ्री विल है, और फ्री विल को यूज करके आप फ्यूचर के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको खत्म तो नहीं कर सकते, बट उनको थोड़ा लेसन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जी, इसी एहसास के साथ अगर आप हमारे लिए कार्ड पिक करें और उसका पूरा मतलब थोड़ा डेप्थ में समझाएं।
1: ठीक है, तो जो भी अभी सुन रहे हैं हमें, उन सब के लिए, राइट
0: और हम दोनों की कॉन्वर्सेशन के लिए।
1: अच्छा, हम दोनों के लिए, तो फिर मैं दो कार्ड्स निकालूंगी।
0: Perfect.
1: हम दोनों ने जो बात की है उसके कार्ड क्या कह रहे हैं, फर्स्ट कार्ड हम ये निकालेंगे। तो हम दोनों ने जो बात की है, दैट इज बिगनिंग ऑफ न्यू इमोशन, उसमें एस ऑफ कप आ रहा है, जिसमें ब्लेसिंग भी है, नॉलेज भी है, एंड इमोशंस के बारे में बात की, इसीलिए भी एस ऑफ कप आ रहा है। जिसमें जो सिंबल है वो एक लव एनर्जी को भी एसोसिएट कर रहा है। तो जो भी हमने बात की है वो इमोशनल हीलिंग भी कर रहा है कहीं ना कहीं किसी की। और
0: आई एम श्योर मैं हील हो रही हूँ बहुत बहुत लेवल्स पे। जी जी बिल्कुल,
1: एंड एक पीस भी दे रहा है। और रही बात आपके ऑडियंस के लिए, जो आज हमें सुन रहे हैं और जो जब भी इसको सुनेंगे, उनके लिए जो कार्ड है कि आप अगर कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें उस चीज को बैलेंस के साथ स्टार्ट कीजिए, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जरूर स्टार्ट कीजिए, अगर जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके साथ ये भी है कि जहाँ जहाँ रेस्ट लेने की जरूरत है वहाँ रेस्ट लीजिए। मतलब जब हम बैलेंस होके काम करते हैं, तो हमें ये नहीं करना कि हम अपने आप को भूल जाए, होप है कि वो काम अच्छे से होगा, लेकिन हमें ये नहीं करना कि हम अपने आप को भूल जाए, होप है कि वो काम अच्छे से होगा, लेकिन कहीं कहीं उसमें रेस्ट लेने की जरूरत है। मैंने इसमें 5 कार्ड्स निकाले हैं। फर्स्ट इज एस ऑफ वांड्स, बिगनिंग ऑफ समथिंग वेयर देयर्स लॉट ऑफ पैशन, बहुत पैशन है। दूसरा द स्टार, जहाँ पे हीलिंग भी हो रही है, होप भी है, बैलेंसिंग भी हो रही है, ब्लेसिंग भी है। तीसरा मैंने तभी बोला रेस्ट के लिए क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो जहाँ रेस्ट लेने की जरूरत है वहाँ रेस्ट लीजिए। गाइडेंस में आ रहा है हीरोफेंट, हीरोफेंट होता है हर चीज प्रॉपर तरीके से करने के लिए। एम्परर, साथ में स्ट्रक्चर तरीके से, प्रॉपर और स्ट्रक्चर तरीके से अपने वर्क को आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट जहाँ जहाँ सेल्फ टाइम, मतलब होता है ना खुद के सेल्फ रेस्ट का टाइम चाहिए, वहाँ आप जरूर दीजिए, जो भी आज हमें सुन रहे हैं उनके लिए।
0: ब्यूटिफुल,

0: ब्यूटीफुल, इतना होलसम मैसेज है ये, हर तरह से एक एक बैलेंस क्रिएट करता हुआ और एक स्ट्रक्चर के साथ, एक फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ और नई बिगनिंग्स के साथ जुड़ा हुआ ये जवाब। बहुत ही खूबसूरत सफर रहा मैम आपके साथ। जाते जाते अगर आप हमारे लिसनर्स के लिए जो कंफ्यूज्ड हैं, इमोशनली ओवरवेल्म्ड हैं, एक थेरेपिस्ट की तरह, एक हीलर की तरह आपके लिए क्या सिंपल सा थॉट या मंत्रा है जो प्रैक्टिकल है और वो अपनी लाइफ में अपना के उसको थोड़ा सा लाइट फील कर सकते हैं अपनी लाइफ में?
1: जो प्रैक्टिकल है, सबसे प्रैक्टिकल बात यही है कि जब भी ये आपको ये किसी को भी ये लगता है कि वो अपने आप को खो रहा है इस प्रोसेस में, वो अपने आप को प्रायोरिटी दे। क्योंकि प्रॉब्लम जो चल रही है आजकल वो ये चल रही है कि हम किसी और को इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। और ये इम्पॉसिबल नहीं है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दो। कोई आपको मना नहीं कर रहा कि आप सामने वाले को प्रायोरिटी मत दो। अगर आपका करियर है, आपका रिलेशन है, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, नंबर वन में आता है, तो आप खुद को भी तो नंबर वन में ला सकते हो ना, साथ चल सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम साथ नहीं चलते, या तो हम पीछे हैं या तो हम आगे हैं, हम बैलेंस नहीं
0: है। राइट,
1: दैट इज रियली इम्पोर्टेंट कि आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितना सामने वाला है, चाहे वो आपका करियर है या रिलेशन है। और आप भी उतना ही हैप्पीनेस डिजर्व करते हो जितना आप सामने वाले को दे रहे हो। और सारा बैगेज ना खुद को उठाना है, ना सारा बैगेज सामने वाले को देना है। जहां आप बैलेंस करके चल रहे हो, खुद को भी प्रायोरिटी दे रहे हो, उससे भी कई चीजें सॉर्ट हो जाएंगी।

0: और इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी सही, इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन इतनी सरलता से साझा करने के लिए। थैंक यू मैम।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो दोस्तों, दीपा जी की बातों में एक सुकून है, एक क्लैरिटी है जो दिल को सीधा छू जाती है। आज का एपिसोड हमें याद दिलाता है कि हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सफर है जहां हर रोज हम खुद को थोड़ा सा और समझते हैं। मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। आपसे इजाजत लेती हूं, मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नए सफर के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जिंदगी के रंगों को थोड़ा सा और महसूस कीजिए और गीतों के संग जीते रहिए। नमस्कार
2: दोस्तों। जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है। यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें।
5: आइए दोस्तों, मिलवाते हैं आपको जोसेफीन

बेकर से, जो एक प्रसिद्ध कलाकार रहीं और समाज सेविका थीं। बर्बरता के अनगिनत जंगलों से होकर दुनिया यहां तक पहुंची है, जो अमेरिका आज दुनिया भर में मानवाधिकार के कागज बांटता फिरता है, वहां कभी श्वेतों ने अश्वेतों का जीना मुहाल कर रखा था। अमेरिका के कुछ इलाके तो इतने बदनाम थे कि दंगा छिड़ते ही अश्वेतों को अपने घर डेरे से भागकर कहीं छिपना पड़ जाता था। एक ऐसा ही इलाका था पूर्वी सेंट लुई, जहां एक अश्वेत लड़की घरेलू नौकरानी का काम करती थी। ना पिता का कोई ठिकाना था और ना मां को ही बेटी की कोई चिंता थी। महज 8 साल की उम्र में ही अपने लिए रोटी कमाने की जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई। काम लेने वाले 24 घंटे काम लेते थे और छोटी सी छोटी गलतियों पर भी बहुत पीटते थे। वो अपने लिए रोटी कमाते कमाते 11 साल की हो गई। अक्सर दोनों हाथ काम में लगे रहते, कभी कपड़े धोते हुए तो कभी कपड़े सहेजते हुए, और नजरें स्कूल की खुली किताब की ओर चली जाती थी। पढ़ने का खूब मन करता था। वो सोचती थी, काश उसके भी माता पिता होते तो वो स्कूल जा पाती, अच्छी जिंदगी जीती। उस दिन हाथ में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था उनके। उसे मालकिन ने जला दिया था क्योंकि कपड़े धोने में कुछ ज्यादा साबुन लग गया था। अब एक तरफ तो पूरे घर का काम था, दूसरी ओर स्कूल की पढ़ाई, और तीसरी ओर हाथ का दर्द और जलन। तभी फिर एक बार पूर्वी सेंट लुई में हल्ला मच गया। श्वेत शायद फिर बर्बरता पर उतर आए थे। अश्वेत जान बचाने के लिए बदहवास भागे जा रहे थे। उस लड़की ने काम रोककर खिड़की से देखा। नीग्रो लोगों के घर फूंक दिए गए थे। आसमान धुएं से भरने लगा था। जान बचाने के लिए सब लोग भाग रहे थे। श्वेत मालिकों के घरों से भी अश्वेतों को खोज खोज कर निकाला जा रहा था और मारा जा रहा था। हैवानियत का गजब का मंजर था। वो लड़की भी भाग खड़ी हुई। कोई तो ऐसी जगह होगी जहां वो मुंह छिपा सकेगी। दूसरे बच्चे भी जान बचाए सड़कों पर चीखते रोते भाग रहे थे। वो ये सोचती हुई भाग रही थी कि हम बच्चों ने भला क्या बिगाड़ा है, बच्चों को तो बख्श दो। काश दुनिया में ऐसी नफरत ना होती तो बच्चों से सभी लोग प्यार करते, बच्चों से प्यार करते तो किसी भी तरह की हिंसा से बच जाते। खैर दंगा तो थम गया, पर दिल के अंदर हमेशा के लिए दर्द रह गया। वो बहुत बुरा दिन था और बहुत काली रात।

सभी को नजर आना भी बहुत जरूरी है। फिर क्या था, मंच पर वो कुछ ऐसा करने लगी कि सबका ध्यान खींचने लगा। लोग उन्हें जोसेफीन बेकर नाम से जानने लगे। फिर एक दिन कलाओं की नगरी पेरिस से बुलावा आया। उदार पेरिस ने नए अश्वेत कलाकार को हाथों हाथ लिया। वो बहुत तेज नाचती थी, मानो अगली बार कोई नाचने ना देगा। फिर उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, सड़क से उठकर महलों में पहुंच गईं, दुनिया के पहले अश्वेत सितारों में गिनी जाने लगीं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजियों ने जो आतंक मचाया, तब वो अन्याय के खिलाफ जासूस बन गईं। युद्ध के बाद उनका सम्मान बहुत बढ़ गया, बड़े बड़े लोग उनके नृत्य गायन के मुरीद होने लगे। लेकिन बर्बर अमेरिका उनकी आंखों से कभी ओझल नहीं हुआ। एक मौका आया जब 1963 में उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पक्ष में वॉशिंगटन की प्रसिद्ध सभा में भाषण दिया। अश्वेतों पर जुल्म के खिलाफ बेकर उस सभा में एकमात्र महिला वक्ता थी। उन्होंने कहा, मैं राजाओं रानियों के महलों और राष्ट्रपतियों के घरों में गई हूं, लेकिन अमेरिका के किसी होटल में जाकर एक कप कॉफी नहीं पी सकती। ये सोचकर मैं पागल हो जाती हूं, गुस्सा आता है, तो आप जानते हैं मैं अपना बड़ा मुंह खोल देती हूं। और फिर देखिए, जब जोसेफीन अपना मुंह खोलती है तो पूरी दुनिया सुनती है। वो जर्मनी के चंद रत्नों और राष्ट्र नायकों में शुमार रखती हैं। उन्हें बच्चों से इतना प्यार था कि अलग अलग धर्म और अलग अलग नस्ल के 12 बच्चों को उन्होंने गोद ले रखा था। एक ऐसा परिवार बना रखा था जिसे वो द रेनबो ट्राइब कहती थी। दुनिया 10 दिसंबर को जब भी मानवाधिकार दिवस मनाती है, जोसेफीन बेकर को जरूर याद किया जाता है।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? जिस मुल्क का शरीर और समाज दोनों बीमार हो चुके हों, आखिर वो देश कैसे तरक्की करेगा? कोई गम के साए में डूबा हुआ था और कोई ये देखकर खुश हो रहा था कि उसकी आंखों के आगे से जनाजा निकल रहा है। मैं हैरान हूं इस मुल्क की सोच से, क्योंकि जिस मुल्क में किसी के घर में छाया मातम किसी और के लिए शगुन बन जाए, वो मुल्क आने वाले 70 सालों में तो क्या 700 सालों में भी तरक्की नहीं कर सकता? इस मुल्क में कहीं करोड़ों रुपए सड़ रहे हैं तो कहीं करोड़ों भूख से मर रहे हैं। इस मुल्क में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन तो चलाया जाता है, लेकिन फिर भी दिन रात बलात्कार का कोहराम है। जिस मुल्क का शरीर और समाज दोनों बीमार हो चुके हों, वो आखिर कैसे तरक्की करेगा? मैंने देखा है इस मुल्क में आस्था पर अंधविश्वास को हावी होते हुए। मैं हैरान हो जाता हूं जब खुद को सभ्य समाज का पढ़ा लिखा वर्ग बताने वालों की आंखों में अंधविश्वास की चादर चढ़ी हुई पाता हूं। जब तक इस मुल्क में अंधविश्वास के नाम पर खून का खेल यूं ही चलता रहेगा, जब तक आस्था की असमत से अंधविश्वास का दाग नहीं हटेगा, यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मैंने देखा है इस देश के बच्चों को जो अपना भविष्य खरीदने के लिए मजबूर हैं, जो डोनेशन के नाम पर काला धन बांट पाता है, वही यहां बेहतर शिक्षा का हकदार बन पाता है। जो मुल्क खुद के भविष्य पर ताले लगाता हो, आखिर वो मुल्क कभी कैसे तरक्की कर सकेगा? मैंने देखा है यहां मजहब के नाम पर खून की नदियां बहते हुए, भाई को भाई की जान लेते हुए। मैंने देखा है लोगों को

भगवे और हरे के लिए लड़ते हुए। जब तक ये मुल्क भगवा और हरा छोड़ तिरंगा नहीं उठाएगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। जिस दिन ये मुल्क केवल एक नेता नहीं बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की तरक्की का एहसास कर लेगा, जिस दिन इस मुल्क में सभी को शिक्षा का समान अधिकार मिल जाएगा, जब इस मुल्क के लोगों को दूसरों के दुख में दुख का एहसास हो पाएगा, जब इस मुल्क का प्रत्येक वासी अपनी अपनी जिम्मेदारी की चादर ओढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा और सच्चे नागरिक का कर्तव्य निभाएगा, उस दिन सही मायनों में ये मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ेगा।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आइए दोस्तों, सुनाता हूं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ रचनाएं। बाधाएं हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मति हर्षित कैसा श्रम श्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहूति में, जलना होगा गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।

जिंदगी सिर्फ एक एहसास है, जी से जियो तो मीठा एहसास है, तू खट्टा मीठा एहसास है, बरस दर बरस जी मैंने जिंदगी, यहां तक चल के आए हैं हम, ये जिंदगी तेरा शुक्रिया, आगे भी परवान चढ़ाए रखना, ये जिंदगी जी से जी है मैंने तुझे, ओ जिंदगी यकीनन जी से जियो तो मीठा एहसास है जिंदगी।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? जब शनै शनै उम्र बढ़ जाएगी, इत्र की जगह आयोडेक्स की खुशबू आएगी। कहता हूं अब भी मिल लिया करो, ये घड़ियां पलट कर नहीं आएंगी। अभी तो आंखों में नूर है बाकी, अभी तो आंखों में नूर है बाकी, फिर खूबसूरती नजर नहीं आएगी। अभी तो यार हैं चलते अपने साथ, अभी तो यार हैं चलते अपने साथ, फिर केवल छड़ी ही नजर आएगी। सुन लो आवाज दोस्तों की, सुन लो आवाज दोस्तों की, फिर कानों में मशीन नजर आएगी। हंस लो खिलखिलाकर आज, हंस लो खिलखिलाकर आज, फिर नकली बत्ती सी ही झलक दिखलाएगी। जब दोस्त बुलाए चले आओ, फिर डॉक्टरों से फुर्सत ना मिल पाएगी। समझ जाओ यारों, समझ जाओ, ये मस्त उम्र फिर नहीं आने वाली।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: गप्पू ने पूछा, अरे यार तुम गटर में कैसे गिर गए? चप्पू ने कहा, अरे यार क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, गटर का ढक्कन खुला हुआ था, मुझे लगा सोशल डिस्टेंसिंग का गोला है।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए।

0: तो दोस्तों प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।
1: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है। यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

सुने सरसाए, सांप सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा सा संग समाए, समय सबक समझाए, खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा है। फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए, फिरते फिरते फेर

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानो जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: सुना है लोग उसे आंख भर कर देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर कर देखते हैं, सो उस शहर में कुछ दिन ठहर कर देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर और शायरी से शगफ, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर को देखते हैं। सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात भर उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामाए फलक से उतर कर देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर कर देखते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, 90.8

FM की तरंगों पर, SN रेडियोज और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त हाथी रॉय, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ आपका अपना महफिलों की रौनक बढ़ाने वाला प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, जब दुनिया की बंदिशें और रोज़मर्रा की मसरूफियात हमारे जहन को थका देती हैं, तब दिल किसी ऐसे साए की जस्तजू करता है जहां वो अपने बिखरे ख्यालात समेट सके। ऐसे ही लम्हों में शायरी और मौसीकी की हमारी तन्हाई के साथ जैसे चोली दामन का साथ बन जाता है। कमाल की बात तो ये है दोस्तों, जो बातें हम अपनों से भी कहने से कतराते हैं, कोई ज़हीन शायर उन्हें सिर्फ़ एक मिसरे में पिरोकर हमारी रूह को एक मखमली तसल्ली अता कर देता है। आज की ये नफीस शाम भी कुछ इसी दिलकश मिजाज को अपने आगोश में समेटे हुए आगे बढ़ेगी, तो अपनी मसरूफियात को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दीजिए, जहन को बिल्कुल सुकून दे दीजिए और कुछ देर इन सुरों को अपने नाम कर लीजिए। आइए बिना और देर के आगाज़ करते हैं सुरों के इस नए सिलसिले का और रुख करते हैं हमारी आज की पहली पेशकश की ओर। दोस्तों, आज जब मैं YouTube पर गज़लों को ढूंढ

साथ होती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या और किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, माय लव फिल्म की गजल या नगमा जो हमारे मुकेश साहब ने गाया था 1970 में, जिसके मौसिकार थे दान सिंह और इसे लिखा था आनंद बख्शी जी ने। इतनी पुरासर कैफियत, कितनी बेलौस मोहब्बत, कितनी तिश्नगी, क्या क्या नहीं इस इजहारे मोहब्बत बयां में। सच कोई कमी नहीं, और जिस अंदाज से मुकेश साहब ने इसे गाया है उसकी तो कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये किसी महफिल में कोई शख्स गा रहा था और मुझे उसकी गायकी पसंद आई। ये गज़ल हम सब के माजी की कोई याद की तर्जुमानी ज़रूर करती होगी। मुझे अच्छे से याद है, मैं इसे अक्सर गाया करती थी। सो आइए आपके साथ मिलकर उस नामालूम शख्स की गायकी का लुत्फ उठाते हैं। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। आपकी नज़र।

पायदान पर मैं आपके लिए एक बेशकीमती जवाहर चुनकर लाई हूँ। आपके मूड को 360 डिग्री मोड़ कर एक ऐसी रूहानियत की ओर ले जा रही हूँ जहाँ तबले की थाप का अंदाज बदल जाता है, दिल बस झूमने लगता है। परेशान दिल भी उठकर अपना गम भूलकर इसकी थाप पर नाचने लगता है। जी हाँ, मैंने हमारी बज़्म में दावत एक बार फिर से दी है पद्मश्री से सम्मानित हंसराज हंस जी को। इस मस्त बेबाक नगमे को उन्होंने जिस अंदाज से पेश किया वो काबिले तारीफ है। इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी जी ने और संगीत से सजाया था उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने और गाया बकौल गायक हंसराज हंस जी ने। कहते हैं इश्क है पानी का एक कतरा, कतरे में डूबा। इश्क है पानी का एक कतरा, कतरे में डूबा। एक हाथ में अपना दिल रख ले, एक हाथ में रख ले जान अपनी। फिर फरमाते हैं खाली दिल नहीं जान भी ये मंगदा, यानी जान भी मांगता है। इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क की गली से कोई कोई ही निकलता है। फिर कहते हैं जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है। प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। लाख बचाए दामन लोभ लग जाता है। इश्क इश्क है मैदाने ओ जंग दा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। आप जब सुनेंगे तो यकीनन मज़ा आएगा क्योंकि पंजाबी एक्सेंट होने के बावजूद साफ साफ समझ में आ जाता है कि नाम है दीवाना, दूजा नाम कोई नहीं, प्यार के जैसा बदनाम नहीं कोई, इश्क से बड़ा इल्ज़ाम नहीं कोई। इश्क आशकानू सूली उत्ते टंगदा, इश्क आशकानू सूली उत्ते टंगदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। तो सब कुछ भूल भाल कर बस हंसराज हंस की मस्त गायकी का लुत्फ उठाएं। खाली दिल नहीं जानवी है मंगदा।

दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि दिल बुझ सा जाता है या फिर किसी की चाहत में बिल्कुल ही दीवानावर हो जाता है। तब किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लगता। मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने इस कलाम में दिल के उसी मुकम्मल बेपनाह दीवानगी को साफ साफ लफ्जों में बयां किया है। वो कहते हैं कि भले ही मुझे लफ्जों में मोहब्बत की गहराई नापना ना आता हो, मगर सच यही है कि तुम्हारे साथ के बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं। बुनियादी तौर पर राग भैरवी की शास्त्रीय बंदिशों में लिपटे इस तारीखी दर्द को आज हम गुजरे दौर की एक ऐसी शख्सियत के अंदाज में पेश करने जा रहे हैं कि जिनकी आवाज़ को छूना हर किसी के बस की बात नहीं। ये मुकम्मल पेशकश है सुरों की मलिका बेगम परवीन सुल्ताना जी की। पटियाला घराने की इस अजीम फनकार ने जब आर डी बर्मन साहब की इस नाजुक धुन को अपने बुलंद और मखमली लहजे से नवाजा, तो ये कलाम सिर्फ नगमा नहीं रहा बल्कि रूह की पुकार बन गया। मजरूह साहब की कलम से निकले इस गज़ल का ये हसीन मिसरा ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। जहाँ सदियों पुरानी दीवानगी छलकती है, वो कहते हैं, मैं तो सदा की तुमरी दीवानी, भूल गए सैया प्रीत पुरानी, कदर न जानी हाय कदर न जानी। और बिरहा का दर्द तान और आलापों के जरिए अपनी आखिरी हदों को छूता है तो बेगम साहिबा की बुलंद आवाज में ये सीधे कलेजे के पार होता है। फिर कहती हैं, कोई जो डाले तुम पे नयनवा, कोई जो डाले तुम पे नयनवा, देखा न जाए मुँह से सजनवा, जले मोरा मनवा। तो आइए अल्फाज से एहसास तक के इस बेहद नफीस और आलिशान मकाम पर पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं बेगम परवीन सुल्ताना की आवाज़ में इस नगमे को। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना आपकी नज़र।

दोस्तों, ज़िंदगी के इम्तहानों की जिस आजमाइश की का ज़िक्र आज हमारे सफ़र का मरकज़ है, उसकी एक बहुत ही हसीन शक्ल हमें इस सूफियाना कलाम में देखने को मिलती है। ये शाहकार मुकम्मल तौर पर उस रूहानी कश्मकश को बयां करता है जहां आशिक अपने महबूब के सामने अपनी बेपनाह चाहत का इकरार करता है, मगर हाय रे किस्मत, सामने वाले को उसकी इस पाक मोहब्बत पर यकीन ही नहीं, वो सिर्फ उसे एक बहाना समझता है। ये गज़ल बुनियादी तौर पर गुलाम अली जी की आवाज़ में बहुत मकबूल हुई थी, लेकिन इस पंजाबी सूफियाना दर्द को हम एकदम नए लहजे में पेश करने जा रहे हैं। आज इस नफीस कलाम की अपनी बहुत उम्दा आवाज़ में रूहानी तासीर दी है पंजाब की मिट्टी से जुड़े एक बेहद ज़हीन गुलकार दविंदर पाल सिंह ने। दविंदर साहब की बुलंद आवाज़ में एक रूहानी टीस है जो गज़ल के बोलों के साथ मिलकर एक अलग सा सुकून पैदा करती है। दविंदर पाल की ठहरी हुई तान में ये मिसरा सीधे ठक करके दिल को धड़काता है। वो फरमाते हैं, ये मैं झूठ बोला ते रब जाने, ये मैं सच बोला ते इतबार तेनू। यानी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा परवरदिगार मेरा हिसाब करे, और अगर मैं सच कह रहा हूँ तो फिर तुम्हें मेरी इस सच्ची इबादत पर यकीन क्यों नहीं आता। तो आइए सुनते हैं इस खास पेशकश को, अल्फाज से एहसास तक के अछूते मरहले को छू कर निकलते हुए। मुलायजा फरमाइए दविंदर पाल सिंह की खूबसूरत आवाज़ में ये सदाबहार कलाम, मेरे शौक दा नहीं इतबार तेनों, आपकी नज़र।

क्या क्या ना जफाएं दिल पे सही, क्या क्या ना जफाएं दिल पे सही, पर तुमसे कोई शिकवा ना किया। इस जुर्म को भी शामिल कर लो मेरे मासूम गुनाहों में। जब चांदनी रातों में खुद हमसे किया इकरारे वफा, जब चांदनी रातों में खुद हमसे किया इकरारे वफा, फिर आज है क्यों हम बेगाने, फिर आज है क्यों हम बेगाने तेरी बेरहम बेरहम निगाहों में। दोस्तों, कतील शफाई के बोल हैं और इसको सुरों से सजाने का काम सौंपा गया सरहद पार के मशहूर गुलूकार मास्टर इनायत हुसैन जी को, और इसकी गुलूकार थी इकबाल बानो जी। ये गज़ल जब रिलीज़ हुई 60 की दहाई में तो एक रेज बन गई दोनों ही मुल्कों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। इकबाल बानो जी का एक बेहद ऑर्थोडॉक्स परिवार में जन्म हुआ था और दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। ये गज़ल गाने के बाद गायकी की मिसाल कायम कर दी उन्होंने। उस वक्त में जब पाकिस्तान में गज़ल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ख़ास लोग नहीं थे, इसके तो बहुत बाद फरीदा खानम, मेहती हसन और ग़ुलाम अली जी ने गज़ल गायकी में अपने पाँव रखे थे। तब तक इकबाल बानो पाकिस्तान फिल्म्स में इनायत हुसैन, जो कि एक बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर थे, की मौसीकी में बहुत मशहूर गाने गा चुकी थी और गज़लें भी गा चुकी थी। जैसा मैंने आपको बताया, इनका जन्म 1935 में दिल्ली में हुआ था। वो शुरुआती दिनों में क्लासिकल म्यूज़िक सीखने लग गई थी। जब वो गाती थी तो उनके जानने वालों ने उनके परिवार वालों को समझाया कि आपकी बेटी के गले में बहुत तरन्नम है, बहुत सुर है, तो इनको आप गाने का मौका दीजिए। तो उनके परिवार वाले मान गए, फिर उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखने का फ़ैसला किया और सीखने भी लग गई। तो अपने लंबे म्यूज़िक के करियर में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गज़लें और फिल्मों में नगमे गाए। साल 1954 में जब वो महज 19 साल की थी, उन्होंने अपनी पहली गज़ल रिकॉर्ड की एक मशहूर फिल्म गुमनाम के लिए। इस मशहूर गज़ल में उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करके गाया है और लफ्ज़ों की बानगी से इसको बहुत खूबसूरत बना दिया है। आइए सुनते हैं ये बहुत ही मशहूर गज़ल। उल्फत की नई मंजिल को चला, उल्फत की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में।

या फिर मैं तो अब अहदे वफा और से कर लूँ, मैं तो अब अहदे वफा और से कर लूँ, लेकिन कोई धीरे से मेरा हाथ दबा देता है। आज भी कोई मुझे दादे वफा देता है। दोस्तों, जान निसार अख्तर जी ने इस कलाम में मोहब्बत की उस अमर तासीर को लिखा है। वो कहते हैं कि भले ही वो हम सफ़र आज मेरे पास नहीं है, मगर उसके पाक जज्बातों का तसव्वुर आज भी मेरे जहन में वैसे ही ताज़ा है जैसे कल की बात हो। आज भी जब मैं गुज़रे कल को याद करता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कोई मेरी वफा की गवाही दे रहा हो। और इस रूहानी एहसास को सुरों का पैरहन दिया हमारे अपने हरदिल अज़ीज़ मुकेश साहब ने। मुकेश साहब की गायकी की ये खासियत रही है कि उनकी आवाज़ में छुपे सोज और सच्चाई का कोई मुकाबला ही नहीं। विपिन मेहरा साहब की इस नाजुक धुन पर जब मुकेश साहब की आवाज़ गूंजती है तो जहन की तनी हुई नसें शांत हो जाती हैं। तो अल्फाज से एहसास के इस बेहद नसीब नफीस मकाम पर पूरी तवज्जो के साथ समायत फरमाते हैं मुकेश साहब की इस नायाब और सुरीली नॉन फिल्मी गज़ल को। आज भी उनकी मोहब्बत का तसव्वुर है कोई, आज भी कोई मुझे दादे वफा देता है। आपकी नज़र।

दोस्तों, इतने लाजवाब सुरीले नगमों और गज़लों में डूबते उतरते पता ही नहीं चला कब घड़ी की सुइयां चुपके से इशारा करने लगी कि अब प्रोग्राम के अहतमाम का वक्त हो चुका है। उम्मीद है आज की नगमें गज़लें आपको पसंद आई होंगी। हालांकि मेरी यही कोशिश रहती है कि आप तक चुनिंदा ख़ास गज़लें लेकर आऊं। दोस्तों, गज़लों को चुनते वक्त मैं शबरी का रोल निभाती हूँ। खाकर नहीं, एक एक गज़ल को सुन सुन कर चुन चुन कर आपके लिए लाती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये आपके दिल को भी भाएंगी। तो इन लफ्ज़ों से आप तक मेरे एहसास भी पहुँच गए होंगे। अब मुझे यानी आपकी दोस्त आरती रॉय को दीजिए इजाज़त और आप सुनते रहें अपना प्यारा SN रेडियो जो रेडियो तांत्या भील 90.8 FM पर, इस उम्मीद के साथ कि एक और शाम कुछ अलग लफ्ज़ों के एहसास पिरो कर लाऊंगी मैं आपके लिए। तब तक खुश रहिएगा, गाते मुस्कुराते रहिएगा, दुआओं में याद जरूर रखिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

0: दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, एक बार पुनः खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM की यही कोशिश रही है कि वह आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजनाओं को, महत्वपूर्ण तकनीकों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारे किसान की आजीविका सशक्त बने, साथ ही हमारे किसान को आ रही खेती में जो समस्याएं हैं उससे हमारा किसान कैसे निजात पा सके। साथ ही हम कोशिश करते हैं कि जो प्राकृतिक खेती है, हमारी जैविक खेती है, उसमें हमारा किसान जोरों शोरों से सहभागी बने, जिससे कि हमारे न केवल हमारे किसान के परिवार की बल्कि हमारे पूरे देश की जो रासायनिक खातों से जो हम उपजा रहे हैं उससे हमें मुक्ति मिल सके। तो किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं GI टैगिंग को लेकर। हाँ किसान साथियों, क्या है ये GI टैगिंग? आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे GI टैगिंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को, कैसे GI टैगिंग हमें मिलता है और उसमें क्या क्या किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए GI टैगिंग दी जाती है। किसान साथियों, GI टैगिंग से हमें बहुत ही फायदा मिलता है, तो इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सुनेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें क्या मुनाफा मिल सकता है। चर्चा को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं ये एक रिपोर्ट।
5: टैग या पहचान उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और उनमें वहाँ की स्थानीय खूबियाँ मौजूद होती हैं। दरअसल GI टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं। भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है। GI टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्थान ना करे। देश में इसके लिए बकायदा कानून है। ये कानून आश्वासन धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है। यानी अगर कोई मलिहाबाद के नाम से बेचा जा रहा आम अगर मलिहाबादी नहीं है तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं। और इस कानून के अंतर्गत किसी उत्पाद का पंजीकरण GI टैग यानी भौगोलिक उपदर्शन या संकेत कहलाता है। खेती के मामले में इसका फायदा किसानों को मिलता है। उपभोक्ता मशहूर जगह की असली कृषि उपज को ज्यादा भाव देने में गुरेज भी नहीं करते। क्योंकि वहाँ की माटी का स्वाद, वहाँ की जलवायु की विशेषता और स्वाद की विशिष्टता इसमें समाहित होती है। इतना ही नहीं, ये टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। जीआई टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को मंजूरी दी। ये अधिनियम 2003 से अमल में आया है। भारत में साल 2004-05 में दार्जिलिंग चाय से शुरू हुआ जीआई टैग का सफर करीब 370 उत्पादों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि 370 में से 130 उत्पाद कृषि और खाद्य क्षेत्र के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। अगर राज्यवार बात करें तो असम की तेजपुरी लीची, जोहा चावल, असम कार्बी एंगलोंग अदरक, बिहार का कतरनी चावल, भागलपुरी जरदालू, मगही पान और शाही लीची को जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, गुजरात के गिर केसर आम, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय व हिमाचली काला जीरा और राजस्थान की बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग वाले उत्पादों से दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग ने तब से और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है जब से सरकार का ध्यान वोकल फॉर लोकल की ओर स्थानांतरित हुआ है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है।

0: तो अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट देखी, जीआई टैगिंग यानी कि भौगोलिक पहचान के बारे में थोड़ा बहुत तो जान लिया। तो फिर आइए इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों से भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर बजाज से यहाँ पर। जीआई टैगिंग की जब हम बात करते हैं, भौगोलिक पहचान की हम बात करते हैं, तो ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों है, इसके बारे में आप सबसे पहले जानकारी दें।
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा आदिति आपने कि सबसे पहले जीआई यानी भौगोलिक पहचान की बात करते हैं। और शुरू में आपने कहा ही था कि असम की चाय और बनारस की साड़ियां, ये सब चीजें इतनी मशहूर होती हैं, जब भी कोई जाता है तो वो सोचता है कि इसको मैं जरूर खरीदूंगा, या अगर खाने पीने की चीज है तो इसका जरूर खाकर या उसका टेस्ट करके पता करूंगा कि ऐसा खास क्या है उसमें, और वाकई खास होता है। तो जीआई एक प्रोडक्ट, ये जो एक टैगिंग है, ये उरुग्वे राउंड के बाद जब ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था तब आर्टिकल 22 और 24 के तहत, तब ये कहा गया कि भाई हर भौगोलिक क्षेत्र की एक विशेष पहचान है, उस उत्पाद से जुड़ी हुई उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसकी एक खास विशेषता जुड़ी हुई है, तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसकी हमें उस पहचान को जो है वो बनाए रखना है कि हाँ ये जो उत्पाद है ये इस क्षेत्र का है और विशेष है, इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। तो ये एक WTO के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत हुआ। अब उदाहरण जैसे आपने दिए, हमारे यहाँ अभी 415 के करीब GI टैग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारा मलियाबादी आम है, केसर आम है, बैंगन पल्ली आम है, अल्फेंजो आम है, चाय है, और इस तरह आशाही लीची है बिहार की, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 415 के लगभग आज की डेट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 140 जो है वो कृषि उत्पाद हैं।
0: जी, तो 140 कृषि उत्पाद हम कह सकते हैं कि इनकी जीआई टैगिंग हो चुकी है। तो ऐसे में राजेंद्र कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जीआई टैगिंग करता कौन है, इसके बारे में भी तो हमारे किसानों को पता होना चाहिए।
2: ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री
0: जी,
2: ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की ब्रांच है
0: जी,
2: और वहां पर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अंडर द एक्ट, अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट, कोई भी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स या बॉडी जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है वो अप्लाई कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि हम एप्लीकेशन लेके चले गए और रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर कर देगा, उसके लिए अंडर द एक्ट काफी रिगरस रिक्वायरमेंट्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी बॉडी जीआई रजिस्ट्री के सामने जाएगी वो एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, वो नॉन ट्रेडिंग न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए, यानी कि एसोसिएशन है जिसके कुछ मेंबर्स रिकॉग्नाइज करते हैं उसको और कुछ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। इंस्पेक्शन मैकेनिज्म सर्टिफाई करेगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे डॉक्टर बजाज ने बताया, एट्रिब्यूटेबल टू दैट रीजन है या नहीं
0: जी।
2: क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स जो लुक अलाइक होते हैं लेकिन वो उस रीजन से आते नहीं है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन बॉडी जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जरूरी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अब जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो हम पब्लिक राइट्स की बात करते हैं, वो राइट्स जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं
0: जी।
2: जैसे हम कोई ट्रेडमार्क या प्राइवेट राइट्स की बात करते हैं वो प्राइवेट ट्रेडर्स की होती हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं वो कम्युनिटी को दिए जाते हैं
0: जी।
2: और ये जो बॉडीज जो होती हैं ये कस्टोडियंस होती हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल होने के बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है और अंडर द एक्ट एक टेक्निकल कमिटी है, उसका प्रोविजन है, जो उसको एनालाइज करती है, जो उसको देखती है कि ये जो जीआई प्रोडक्ट है वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन है या नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद फिर एप्लीकेशन एडवर्टाइज होती है, 4 महीने का टाइम दिया जाता है, कोई भी एग्रीड पर्सन वहां पर अपोज कर सकता है, और उसके बाद फिर अगर कोई ऑपोजिशन नहीं होती है तो वो रजिस्टर हो जाता है, वो जीआई रजिस्टर हो जाता है। अगर नहीं होगा तो ऑपोजिशन जो है वो चलती है। तो इस तरह से ये जीआई प्रोसेस कंप्लीट होता है
0: जी। तो पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है, इन बातों को जरूर ध्यान में यहाँ पर रखने की जरूरत हो जाती है। तो अब मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, धान हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की बहुत प्रमुख फसल है, और उसकी बासमती की हम बात करें तो पहचान है हमारे देश से, बहुत ही अच्छे स्तर पर निर्यात भी होता है। तो ऐसे में बासमती के लिहाज से जीआई टैगिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हमारे किसान और इसकी ओर बढ़ना चाहे तो?
3: देखिए अदिति, धान जैसा आपने भी कहा और पूरे विश्व में ये जानकारी है कि धान भारत के लिए विशेष तौर पर बासमती
0: जी,
3: धान
0: जी।
3: बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व तो और बढ़ जाता है क्योंकि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है
0: जी।
3: इसके लिए हमारे किसान जो हैं वो विशेष तौर पर इसके इसके लिए जिम्मेदार हैं
0: जी।
3: लेकिन चूंकि धान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो उसकी उपज से लेकर और उसके निर्यात तक
0: जी
3: उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होते हैं। अब धान के लिए भारत सरकार ने विशेष प्रयास किए, अपीडा को इसका अधिकार दिया कि वो बासमती को जीआई टैगिंग करे और इसी परिणाम स्वरूप 2016 में हमें बासमती धान बासमती चावल का जीआई टैग जो जैसा अभी राजेंद्र जी ने बताया चेन्नई जो रजिस्ट्रार है रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका अधिकार अपीडा को मिला
0: जी।
3: उसके बाद से अब तक पूरे जोर शोर से अपीडा इस प्रयास में कार्यरत है इस प्रयासरत है कि हम कैसे ये जीआई टैगिंग को हम भारत से निकलकर बाहर जहां जहां हमारा हम करीब करीब 170 देशों में बासमती एक्सपोर्ट करते हैं
0: बिल्कुल
3: और उन सभी देशों में जाएं और अपने इस जीआई टैग को वहां भी रजिस्टर करें
0: जी,
3: जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा उस बात का फायदा मिले उसका लाभ मिले क्योंकि जितना हम निर्यात करेंगे उतना ही हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा।
0: बिल्कुल, तो जीआई टैगिंग के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का बदलाव आपने एक्सपोर्ट में देखा है, निर्यात में किस तरह का बदलाव आया है जब से जीआई टैगिंग हुई है।
3: देखिए, जीआई टैगिंग से एक बहुत बड़ा लाभ जो उस उत्पादक उत्पाद का जो मालिक है उसको मिलता है
0: जी।
3: जीआई टैग का जैसे कि अभी बजाज साहब ने भी बताया, जीआई टैग अपने आप में एक विशेष उत्पाद है, तभी उसको जीआई टैग मिलेगा और जब उत्पाद विशेष है तो स्वाभाविक है उसका मूल्य भी विशेष मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कारण है कि बासमती के उत्पाद से हम बहुत लाभ पूरा देश और हमारे देश के पूरे किसान इस बात का लाभ उठाते हैं और पूरे संसार में हम लोगों को बासमती खिलाते हैं, इसके लिए श्रेय हमारे किसानों को जाता है।
0: बिल्कुल, इसका पूरा श्रेय जो है हमारे किसानों को जाता है और हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन भी रहा है और हमारे किसानों का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ है, सहयोग है। बढ़ना चाहेंगे आगे, डॉक्टर बजाज आपके पास हम यहाँ पर आना चाहेंगे। आपने बताया कि 140 के करीब कृषि उत्पाद है जिनको जीआई टैगिंग मिल चुकी है, लेकिन अगर हमारे किसान या फिर कहें कि और संगठन वगैरह अलग अलग उपज की जीआई टैगिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कहां आवेदन करना होगा, क्या प्रक्रिया रहती है उसकी?
1: बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जैसे अभी कहा कि केवल 140 ऐसे उत्पाद हैं जो कि अभी जीआई रजिस्टर हुए हैं और हमारे तो हिंदुस्तान में बहुत सी जो उत्पाद हैं जो कि विशेषता रखते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं भारत की अतुल्य, भारत की अमूल्य निधि ये कहा जाता है। तो बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र विशेष की प्रतिष्ठा लिए हुए हैं, तो उनको रजिस्टर कराने के लिए जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे बासमती चावल है वो हर उस किसान का हकदार है जो बासमती उगाता है, तो इसीलिए जो उत्पाद है उसको एक कोई एजेंसी जो है, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो या गैर सरकारी संस्था हो जो कि सच में हकदार है उसका कस्टोडियन बनने की, उसको लेकर वो रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं और उसका फिर पूरा एक प्रोसेस है रजिस्टर कराने के लिए, जैसा भी राजेंद्र जी ने बताया था कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और उसके बाद कस्टोडियन बनना भी आसान नहीं है। मैं अगर एक उसका जीआई का कस्टोडियन बन गया तो उसकी पहरेदारी भी करनी है मेरे को, जैसे हम बासमती की पहरेदारी भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं दुनिया में कोई जो है वो बासमती ना कहलाए, हम कहते हैं जैसे ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन होता है ना कि मेरे ट्रेडमार्क को कोई दूसरा ना इस्तेमाल कर ले, इसी तरह जब एक जीआई रजिस्टर हो जाता है तो उसका एक पहरेदारी भी करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है, भाई दूसरे को तुम नाजायज हम उसका बगैर हमारी मर्जी के हम उसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे क्योंकि ये एक विशेष अधिकार है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जिसका वो उत्पाद है उसको हम प्रीमियम मिलता है, दूसरे उत्पाद में उसको पता होता है कि ये जो भी खरीद रहा है उसको मालूम है कि ये एक विशेष चीज है जो मैं खरीद रहा हूँ और इससे मुझे जो है एक एक अच्छा जो है वो और कहीं नहीं मिलता दुनिया के कोने में, एक यहीं पर ही ये चीज मिलती है और उसका एक प्रीमियम भी उनको दिया जाता है। तो इसीलिए इसका जो है वो रजिस्टर संस्था कर सकती है, चाहे सरकारी या गैर सरकारी हो, और फिर उसका कस्टोडियन भी बनना पड़ता है।
0: बिल्कुल, तो आपने कहा कि एक

0: में वर्ल्ड बैंक और एफएओ ने एक स्टडी स्पॉन्सर की थी जिसमें सिक्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस वर्ल्ड वाइड से सेलेक्ट किए गए थे, उसमें दार्जिलिंग टी भी थी। और उस स्टडी का फोकस था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन से क्या फायदा होता है। तो उसमें दार्जिलिंग टी के बारे में ये बताया गया कि जब से दार्जिलिंग टी की प्रोटेक्शन स्टार्ट हुई है तो उसका बेनिफिट जो वहां पे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि दार्जिलिंग टी सिर्फ 87 टी गार्डन्स में ही प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि सारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस करता है। सिर्फ 87 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे दार्जिलिंग टी होती है और वहां पर मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स वो विमेन है। तो उनका एम्पावरमेंट जब जीआई प्रोटेक्शन से होता है तो उनके लिए स्कूल्स, हर टी गार्डन ओनर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो गार्डन में देता है। तो उस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि दार्जिलिंग टी की वैल्यू टुडे इन कंपैरिजन टू जो ऑर्डिनरी टी है वो इतनी ज्यादा है जीआई प्रोटेक्शन की वजह से। और दार्जिलिंग टी वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्टेड है, उसको जो है यूरोपियन कमीशन ने भी ए जीआई टैग दिया था और वो जीआई टैग मिलने के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ दार्जिलिंग टी बढ़ गए हैं। और जैसे ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उसका जो बेनिफिट जो है ग्रास रूट्स पर जो वर्कर्स हैं जो वहां पे काम करते हैं उन पे होता है। ऐसा ही बासमती राइस पे भी होगा। इनफैक्ट बासमती राइस का प्रोटेक्शन भी जो है उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है। और अब जो है बासमती राइस जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है, जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बताया, और उसका प्रोटेक्शन भी उसी लेवल पे चल रहा है जो दार्जिलिंग टी का है।
1: जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर फायदे तो अनेक हैं अगर हम जीआई टैगिंग करते हैं। रुक करना चाहेंगे अब डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आपने कहा कि अब यहाँ पर कवायदे चल रहे हैं, कोशिशें चल रहे हैं कि अलग अलग देशों में भी जीआई टैगिंग हो सके हमारे बासमती चावल की। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जीआई टैगिंग किस तरह से काम करता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: देखिए अदिति, जैसा कि हमारे घरेलू सिस्टम में एक जीआई रजिस्ट्रार है, उसको हर किसी कोई भी प्रोडक्ट को रजिस्टर करने का एक तरीका है
1: जी।
2: इसी तरीके से अगर हम विदेशों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहां भी लगभग वैसे ही तरीके सामने आते हैं हमारे। और अगर हम वहां अपने जीआई टैग प्रोडक्ट को अगर वहां नहीं कराते हैं रजिस्टर, तो हो सकता है वहां कोई हमारे हमारे चीज के नाम को का दुरुपयोग करके वहां वो बेचता रहे। इसलिए यदि हमें अपने जीआई प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको संभाल कर रखना है, तो ये जरूरी है कि हम अपने उस उत्पाद को जहां भी हमारा मार्केट है, हमारा जो मुख्य मार्केट है, उस मार्केट के उन देशों में जाएं और अपने उस उत्पाद को वहां भी रजिस्टर करें। इसी कड़ी में अपीडा ने एक बड़ी पहल की बासमती के लिए, क्योंकि बासमती हमारे लिए बहुत बड़ा उत्पाद है
1: जी।
2: अगर मैं दो दशक की बात करूं, 2002-03 के लगभग बासमती का जो एक्सपोर्ट था वो करीब करीब 7 मिलियन के करीब था। आज वो बढ़कर करीब 45-46 मिलियन टन हो गया। तो इस बड़े उत्पाद को, जिसका कि पूरा का पूरा लाभ और श्रेय हमारे किसानों को जाता है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम विदेशों में जो हमारे ग्राहक जो देश है, उन सभी देशों में प्रयासरत हैं कि हम बासमती को जैसा हमने भारत में रजिस्टर कराया एक जीआई प्रोडक्ट, उसी तरीके से हम विदेशों में भी जाएं और अपने इस बासमती को एक जीआई टैग के तहत वहां भी रजिस्टर कराएं। और इस कड़ी में हम करीब करीब 20 के करीब देशों में हम हमारी एप्लीकेशन जो है, हमारे प्रार्थना पत्र वहां चले हुए हैं। और इस कड़ी में करीब करीब 8 देशों में हम ऑलरेडी या तो जीआई ले चुके हैं या बासमती का हमारा एक लोगो है, या तो हमने लोगो को रजिस्टर कराया है। तो ये रजिस्टर कराने से क्या होगा कि हमारा उस देश में भी हमारा बासमती प्रोटेक्ट रहेगा, कोई और उसकी नकल नहीं कर सकता, उस नाम को मिसयूज नहीं कर सकता। और हमारे जो किसान हैं, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ जो बासमती है वो धड़ल्ले से वहां बिकेगा। और उसका पूरा लाभ उनको मिलेगा।
1: हमारे किसानों ने जो कड़ी मेहनत से बासमती यहाँ पर तैयार किया है उसकी पहचान बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, कोई भी उसका दुरुपयोग, उसके नाम का दुरुपयोग यहाँ पर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बजाज, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जब किसी भी कृषि उत्पाद

0: आपको यहाँ पर GI टैगिंग मिलती है। तो ऐसे में जो आसपास के क्षेत्र के किसान हैं या फिर उसी क्षेत्र के हम किसानों की बात करें तो उन्हें किस तरह से फायदा मिलता है इसका?
1: सभी को फायदा मिलता है
0: जी।
1: जब GI टैगिंग हो जाता है तो जैसे ये कहा कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है
0: जी।
1: अब बासमती GI टैग हुआ तो जहाँ जहाँ बासमती उगाया जाता है वो उसका।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। हम चर्चा कर रहे हैं जीआई टैगिंग के बारे में। जीआई टैगिंग क्या होता है, कैसे हमें अपनी एक पहचान मिल सकती है और इसके क्या फायदे होते हैं, आइए इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते हैं इन एक्सपर्ट की मदद से।
1: आते हैं तो कुछ समस्याएं तो जरूर आती होंगी जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगी राजेंद्र कुमार जी से कि जब हम जीआई टैगिंग पर जाते हैं तो कुछ समस्या तो आती होंगी। हमारी एजेंसियों को या संगठनों की बात करें तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जब जीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के सामने जाती है तो एक समस्या होती है कि जब एग्जामिनेशन होता है उसका, उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब उसको एनालाइज करते हैं तो उनका मेन फोकस होता है कि जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं ये साइंटिफिकली एक्यूरेट हैं या नहीं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिक है या नहीं। क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ऐसा होता है जैसे कोई इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पे जो है पास ऑफ किए गए, वो ऑथेंटिक सोर्स बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जरूरी होता है कि इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स कि जो बॉडी रजिस्ट्रेशन के लिए जारी है उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोडक्ट को एनालाइज करने का, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एसोसिएट करते हैं उस प्रोडक्ट को उस रीजन के साथ, और जब तक वो इंस्पेक्शन मैकेनिज्म उसका उसके पीछे नहीं होगा तो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कश्मीरी कारपेट्स
1: जी।
2: अब कश्मीरी कारपेट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए जो बॉडी जिसने रजिस्टर कराया है कश्मीरी कारपेट एज ए जीआई, उन्होंने क्यूआर कोडिंग की है। जब आप कारपेट लेने जाते हैं तो उसमें क्यूआर कोडिंग है और कोई भी स्मार्टफोन से किसी भी डिवाइस से उस क्यूआर कोड से ये मालूम कर सकता है कि ये कहाँ किस रीजन से है, किस वीवर ने इसको वीव किया है। तो इसलिए जब कभी भी मार्केट में कश्मीरी कारपेट बिकता है तो उसके ऊपर जो क्यूआर कोड लगाता है उससे कस्टमर जो है वो मालूम कर सकता है कि ये जेन्युइन कश्मीरी कारपेट है। तो ये जो सिस्टम है वो रजिस्ट्रार ऑफ जीआईज एग्जामिन करता है। और उसके बाद एक और मुद्दा आता है कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द बॉडी कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, कि कभी कभी जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो उस पूरे प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। बहुत एग्जांपल्स आते हैं, हैदराबाद बिरयानी का एग्जांपल बड़ा फेमस है जिसमें वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो जो बॉडी थी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी और उन्होंने जो है वो अपना टाइटल प्रूव नहीं कर पाए तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का होना, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म का होना, ट्रेसिबिलिटी का होना और फिर जो है जो ओवरऑल सुपरविजन है उसके बाद फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। और जैसे मैंने पहले समझाया उसके बाद कोई भी अपोज भी कर सकता है एप्लीकेशन, और ये अपोजिशन कहीं से भी आ सकती है, हिंदुस्तान से ही नहीं, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
1: और तो जैसे आपने कहा कि उसके विरोध में भी यहाँ पर सवाल उठाए जा सकते हैं, अपोजिशन हो सकता है, तो ऐसे में फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है, उसका जस्टिफिकेशन किस तरह से दिया जाता है?
2: उसका जस्टिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के सामने जो कि क्वेजाई जुडिशियल बॉडी है, जैसे कोर्ट्स होते हैं तो उसमें वो एविडेंस एग्जामिन होता है जिससे दूसरी बॉडी ये कहती है जो अपोज करती है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज ये नहीं है
1: जी,
2: ये होनी चाहिए, या इसका एरिया इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा होना चाहिए। तो इस टाइप की ऑपोजिशंस आती हैं और उसको भी जो है थ्रू प्रॉपर जुडिशियल माइंड एग्जामिन किया जाता है कि ये सच है या नहीं। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट डॉक्टर बजाज ने बताया उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 24.9, वो ये कहता है कि अगर कोई जीआई डोमेस्टिकली प्रोटेक्टेड नहीं है तो किसी कंट्री के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर उसकी जो स्क्रूटनी होती है उसका एग्जामिनेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे बासमती का एग्जाम्पल दिया, दार्जिलिंग टी का एग्जाम्पल दिया, ये डोमेस्टिकली रजिस्टर्ड है
1: जी।
2: और इसीलिए जो है बाहर की कंट्रीज बाहर के कोर्ट्स उसको रिकग्नाइज करते हैं कि हमने हिंदुस्तान में उसको प्रोटेक्ट किया।
1: बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ यहाँ पर समझाया है राजेंद्र जी, में। हम उम्मीद करते हैं कि अब भी अगर आप जीआई टैगिंग के लिए जाएंगे तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन से हम कह सकते हैं दस्तावेजों की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है जिससे आप जीआई टैगिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब हम डॉक्टर शर्मा के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, जब हम किसी कृषि उत्पाद की जीआई टैगिंग की बात करते हैं तो उससे हमारे किसानों को ही फायदा नहीं होता बल्कि फसलों को भी उससे काफी फायदा होता है। फसल संरक्षण की हम बात करें तो उससे भी काफी मजबूती मिलती है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि फसल संरक्षण किस तरह से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है अगर हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं तो।
3: देखिए अदिति, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग कोई भी उत्पाद का जीआई टैग ले लेते हैं, लेकिन ये उससे भी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए कि उस जीआई टैग को हम कैसे संभाल कर रखें
1: जी,
3: और कैसे उस उत्पाद के साथ आगे बढ़े। क्योंकि यदि हम उस टैग का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा टैग लेने का कोई विशेष लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने बासमती का जीआई टैग लिया, हम पूरे विश्व में बासमती चावल जो है लोगों को खिलाते हैं और लोग पसंद करते हैं। उसमें विशेष अरोमा है, उसकी एक अपनी लेंथ है, उसकी एक ब्रेड्थ है, उसमें जो बायोकेमिकल जो बासमती के साथ जुड़े हुए हैं, जो कुदरती रूप में जैसे जैसे जिन जिन इलाकों में बासमती होता है उनमें वो होगा ही होगा। तो हमें ये भी पक्का सुनिश्चित करना है कि वो सारी जो क्वालिटी, वो जो मानक जिनको हम कहते हैं या स्टैंडर्ड हम कहें, वो स्टैंडर्ड बासमती उत्पाद जो हमारा निकले, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ बासमती, वो सारे के सारे मानक उसमें पूरे हों। यदि वो मानक पूरे नहीं होंगे तो अगर मान लीजिए कल को हमने कोई बासमती के नाम पर हमने चावल भेज दिया यूके में और वहाँ लोगों ने देखा, या जो हमारे कंज्यूमर हैं वो बड़े समझदार हैं, कंज्यूमर को अगर कल को पता लगेगा नहीं ये तो बासमती जैसा नहीं है, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब वो कोई भी उत्पाद, वो बासमती हो या कोई अन्य जीआई टैग उत्पाद हो, जब वो उसका उत्पादन करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करें
1: जी।
3: और यदि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका एक अच्छा मूल्य मिलता है, अच्छा भाव मिलता है, उसके एक्सपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं आती है और किसानों के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा है, माला माल है।
1: बिल्कुल, तो मानक के अनुरूप यहाँ पर उत्पादन करना बहुत जरूरी है। ऐसे में ही उपभोक्ता जो है ज्यादा से ज्यादा उस हम कह सकते हैं उत्पाद का खरीदेंगे या फिर सेवन भी करेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे, जीआई टैगिंग हो गई है लेकिन उन मानकों के अनुरूप उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, इस अवस्था में क्या होगा?
4: बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा दीदी, क्योंकि जीआई टैग लेना ही खाली काफी नहीं है। अब उसके बाद जैसे बासमती, तो चलो उदाहरण हम बार बार दे रहे हैं, दार्जिलिंग चाय का भी उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि पहले से ही बहुत वॉल्यूम में उसकी उपलब्धता है
1: जी।
4: ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी हमारे पास है तो सही, जीआई टैग भी ले लिया हमने, लेकिन उतना जो है उसकी वॉल्यूम में उपलब्धता नहीं है और उपलब्धता अब उसकी होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब एक, जो भी उस क्षेत्र के जो किसान हैं वो अब एकजुट हों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब इसका जो है एक भौगोलिक पहचान हो गई है उत्पाद की, तो उसके साथ जुड़े किसान या किसान जो उनके साथ हैं जो प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं, क्योंकि खाली फसलों का ही या उन्हीं का ही जीआई टैग नहीं होता, जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनका भी जीआई टैग होता है, तो उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो एक क्लस्टर अप्रोच में चलें जिससे कि वो मिलकर एक वॉल्यूम दे सके, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा थोड़े थोड़ी चीज से उसका कोई लाभ नहीं होगा। कई ऐसे उत्पाद हैं जो महीने में, साल में एक महीना होते हैं और उसको बेच दिया और 12 महीने उसको खत्म हो गया, उसको कोई लाभ नहीं है। तो सबको मिलकर क्लस्टर अप्रोच लेके चलना है और एक FPO बनाकर, FPCs बनाकर उसको कोशिश करनी है कि हम लोग वॉल्यूम दें।

0: जिससे कि वॉल्यूम होने से क्या फायदा होगा, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, दूसरा हम वॉल्यूम होने से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट नहीं होता है, एक्सपोर्ट के लिए वॉल्यूम चाहिए, उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और अपने घरेलू बाजार में भी हम बेच पाएंगे। उससे जब कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा हमारा बिक्री होगी, तो उसका लाभ जो है वो नीचे तक जाएगा। बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं, कॉस्टिंग को ध्यान रखें और अपनी जो एक विशेष पहचान है उसको बनाए रखें। उसके अलावा जो हमारी जो जीआई टैग को अगर इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है उसको भी बचाने की पूरी कोशिश करें। ये एक तरह का ट्रेडमार्क है आपका, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी चीज है जिसको मैं या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
1: बिल्कुल, तो इस बात का भी जरूर यहां पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने बताया कि ऑथेंटिसिटी यहां पर हो जाती है जब हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उपभोक्ताओं के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ये सच में कश्मीर का शॉल है, क्या ये सच में लखनऊ का आम है। ऐसे में क्या कह सकते हैं आप हमारे उपभोक्ताओं को कि किस तरह से ऑथेंटिसिटी यहां पर प्रूव हो?
2: जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कश्मीरी कारपेट्स में क्यूआर कोडिंग एक वन ऑफ दी मींस चूज किया गया है, जिससे कंज्यूमर अपने आप ही ऑथेंटिकेट कर सकता है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं।
1: जी,
2: ये प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जैसे दार्जिलिंग टी है या बासमती राइस है या अल्फोंसो मैंगोज है, उसमें ऑथेंटिसिटी का प्रूफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जैसे एरोमेटिक राइसेस हैं, एरोमेटिक राइसेस एक जैसे ही लगते हैं, और ये समस्या जो है हमारे सामने आई थी 1998 में। एक यूएस की कंपनी राइस टेक, उसने पेटेंट लिया और उस पेटेंट में ये कहा गया कि बासमती राइस जो है कोई नेचर का गिफ्ट नहीं है, इसको कहीं भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उन्होंने एक राइस अपने हाइब्रिडाइजेशन से बनाया, उसकी क्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही थी जैसे बासमती राइस की होती है, एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन, और उन्होंने कहा कि ये राइस जो है हम यूएस में ही ग्रो करेंगे। तो उस पेटेंट्स से हिंदुस्तान काफी रैटल्ड हो गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें पीडा और सीएसआईआर का बहुत रोल था, उन्होंने वो एप्लीकेशन फाइल की, रेवोकेशन की यूएसपीटीओ के सामने। और ये प्रूव किया कि ये जो प्रोडक्ट है बासमती राइस, ये यही प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें कुछ क्वालिटीज हैं जो नेचर ने दी है और उसको जो है कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और इस एफर्ट की वजह से वो पेटेंट जो है रिवोक हो गया, वहां की अथॉरिटी ने, वहां के कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोटेक्शन है उसको इस तरह से डिफाइन करें कि हम एनफोर्स भी कर सकें। टर्मरिक पाउडर का एग्जांपल आता है, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, यूएस कंपनी ने उसको पेटेंट किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जो है रिवोक किया। तो उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की जरूरत पड़ी हमें, हमें ये प्रूव करना पड़ा कि जो टर्मरिक पाउडर है हमारा, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, और उसको कोई भी जो है उस पर पेटेंट नहीं ले सकता।
1: तो बिल्कुल, तो ये सब हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी प्रूफ यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर जीआई टैगिंग जो करवाते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि मानकों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। अब हम निर्यात की यहाँ पर फिर से एक बार बात कर रहे हैं, डॉक्टर बजाज आपके पास आना चाहेंगे। अब एपिडा की बात करते हैं, तो कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए शीर्ष संस्थान माना जाता है। जीआई टैगिंग होने के बाद निर्यात में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप लोग, इस पर क्या कहेंगे हमारे किसान, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस ओर बढ़ सकें, इसके लिए हम जानना चाहेंगे।
0: अब एपिडा पूरा निरंतर प्रयासरत है कि जो भी जो जीआई टैग है, जो भौगोलिक पहचान के उत्पाद हैं, उनका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके, और निर्यात बढ़ भी रहा है। वैसे मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, हम लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में निर्यात हो रहा है, और लगभग हर साल ये निर्यात जो है वृद्धि की ओर ही जा रहा है। पिछले साल तो हमने करीब 29% की वृद्धि दी इसमें।
1: बिल्कुल, बदलाव हम कह सकते हैं, सकारात्मक बदलाव यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल बताएं क्या कह रहे थे आप।
0: तो भौगोलिक पहचान के जो उत्पाद हैं उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो भौगोलिक पहचान के हमारे उत्पाद हैं, जैसा मैंने कहा अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है ये हमारी, तो इसका लाभ जो है वो जो उसके हकदार हैं उन तक मिलना चाहिए और जो उपभोक्ता हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि वो भी इसका उपयोग कर सकें। तो एक विशेष अभियान चलाया हम लोगों ने, हम बायर सेलर मीट कर रहे हैं, क्रेता विक्रेता सम्मेलन कर रहे हैं, हम यहां से जो है उत्पादों को ले जाकर उनका विशेष जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, जिससे कि लोगों को बताएं कि ये जो विशेष जो उत्पाद है ये सिर्फ हिंदुस्तान में एक विशेष क्षेत्र का ही उत्पाद है, हर जगह से नहीं मिल सकता है। तो एक अच्छी एक जो है वो खरीदार को भी अच्छा लगता है उसको खरीदने में और उसका लाभ भी उसको मिलता है। विशेष अभियान चल रहा है, बहुत प्रमोशन हो रहा है और बैकवर्ड लिंकेज जैसे मैंने कहा उस तरफ हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका वॉल्यूम मिले, उत्पादन हो और बहुत जरूरी है कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बनी रहे, इस तरफ भी ध्यान रखते हैं। और बहुत जरूरी है कि अगर GI ले लिया तो उसका प्रोटेक्शन भी रखना है, ये ना हो कि मैं तो GI लेके बैठ गया और दूसरा कोई जो है उसी उत्पाद को जो है उसी नाम से बेच रहा है, ये भी नहीं होने देना, इसको भी हम लोग प्रयास रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है, बिल्कुल इस ओर हमें बिल्कुल ध्यान देना है। निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि डॉक्टर बजाज ने बताया है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है हमारे देश को, हमारे देश की एक अलग पहचान बन रही है विश्व स्तर पर। तो ऐसे में हम सभी को इस ओर भी खास ध्यान रखते हुए आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे। हम भी फिलहाल बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर मैं डॉक्टर शर्मा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो GI टैगिंग बहुत सारे उत्पादों की हुई है, लेकिन खास तौर पर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में ज्यादा ऐसे उत्पाद देखने को मिलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी के क्षेत्र के जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
3: देखिए, ये निश्चित रूप से आदित्य आपकी बात सही है और हमारे उत्तर भारत के जो किसान हैं उनको भी ये जरूरत है कि वो भी जैसे हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, वहाँ छोटे छोटे कई ऐसी उत्पाद हैं जिनको आगे लाके उनको GI टैगिंग करा के उनके उत्पादन को बढ़ा।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: दिया जा सकता है और उसके लिए ये जरूरी है कि वहाँ जो छोटे समूह हैं, हमारे जो किसान समूह जिनको आजकल पूरे भारत सरकार और पूरी राज्य सरकार भी जिनको पूरा महत्व देते हैं और उनके माध्यम से किसानों तक पहुँचने का एक प्रयास है, तो ये किसान समूह एक बहुत बड़ा रोल इसमें कर सकते हैं, जो हमारे किसानों को बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर लाके और जो हमारी इस तरह की जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं उनको, जैसे कि बजाज साहब ने कहा कि इसमें जल्दी से अपना ये प्रयास करें किसान लोग, अगर कोई उत्पाद उनके आसपास के एरिया में, उनके जिले में, उनके तहसील में, या कोई जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ 10-12 गांव ही हो जहां पे वो विशेष रूप से वो कोई उत्पाद होता है, वो उत्पाद फल का हो सकता है, वो उत्पाद किसी सब्जी का हो सकता है, वो उत्पाद किसी अन्न का हो सकता है। जैसे अगर आप आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं, एक भालिया गेहूं है, अब वो भावनगर जिले के थोड़े से कुछ एरिया में भालिया गेहूं के नाम से उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अलग है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा, हाँ बाद में अगर हमें उसको एक्सपेंड करना है, उसका निर्यात करना है, तो वाकई में हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता को ज्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन GI करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आसपास हमारे किसान भाई खास तौर पर और जो हमारे किसान समूह है वो ये सुनिश्चित करें अपने आसपास के एरिया में यदि कोई विशेष उत्पाद है तो उसको जीआई के लिए आगे लेकर आए ताकि कालांतर में आने वाले समय में वो उसका पूरा लाभ उठा सके।
1: बिल्कुल, तो जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि भावनगर का एक भालिया गेहूं है, अगर हमारे किसान उस छोटे से क्षेत्र में ही, उस दायरे में ही ना रहकर विश्व स्तर पर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो जीआई टैगिंग की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, इससे ना केवल आपके क्षेत्र को एक पहचान मिलेगी, पूरे विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश को एक अलग पहचान मिलेगी और साथ ही साथ फायदा पूरे देश को होगा, आपको भी होगा। तो जीआई,
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलवा सकती है। इसके लिए अब हम सभी को आगे बढ़ना होगा। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ यहां पर उपस्थित हैं, आइए उनसे और जान लेते हैं। ऐसे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं जानना चाहूंगी यहां पर डॉक्टर बजाज से। डॉक्टर बजाज, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि GI टैगिंग जो है प्रसंस्कृत उत्पादों की भी की जा सकती है। अभी तक किसान अलग अलग उपज की यहां पर GI टैगिंग कर रहे थे, लेकिन अगर प्रसंस्कृत उपज यहां पर लेकर आते हैं, उत्पाद लेकर आते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया कोई अलग है या फिर वही प्रक्रिया रहेगी?
1: वही प्रक्रिया
0: जी।
1: जैसे मिठाइयां हैं, कई हमारी विशेष मिठाइयां हैं, उनका GI टैग है। बहुत सी ऐसी मिठाइयां जिनका तो GI टैग हुआ ही नहीं है, और बहुत सी जरूरत है क्योंकि ऐसी विशेष जगह चीजें हैं जिनका हम लोग अब जानते हैं। हम रोजमर्रा में बात करते हैं कि उस जगह की ये चीज बड़ी मशहूर है, वहां जाके हम लोग जरूर खाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सी मिठाइयां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई हैं, उसकी प्रतिष्ठा है, अलग से प्रतिष्ठा है, उनको जो है वो GI टैग की आवश्यकता है। और जब GI टैग हो जाता है तो सबसे पहली तो एक मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि अब ये उत्पाद मेरे ही क्षेत्र का, हमारे ही क्षेत्र का है, और उसको जो है वो जो भी आएगा हम कह सकते हैं कि ये हमारा उत्पाद है, इसी क्षेत्र विशेष से मिलता है। तो जो भी उपभोक्ता आ रहा है वो उस चीज को खरीदने में उसे भी सेटिस्फेक्शन होगी और हमें बेचने में आसानी होगी। और उसके बाद जो है वो हम लोग उसका प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं कि ये उत्पाद इस जगह का है, विशेष GI उत्पाद है।
0: जब एक अलग पहचान मिल जाएगी तो उसके दाम भी काफी अच्छे मिलेंगे, तो इससे फायदा ही फायदा हमें सामने नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई तरह के कुछ बाधाएं भी होती हैं, तो राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। उपभोक्ताओं के साथ अगर किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी हो जाए या फिर ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो ऐसे में क्या किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान भी है?
2: बिल्कुल,
0: क्या कहना चाहिए?
2: हमारी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों हैं
0: जी।
2: उसमें जो GI ओनर होता है, जो कस्टोडियन होता है, उसको राइट दिया गया है कि वो कोर्ट में जाके एक इन्फ्रिंजमेंट एक्शन फाइल करे, और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इन्फ्रिंजमेंट के भी काफी फॉर्म्स होती हैं कि एक प्रोडक्ट जो कि GI प्रोडक्ट नहीं है वो मार्केट में पास ऑफ कर रहा है एज ए GI प्रोडक्ट। तो वो जैसे बनारसी साड़ी का एग्जांपल है
0: जी।
2: बनारसी साड़ी जैसे मेड इन चाइना हिंदुस्तान में बिक रही हैं, लेकिन बनारसी वो जो है बनारसी साड़ी के GI का इन्फ्रिंजमेंट होगा, और उसमें जो है सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्रिमिनल रेमेडी भी जो है अंडर द एक्ट काफी स्ट्रिक्ट है, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस मानी गई है। उसमें जो है पुलिस जो है विदाउट एनी एनेबलिंग पावर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट भी कर सकती है, इसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो हमारा GI एक्ट काफी स्ट्रांग है और काफी मॉडर्न है, और उसमें जो प्रोविजंस हैं अगर GI ओनर उनको एनफोर्स करे तो हमारे कोर्ट जो हैं काफी फोर्थ राइट है। इनफैक्ट एक एग्जांपल दूंगा, स्कॉच विस्की एसोसिएशन हिंदुस्तान में 1980 से इंफ्रिंजमेंट एक्शंस फाइल कर रही है, और उन्होंने जो है एक तरह से बॉडी ऑफ केस लॉ बनाई है। अगर हम GI लॉ के बारे में हिंदुस्तान में देखते हैं तो SWA स्कॉच विस्की एसोसिएशन ने जो कंट्रीब्यूट किया है केस लॉ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आज तक बहुत यूजफुल रहा है
0: जी। बिल्कुल, तो काफी यहाँ पर देखिए कानूनी प्रावधान भी हैं, अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा धोखाधड़ी भी हो रही है तो आपको यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सहयोग के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। बिल्कुल, GI टैगिंग लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फायदेमंद साबित हो सकती है हमारे संगठनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, एक क्षेत्र की एक नई पहचान बनाने के लिए। तो अंतिम सवाल मैं तीनों से ही एक बार लेना चाहूंगी, उनकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, किसानों की आय को दोगुना करने में ये GI टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगी?
3: देखिए अदिति, ये बहुत ही अच्छे बात आपने उठाई, क्योंकि भारत सरकार विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार इस बात को इंगित करते हैं कि हमें किसानों की आय को बढ़ाना है
0: जी।
3: उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी उत्पाद वो करें वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो
0: जी,
3: और अगर वो जीआई टैग है तो निश्चित रूप से उनकी आय में वृद्धि होगी होगी
0: जी।
3: लेकिन किसी भी जीआई उत्पाद का जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके मन में, उनके दिमाग में उस जीआई उत्पाद के बारे में सही बात बैठना बहुत जरूरी है
0: जी।
3: और इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारा जो ट्रेसिबिलिटी सिस्टम है
0: जी,
3: वो एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। किसी भी उत्पाद का अगर हम हमारे कंज्यूमर तक
0: जी,
3: उसको ट्रेसिबिलिटी से बता पाए कि देखिए ये उत्पाद है, ये यहां से चला, यहां पैदा हुआ
0: जी,
3: और उसके बाद यहां गया और उसका यहां प्रोसेसिंग हुई, यहां पैकिंग हुई और यहां जाके वो कंज्यूमर के तक पहुंचा, अगर हम ये निश्चिंतता अगर हम अपने कंज्यूमर को दे पाए तो निश्चित रूप से
0: वो खरीदेगा ही और लाभ सीधा हमारे किसानों को मिलेगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपसे भी हम टिप्पणी लेना चाहेंगे, किसानों की आय को दोगुना करने में जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगा।
2: मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन है अगर हम इंक्रीज करने पे फोकस करेंगे
0: जी,
2: उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना की जाए
0: जी,
2: क्योंकि जीआई प्रोडक्ट्स जो हैं हिंदुस्तान की इमेज है वर्ल्ड में, अगर हम क्वांटिटी के पीछे भागेंगे और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बदनाम हमारे देश का ही होता है। इसलिए दोनों क्वांटिटी एंड क्वालिटी को साथ साथ चलना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो है जीआई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन इतनी हाई नहीं होती क्योंकि उनका रीजन लिमिटेड होता है,
0: पर क्वालिटी यहाँ पर बहुत क्वालिटी मायने रखती है।
2: गुणवत्ता
0: अगर अच्छी है आपके उत्पाद की तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अच्छा दाम मिलेगा ही मिलेगा, और जीआई टैगिंग हो गई है तो ये सोने पे सुहागा साबित हो जाता है। डॉक्टर बजाज, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए क्या संदेश है आपका।
1: सबसे पहले आपको उदाहरण दे दें, जैसे एक बलिया गेहूं की बात की गई जो घरेलू बाजार में बिकता है, प्रीमियम पे बिकता है, हमने एक्सपोर्ट किया और वो भी प्रीमियम पे किया, क्यों? क्योंकि वो जीआई टैग था, और जब प्रीमियम में बिका तो उसका लाभ जो है नीचे तक भी गया, सबको मिला, जो उसके उत्पादन कर रहे थे उनको भी उसका लाभ मिला। तो एक इसी तरह उदाहरण है, जीआई टैग होने पर उसका बेचना आसान है, हमें प्रीमियम मिलता है और एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं जो एक चीज उगा रहा हूँ ये विशेष है, ये दुनिया के और किसी कोने में ऐसी चीज उगती नहीं है या बनती नहीं है, ये हम ही हैं इसके निर्माता या इसको उगाते हैं, तो एक संतुष्टि भी मिलती है। आने वाली जनरेशन को भी हम कह सकते हैं कि ये चीज हमारी जनरेशन ने हमें दी है और हम आगे आपको जनरेशन को देने जा रहे हैं प्रीमियम।
4: जी हाँ किसान साथियों, जीआई टैगिंग से हमें फायदा हो सकता है। एक तो हमें ये चीज बेचने में आसानी होगी, दूसरी चीज कि जो हमें इसके लिए कहीं कैंपेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में एक प्रसिद्ध चीज़ होगी कि जो भी आएगा उसे खुद ही पता है कि यहाँ की ये चीज़ फेमस है और वह उसे लेना ज़रूर पसंद करेगा। जैसे कि अपने झव्वा का अभी कड़कनाथ इतना फेमस है तो हर कोई जो भी आता है वो ज़रूर चाहता है कि जो मांसाहारी है वो ज़रूर चाहेगा कि मैं इसका टेस्ट करूं। साथ ही वो सारे जो लोग अंडा खाते हैं वो काफ़ी अंडे की भी डिमांड है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमें इसमें जो इसमें जो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम अगर ये हमारे लिए एक अच्छा है कि हम यहाँ पर कड़कनाथ होता है, इसका मतलब ये नहीं हम उसमें भर भर के पूरा कड़कनाथ पाले और जिससे अधिक पालने के चक्कर में हमारा क्या होता है, जो क्वालिटी है उसको हम ख़राब ना करें। हमें हमारी क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखना है, उसका भी प्रबंधन करना है, साथ ही हमें अपनी जो क्वांटिटी है उसको भी बनाकर रखना है। तो इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटा व्हील 90.8 FM के साथ झवा की आवाज।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
4: सूर्य रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। किसान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम छावा की आवाज खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम का यही प्रयास रहा है कि हमारा जो झाबुआ का किसान है वह अपनी कृषि में नवीनता लाए और प्रकृति में और पर्यावरण में हो रहे इन बदलावों को भली भांति समझे और अपनी कृषि में इस बदलती प्रकृति के अनुरूप कृषि करे। साथ ही हम यह प्रयास करते हैं कि आप तक उन्नत बीजों को आप तक पहुंचाया जा सके, साथ ही जो नवीनतम कृषि पद्धतियां हैं वो भी आप तक पहुंचाई जा सके। साथ ही हम कोशिश करते हैं कि जो केवीकी के माध्यम से जो केवीकी के जो एक्सपर्ट है उनके माध्यम से आप तक भिन्न भिन्न फसलों के एक्सपर्ट को आप तक उनके विचारों को आप तक पहुंचाए, साथ ही आपकी समस्या को आप एक्सपर्ट को आप अपनी समस्याओं को साझा कर सकें और आपके खेतों में जो समस्याएं आ रही है उससे हम निदान भी पा सकते हैं। तो किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे मौसम आधारित खेती के ऊपर। हमारा जो मौसम है, बारिश का जो मौसम चल रहा है, इसमें कौन सी फसल हमें करनी चाहिए, किस फसल में हमें मुनाफा हो सकता है, साथ ही इन फसलों में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है आदि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे आज के इस खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से। तो किसान साथियों, आइए शुरू करते हैं रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।
0: बात करने वाले हैं मॉनसून और खेती की। जी हाँ, मॉनसून का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और खास तौर पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बात करें तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था अगर कहें इस मॉनसून पर निर्भर करती है तो गलत नहीं होगी। खास तौर पर अगर खरीफ फसलों की बात करें तो बहुत हद तक इसकी निर्भरता रहती है और ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि अगर मॉनसून की बारिश अच्छी होगी तो हमारे खेत लहलहाएंगे। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि इस बार मॉनसून कैसा रहने वाला है, हमारे किसानों को अपने स्तर पर किस तरह की तैयारी करनी है और कैसे वर्षा जल संचयन भी वो कर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे।
4: किसान साथियों, चर्चा को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर मानसून के ऊपर, क्योंकि जो हम कृषि करने वाले हैं इसमें मानसून की अहम भूमिका रहती है। बहुत सारे किसान हैं जो मानसून आधारित खेती करते हैं, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और इस साल का मानसून कैसा होने वाला है, सारी चीजों को हम जानेंगे इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं।

0: भारत में मानसूनी सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। इस दौरान हुई बारिश खरीफ फसलों की पैदावार के लिए काफी अहम मानी जाती है, यानी अगर मानसून अच्छा हो तो उपज भी भरपूर हो जाती है। लेकिन मानसून कमजोर हुआ तो इसका सीधा असर कृषि पर सूखे के रूप में पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और खेती के लिए मानसून की अहमियत को समझते हुए मौसम विभाग हर साल मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा के दूसरे चरण के दीर्घ अवधि पूर्वानुमान में इस बार जून से सितंबर के दौरान मानसूनी बारिश के औसत से 96 से 104% रहने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस बार पूरे देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा के सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून सीजन में मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से ज्यादा बरसात होने की संभावना है। मध्य भारत में ओडिशा, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ आते हैं। इन इलाकों में दूसरी फसलों के साथ मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास और दलहन की बुआई की जाती है। गुजरात में किसान मिर्च, जीरा जैसी फसलों की खेती भी करते हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए मानसून की अच्छी बरसात अच्छी पैदावार की सौगात लेकर आती है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, केरल और लक्षद्वीप आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। वहीं उत्तर पूर्व भारत और उत्तर पश्चिम भारत में बरसात के सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान आते हैं। इन राज्यों में अन्य फसलों के अलावा गेहूं, धान और दलहन की खेती मुख्य रूप से की जाती है। हालांकि कई बार मानसून हर इलाके में एक जैसा नहीं बरसता, यानी कई बार कहीं कम और कहीं ज्यादा बरसात भी हो जाती है। आमतौर पर जिन इलाकों में मानसून के दौरान ज्यादा बरसात होती है, वहां किसान ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जिन इलाकों में कम बरसात होती है, वहां किसान उन फसलों की बिजाई कर सकते हैं जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो। इसकी जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी ले सकते हैं।
1: तो बिल्कुल, अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की संभावना है वहां के किसान क्या करें, जहां पर बारिश थोड़ी कम रह जाती है वहां पर किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किस तरह की फसलों या फिर किस्मों का उन्हें चुनाव करना चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर जयनमणि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए मानसून का इंतजार हर किसी को होता है, लेकिन किसान जो है उसका जीवन उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी आमदनी उसके ऊपर निर्भर करती है। सिर्फ मौसम में बदलाव, ठंड या गर्म का मतलब उससे उसका नहीं रहता। तो ऐसे में इस बार का मानसून कैसा रहने वाला है, क्या बताता है भारत मौसम विज्ञान विभाग?
2: देखिए, जो अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन आया है, जो भविष्यवाणी है, वो जून मंथ का मंथली जो रहेगा और कौन सा एरिया में कम रेन होगा और कौन सा एरिया में ज्यादा रेन होगा, और उसके साथ साथ पूरा जो सीजन है 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक सारा भारत में मानसून स्थिति क्या रहेगा। तो पहले अगर बात करें सारा भारत का, तो इस साल ऐसे कुछ फीचर्स नेगेटिवली नहीं है। तो हम अगर ग्लोबल फीचर्स का बात करें, जैसे लानीना चल रहा है और ऐसे ही अप्रैल मई में भी ज्यादा गर्मी हुआ है, तो ये सारा बहुत इंडिकेट करता है कि मानसून अच्छा रहेगा ओवरऑल जो है। अगर ऑल इंडिया रेनफॉल, जो सारा भारत का बारिश का अगर हम हिसाब करें, तो पूरा सीजन में जो है टोटल रेन लगभग जो हमारा 89 सेंटीमीटर होता है वो नॉर्मल रहेगा। हम रादर बढ़ाया, इनका मान था 99%, हम 103% दिया अपडेट में। और उसके साथ साथ जून महीने का जो है, सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि मानसून का जो आगमन होता है, ये एडवांस फेज में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर साल का यही स्टोरी है, मतलब यही ऑब्जर्वेशन है, इसमें घबराने का कोई बात नहीं होना चाहिए। और कुछ कुछ मीडिया जो बोलते हैं वो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हमारा जो रहेगा स्थिति, अभी पेनिनसुलर इंडिया, जो दक्षिण भारत कवर कर रहा है, आगे से भी केंद्रीय भारत और हमारा उत्तर पश्चिम भारत को भी आएगा। और यही है कि कौन सा डेट जो है, डेट तो वैरी करता है, कभी 10 दिन लेट में आता है, कभी 10 दिन पहले आता है। जैसे दिल्ली का अगर बात करें, पिछले साल बहुत लेट में आया,
1: 25 के बाद
2: जून 27 नॉर्मल डेट होता है, राजस्थान जुलाई फर्स्ट वीक होता है। तो लगभग जो प्रिडिक्शन है जून महीना का सेकेंड हाफ है वो बारिश अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ मानसून का जो आगमन है अभी तक जो आंकड़ा है कुछ डिले नहीं हुआ है, और महाराष्ट्र का कवर टाइम पर करेगा और केंद्रीय भारत भी टाइम पर करेगा।
1: बिल्कुल, तो अभी जो मानसून की चाल है या फिर रफ्तार है उसमें किसी तरह की हम तब्दीली नहीं देख रहे हैं, जो सामान्य रूप से जो होना चाहिए वैसा ही है। शिवे साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जो रिपोर्ट भी हमने दिखाई तो उसमें भी हमने बताया कि किस तरीके से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब हम एवरेज निकालते हैं पूरे देश का तो लगता है कि हाँ मानसून अच्छा रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और किसानों को इसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। आप जो अभी खासतौर पर जो खरीफ सीजन की फसलें हैं उनके लिए विशेष तौर पर क्या बताना चाहेंगे?
3: देखिए

0: फसलें भी हैं हमारी, जैसे दाल वाली फसलें हैं, अरहर है, मूंग है, उड़द है, इनकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है खरीफ के मौसम में। लेकिन बात ये ध्यान रखने की है कि जो अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्में उन्हीं को लगाएं, और उसके साथ साथ जो है इस चीज का भी ध्यान रखें, पानी यदि आपके यहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो उसका जो है पूरा सदुपयोग करें। सदुपयोग करने का मतलब ये है कि पानी को बाहर न जाने दें, और यदि पानी बहुत ज्यादा भर गया है, जैसे हमारी अरहर की है, मूंग की है, उड़द की है, तो वहाँ पानी निकालने की संभावना भी बढ़ जाती है,
1: बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है फसलें, ये भी हम जानते हैं। अनंता जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि देखिए प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है, रेन और क्रॉप इसके बीच में जब प्रबंधन की बात करते हैं तो इसे हम किस तरीके से समझें?
2: जी, जैसे कि अभी मानसून के समय में विभिन्न फसलें लगती हैं, जिसमें जैसे कुछ धान है, मक्का है, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलें भी लगती हैं। तो इसमें सभी फसलों को सामान रूप से पानी की जरूरत नहीं होती है। जैसे धान है उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तिलहनी या दलहनी फसलें हैं उनको कम पानी की जरूरत होती है। तो आपको जो उस हिसाब से जो पानी का जो है प्रबंधन करना चाहिए फसलों में, जैसे अभी डॉक्टर सीवर जी ने भी कहा है कि धान के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो आपको वहां पे जो ऐसे मैने ऊंची बना लीजिए, ताकि अगर बरसात का पानी आता है तो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है आपके खेतों में रुक सके। आपकी जैसे तिलहनी फसलें हैं या दलहनी फसलें हैं या सब्जी वर्गीय फसलें हैं, तो ये पानी के प्रति काफी संवेदनशील होती है। अगर ज्यादा पानी बरस गया तो उनकी जो जड़ें होती है वो खराब होने की संभावना होती है। तो उसमें जो है आप जल निकासी का प्रबंधन कर सकते हैं या फसलों को आप में लगा सकते हैं, जिससे जो है आपका पानी से नुकसान नहीं हो सकता। जैसे कि हम देख ही रहे हैं आजकल जलवायु परिवर्तन की वजह से जो वर्षा की तीव्रता है वो ज्यादा हो जाती है, और जो आपके रेनी डे हम जो कहते हैं कि वर्षा के दिन, उनमें कमी आ रही है। जैसे कि टोटल बारिश हम कहते हैं कि जो आपका मानसून वर्षा है वो तो आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन जो वितरण है वो आपका सामान्य नहीं रहता है। कभी आपकी बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, कभी आपका ड्राई पीरियड जो सूखा समय है फसलों के दो बारिश के बीच का समय वो ज्यादा रह जाता है। तो अगर आप जो ये जो पानी है जो पानी एकत्रित नहीं, तो आपको ये सलाह दूंगी कि आप खेत के पास में एक पौंडनुमा स्ट्रक्चर बना दीजिए, और जो बरसात का पानी आता है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, साथ ही जो आप जल निकासी करते हैं खेतों से उसका पानी भी उसमें इकट्ठा हो जाएगा। और जब आपका जो सूखा पीरियड ज्यादा होता है उसमें आप जब पंप की मदद से वो जो पौंड में आपका पानी एकत्रित हुआ है उसको आप फसलों में डाल सकते हैं। इसके आपके कई फायदे होंगे, एक तो आपको पानी मिल जाएगा फसलों में, दूसरा जो खेत का जो उर्वरक है वो पानी के साथ आपका उसमें इकट्ठा हो गया तो फिर से आपके जो खेतों में आ जाएगा, तो ये भी आपका फायदा हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, अनंत जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई, क्योंकि देखिए हम पानी को सिर्फ पानी की तरह लेते हैं कि एक पोषक तत्व है, जितने जो जरूरत होती है फसलों को उनमें से एक ये भी है, एक कंपोनेंट है महत्वपूर्ण, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिले। जो अनंता जी ने बताया कि आपके खेत की जो मिट्टी बहती है वो बहुत रिच होती है, वो बर्बाद ना जाए, उस पानी को बर्बाद आप बिल्कुल ना जाने दें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान इसके लिए अपने स्तर पर तैयारी करें, वहां पर भी जहां पर बारिश कम होती है और वहां पर भी जहां पर ज्यादा होती है, दोनों ही स्थिति में आपको अपने स्तर पर जरूर तैयार रहना चाहिए। अब बात मैं करती हूँ जनमणि जी से। जनमणि जी, जैसे कि हम वितरण की बात करें, देखिए सारा प्रबंधन जो है इसी बात पर फोकस हो जाता है कि कहीं बारिश ज्यादा ना हो जाए और कहीं बारिश कम ना हो जाए, लेकिन अगर एक समझने की हम कोशिश करें, एक मेरा सवाल है कि ये दरअसल वितरण कम हो क्यों रहा है? मतलब एक दिन एक क्षेत्र में देखते बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वहीं दूसरी जगह देखते हैं कि कम हो रही है, तो एवरेज तो आपका ज्यादा निकलता है लेकिन पानी जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता, प्यास धरती की नहीं बुझती।
3: देखिए मैं इसका ना जो डिस्कशन है दो बातें बताऊंगा। जो एक तो जो एरिया है जैसे उड़ीसा है या हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, और जैसे हमारा पश्चिम का जो कोंकण गोवा कर्नाटक और केरल, यहाँ तो हर साल ज्यादा बारिश होता है, फ्लड होता है, ठीक है ना। इसकी जो वेरिएबिलिटी है कम है, चाहे मानसून कैसा भी परफॉर्म करो लेकिन जो रेन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा बारिश मिलता है, ठीक है। और अगर हम अंदरूनी इलाका का बात करें जैसे मध्य प्रदेश है या ज्यादा से ज्यादा जो राजस्थान है, ये इलाका में जो है एक तो रेनफॉल का जो अमाउंट है 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर टोटल होता है, और राजस्थान में भी तो ऐसा इलाका है टोटल 50 सेंटीमीटर है। तो ये इलाका में जो मानसून का जो जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है, यहाँ जो है जो हम रेनफेड एरिया बोलते हैं कि जहाँ बारिश कम होता है उसके साथ साथ इसका जो वेरिएबिलिटी है भी, मतलब 6 दिन बारिश हुआ या 2 दिन बारिश हुआ फिर एकदम ड्राई।

0: लंबा है, तो ज्यादा हमारा जो फोकस रहता है ये राजस्थान मध्य प्रदेश इसी इलाका का रहता है कि इनको सही इन्फॉर्मेशन मिले कि कब वेट स्पेल होगा, कब ड्राई स्पेल होगा, सो दैट जैसे दे कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन, पानी को स्टोर करना है कौन सा, यू नो सोइंग सीजन कौन सा टाइम में होता है, इसलिए वो मौसम विज्ञान विभाग से जो नियरेस्ट सेंटर है वहां से टाइम टू टाइम हमारा SMS जाता है उसका इस्तेमाल करें
1: जी। यानी जनाब मनी जी, जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं, पूर्वानुमान होते हैं, इस पर हमारे किसान बहुत गौर करें, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, जैसे आपने बताया कि हैवी स्पेल की अगर संभावना बन रही है, तो किसान सिर्फ इस सीजन की फसल को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेप्स ना उठाएं, बल्कि ये भी सोचें कि इस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। और जैसे कि हाल में हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया, उसमें भी फोकस यही था कि धरती एक ही है और पानी जो है इसे आप लैब में नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बारिश होगी ऊपर से वही पानी आप इस्तेमाल करेंगे या फिर ग्राउंड वाटर होगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान पहले से किस तरीके से पानी को बचाया जाए ताकि आगे भी काम आए।
0: बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो वाटर मैनेजमेंट है, दूसरा क्या होता है कि क्रॉप का जो डिफरेंट स्टेज होता है तो अकॉर्डिंगली जैसे हैवी स्पेल होता है तो पेस्ट एंड डिजीज और आपको जो भी खादी या कुछ भी फर्टिलाइजर डालना है तो वेट स्पेल में तो चला जाता है नीचे, ठीक है ना। तो इसलिए जो मौसम का भविष्यवाणी लेके नॉट ओनली कि आप लगाए धान कि कब आ रहा है मानसून, वो एक है, उसके बाद भी कम्प्लीटली मैनेजमेंट जो है वो मौसम का भविष्यवाणी पर होना चाहिए।
1: जी, जी।
0: जैसे पेस्ट डिजीज कंट्रोल है, जैसे फर्टिलाइजर लगाना है, तो बारिश को देखते या कब ड्राई स्पेल है वही विंडो में करना चाहिए।
1: शिवे जी, इस पे मुझे लगता है और बेहतर तरीके से बता पाएंगे, आप क्या बताना चाहेंगे सर, चाहे वो खाद डालने की बात हो या फिर पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो मौसम या फिर खासतौर पर बारिश की जो संभावना है उसको देखते हुए कैसे हमारे किसान कर सकते हैं।
2: देखिए, बारिश का जो है बहुत बड़ा महत्व है हमारे खाद्यान्न उत्पादन में, विशेषकर जो है खरीफ के मौसम में। ये एक तो पानी पौधों को डायरेक्ट मिलता है, दूसरे जो हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में हम पंप सेट से ट्यूबवेल से पानी को निकालते हैं, तो उसके लिए भी रिचार्ज होना ग्राउंड वाटर बहुत जरूरी है और ये वर्षा पर ही निर्भर करता है। तो इसका बहुत अच्छे ढंग से किसानों को सदियों को करना चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसी कमोडिटी है कि इसके बिना खेती नहीं की जा सकती, चाहे वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है चाहे इरीगेटेड है, कैसी भी कंडीशन है पानी बहुत जरूरी है। तो किसानों को, क्योंकि आजकल कृषि विज्ञान केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वहां पे जो मौसम की भविष्यवाणी की सूचना जाती है और उन्होंने जो है अपने व्हाट्सएप मैसेज से किसानों को जोड़ रखा है, तो उनके हर किसानों के पास में कम्युनिटी सेंटर पे जाती है कि भी अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है या हवा तेज चलने वाली है या हमको जो है खाद डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक होने की जरूरत है और उनको जो है समय समय पर जो भी उनको मैसेज मिलता है उसी अनुसार जो है, चाहे वो किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर करें कि आज बारिश होने वाली है तो हम नहीं डालेंगे, यदि थोड़ा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उस समय जो फर्टिलाइजर लगाएं या हो सकता है उनका कुछ इरिगेशन देने की जरूरत पड़े तो इस तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रॉप की प्लानिंग भी इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसे इंटरक्रॉपिंग है या मिक्स्ड क्रॉपिंग है या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ऐसे आयाम यदि वो अपनी कृषि पद्धति में लेकर आएंगे तो वहां पर पानी की उपयोग क्षमता बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ उनकी आमदनी भी बनेगी। और यदि कुछ दुर्भाग्यवश किसी कारणवश कुछ ड्राई स्पेल आ जाता है तो वहां पर फसल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती
1: जी,
2: है।
1: लेकिन जी जी जी सर,
2: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, किसान भाई जो है इस चीज का भी ध्यान रखें कि उनके पास में कोई अवशेष बचा हुआ है किसी फसल का तो उसको जलाएं नहीं बल्कि उसको मिट्टी के ऊपर छोड़ें, तो आच्छादन का काम करेगा, मल्चिंग का काम करेगा, उससे उनका जो है पानी का ह्रास कम होगा और उनकी जो है वाटर रिटेंशन
1: और कार्बन कंटेंट भी बढ़ेगा मिट्टी का।
2: बिल्कुल, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट तो आत्मा मानी जाती है मिट्टी की और वो जो है पोषक तत्व प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है और जो हमारे जैसे माइक्रोबियल बायोमास है, माइक्रोबियल बायोमास कार्बन है, बैक्टीरिया फंजाई एक्टिनोमाइसिन, इनके लिए भी बहुत जरूरी है।
1: जी, लेकिन डॉक्टर शिवे, जैसा कि आपने बताया कि मौसम कैसा रहने वाला है, पूर्वानुमान देखे उसी के अनुसार चाहे सिंचाई करनी है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, खाद डालें या कीटनाशक डालने हैं, उसी के अनुसार हमारे किसान अपनी योजना बनाए। लेकिन लेकिन एक बात हम ये भी जानते हैं कि किसान जो एक पैटर्न फॉलो करता आ रहा है, मतलब जो पारंपरिक तौर पर कि इस फसल में इतनी सिंचाई लगनी है तो 21 दिन बाद हम पहली सिंचाई लगाएंगे फिर इतने दिन बाद, तो वो भी ये बात सही है कि अगर वो डे मिस हो गया तो उसकी फसल में नुकसान होगा, तो इसे मतलब ये बड़ा जटिल हो जाता है, किसान कैसे समझे इसे?
2: नहीं, समझने की जरूरत ये है कि यदि बारिश हो जाती है, जैसे क्रिटिकल स्टेज बताते हैं कि भाई इस पर पानी देने की जरूरत पड़ती है, धान के अंदर हम बताते हैं कि जिस समय मैक्सिमम टिलिंग स्टेज हो या हमारी जो है बालियां निकल रही अंदर ही बननी शुरू हो में, तो उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और बालियां इनिशिएशन से और बाली बाहर आने तक तो बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्टेज को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन उस समय यदि बारिश हो जाती है तो फिर पानी देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मक्का के अंदर जो है हमारी नी हाई स्टेज है, बहुत क्रिटिकल है पानी के लिए, तो उस समय पानी नहीं लगा तो लगेगा तो काफी नुकसान हो जाएगा। यदि बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नई बारिश होती है तो उस समय सप्लीमेंटल इरिगेशन कहते हैं उसको, पूरक सिंचाई कहते हैं, उस समय सिंचाई करेंगे तो उनकी पैदावार अच्छी होगी। इसी तरीके से जैसे हम मैं बताना चाहूंगा कि अरहर की फसल है, अरहर की फसल या मूंग उड़द की फसल को अभी डॉक्टर अनंत अवशिष्ट जी ने बताया कि बेड पर लगाना चाहिए, और आजकल ब्रॉड बेड पर लगा रहे हैं किसान, तो उसी पद्धति को अपनाना चाहिए। तो इस पद्धति को अपनाएंगे तो उनके यहाँ जल भराव की कोई समस्या होती है तो वो उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी फसल बच जाएगी, और उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, बाहर नहीं जाएगा और जड़ों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से यदि कुछ नए आयाम लेकर आएंगे बिजाई के लिए या क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उनसे जो है ज्यादा हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी, और इसके साथ साथ जो हमारे जो दूसरे प्रबंधन के आयाम है वो भी अच्छे होंगे।
1: जी अनंता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जैसा कि डॉक्टर शिवे बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि जब किसान की फसल खेत में होती है या फिर बुआई कर देता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस उसकी फसल होती है, उस वक्त वो उसके आगे पीछे नहीं सोचता, वो उसका पूरा ध्यान ही रहता कि मेरी फसल कैसे अच्छी हो। तो कैसे यहाँ पर एक सामंजस्य भी रहे और दोनों तरह से काम होते रहे, क्या बताएंगे?
3: जी, इसमें तो मैं किसान भाई बहनों को यह सलाह दूंगी कि उन्हें मौसम आधारित कृषि करनी चाहिए या मौसम आधारित कृषि प्रबंधन उसमें करना चाहिए, उन्हें समय समय पर मौसम की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अभी मानसून के समय जो मुख्य मौसमी तत्व होता है वो बारिश होती है, बारिश केवल सिंचाई के लिए नहीं, खरपतवार नियंत्रण करना है या आपका कीटनाशक है या आपका जो आपके बीमारियां आ रही हैं उसके प्रबंधन के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी डॉक्टर सिवे बता रहे थे कि आपको कब सिंचाई देनी है, आप डिफरेंट स्टेज होती है इसमें आपको सिंचाई देते हैं, और किसान भाई बहन क्या करते हैं कि उसी में दे देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्होंने सिंचाई कर दी और उन्हें मौसम की जानकारी नहीं है, उसके तुरंत बाद बारिश आ गई, तो फसलों को जितना पानी चाहिए था उससे ज्यादा पानी उनको फसलों को मिल गया। तो हर चीज को अपना ऑप्टिमम जो कहते हैं उतनी जरूरत होती है, तो अगर वो ऑप्टिमम से ज्यादा उनको पानी मिल जाता है तो उनकी फसलें खराब हो सकती है। इसके अलावा जैसे खरपतवार नाशी डालना है या कीटनाशी डालना है, आपको बीमारियों से बचाना है अपनी फसलों को, तो किसान भाई बहनों को अगर इसकी सूचना नहीं है कि अगले 2-3 दिन में बारिश होने वाली है और उन्हें कीटनाशक आपके फसलों में डाल दिया, तो इसका क्या होगा कि तुरंत उसके बाद बारिश हो गई तो कीटनाशक उसका धुल जाएगा, और धुल के जो है ये आपका
1: मिट्टी को भी दूषित
3: करेगा और वहां से जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा।
1: जी, जी।
3: और अगर आपका बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो रन ऑफ करके पानी के साथ बह के जो नजदीकी नाले हैं या नाले से होते होते जो नजदीक के तालाब है उनमें भी चला जाएगा, उसमें मछलियां हैं अन्य जलीय जंतु हैं,
1: प्रदूषित हो जाएगा, कंटैमिनेट हो जाएगा।
3: तो आपका देखो एक तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से बच जाएगा अगर आपको मौसम की जानकारी है, आपकी मृदा प्रदूषित होने से बच जाएगा, आपका जो भूजल है वो प्रदूषित होने से बच जाएगा, और आपके जो जलीय जंतु हैं वो भी आपके बच सकते हैं। तो अगर आपको छोटी सी जानकारी एक मिल जाती है तो आपके इतने जो साइड फायदे हैं हम कहते हैं ये फायदे आपके हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी रिसोर्स सेविंग हो जाती है क्योंकि आपने जो है पानी की आपकी बचत हो रही है, आपने पानी लगाया तो पानी लगाने में आपका लेबर का जो खर्चा आ रहा है या डीजल का खर्चा आ रहा है तो वो भी आपका बच जाता है, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो बच जाता है।
1: बिल्कुल, देखिये यानी कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि मानसून का प्रिडिक्शन, उसका पूर्वानुमान कितना सटीक होगा इस पर भी आपकी आय निर्भर करती है, क्योंकि उसी के अनुसार आप आगे की जो कृषि क्रियाएं हैं के बारे में विचार कर सकते हैं, उनके बारे में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। इसीलिए इस विषय को हमने आज शामिल किया अपने कार्यक्रम में, ताकि किसानों तक जागरूकता फैले और मानसून के चाल पर वो नजर रखें। लेकिन कई बार समस्या ये आती है कि किसानों तक इतनी सटीक जानकारी सही समय पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि मौसम की चाल इतनी तेजी से बदलती है कि किसान खुद भाप नहीं पाता। तो इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, कर रहे हैं मानसून और खेती की, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। और किसान कितने खुशहाल होंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी, किस हद तक होगी, ये भी निर्भर करता है मानसून कैसा रहने वाला है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जनमणि, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है, किसान
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। किसान साथियों, यहाँ पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मानसून की खेती के ऊपर। तो आइए जानते हैं किस तरीके से मानसून की खेती में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी समस्याएं आती है और इसके हिसाब से हमें कौन से कदम आगे उठाने चाहिए। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: मौसम पर नजर रखता है, मौसम के अनुसार अपनी योजना बनाना चाहता है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी उसे मिलेगी तभी यह संभव होगा कि कल बारिश होने वाली है, तभी वो तैयारी करेगा ना कि आज वो सिंचाई ना लगाए। तो इसके लिए किस तरह का तंत्र बनाया जा रहा है, किसानों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है?
0: देखिए, जो मेनली जो आजकल हमारा जो किसान भाई और बहन के साथ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप हर जैसे ग्राम या डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, जहां हमारा जो लेटेस्ट है 4 बार पर डे बुलेटिन जाता है। सो उसमें हम 2 तरीके का भेजता है, एक है एक नावकास्ट जाता है जो मेनली सडन डेवलपमेंट के बारे में बताता है, नेक्स्ट 2-3 घंटा है तो किसान भाई के लिए ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए है। जैसे लाइटनिंग है जो सडनली लोगों के ऊपर, आप सभी को मालूम है बिहार झारखंड उड़ीसा में ज्यादा जाने जाता है, तो उनका सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है, वो एक SMS जाता है, उसमें ध्यान देना चाहिए अपना सेफ्टी के लिए, क्योंकि जून महीना में ज्यादा जान को खतरा रहता है, जून जुलाई में जैसे मानसून आगमन का टाइम होता है। और दूसरा एक है कि हमारा जो शॉर्ट रेंज है, मतलब 5 दिन तक जो प्रेडिक्शन है वो आता है, डेली हम लोग भेज मैसेज के थ्रू में भेजते हैं, अगर कोई सीवियर वेदर है, लंबा स्पेल है, एक्टिव स्पेल है, मानसून आ रहा है, तो सारा डिटेल कवर करता है। और उसके साथ साथ एक एक्सटेंडेड रेंज लंबा अवधि का 2 हफ्ते तक वैलिड है, हम भेजते हैं। वो 2 हफ्ते वाले जो 14 दिन का जो प्रेडिक्शन है वो जाता है। सभी किसान भाई जो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमारा होता है, जैसे हर स्टेट में हमारा सेंटर है, तो अगर वो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का बात हो रहा था, अगर वहां संपर्क करे तो सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आजकल का जो टेक्नोलॉजी है वो 80% to 90% एक्यूरेटली जो है ड्राई स्पेल है या ज्यादा बारिश होगा, कितना दिन बरसेगा, वो डिटेल्स आजकल से ही जा रहा है इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें, और मैं तो और बोलूंगा कि जो नावकास्ट है उसको अपना सेफ्टी के लिए जरूर व्यवहार करें, क्योंकि ज्यादा जाने जो है हमारा एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं उन्हीं का भी जाता है। हम अगर पिछले स्टैटिस्टिक
1: बिल्कुल, और पिछली बार का मुझे भी याद भी आता है कि किस तरीके से आप बताए कि लाइटनिंग की वजह से
0: बिहार में
1: जान भी गई,
0: उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में।
1: जी, और डॉक्टर शिवे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं मौसम देखते रहे, उसी के अनुसार अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप करें, तो ऐसे में ये तो बात हुई सिंचाई की, तो क्या ये सिर्फ सिंचाई तक ही सीमित है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन और बारिश का भी किसी तरह का संबंध है जिसे हमारे किसान ध्यान में रखें?
2: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। किसान भाइयों को ये जानने की जरूरत है कि पानी है तो तभी वो अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं। पानी नहीं है तो फिर वो पोषक तत्व भी नहीं डालते हैं, क्योंकि पोषक तत्व जो है पानी से ही लिए जाते हैं जड़ों के माध्यम से। तो इस तरीके से ध्यान करने की जरूरत है। जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो गई है जिस दिन, तो उस दिन जो है उनको नाइट्रोजन नहीं डालनी चाहिए जब तक पानी खेत में खड़ा है, धान के खेत में विशेषकर, क्योंकि धान हमारे क्षेत्र हमारे भारत में लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता है, सभी प्रदेश के अंदर होता है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन का बहुत बड़ा ह्रास होता है। और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता धान के अंदर देखें वो 25-30% से ज्यादा नहीं है, बाकी लॉस ही होता है, चाहे अमोनिया गैस बनकर उड़ जाता है, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, या जो है फिर वो नाइट्रेट लीचिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है किसानों को कि जैसे हमारा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उसमें जो है आप फोलियर फीडिंग कर सकते हैं, पानी का घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, और यदि आपकी बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तो उस समय जो नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब पानी निकल जाए खेत से तभी दें, तो इससे हमारी नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ आजकल बायो फर्टिलाइजर्स भी पानी के साथ साथ बहुत अच्छे पोषक तत्व प्रबंधन में हमारी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अच्छी फसल लेने के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए, इसका भी इस्तेमाल किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ग्रीन मैन्योरिंग है या हमारा सड़ी गड़ी गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो जो है हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूसरा हमारा जो फसल अच्छी होती है, और तीसरा जो हमारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी मृदा के अंदर जो है पानी का अवशोषण ज्यादा होता है तो पानी बह के नहीं जाता है ऐसी मृदाओं के अंदर, और जो हमारी वैसी मिट्टी होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की कमी है वहां पानी बह के भी चला जाता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करें। अभी दूसरे जो है भारत सरकार ने और हमारा इफ्को जो है नैनो यूरिया बना रहा है, तो कुछ नाइट्रोजन और पर्णीय छिड़काव से नैनो यूरिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, इससे नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी
1: और श्रम भी इसमें कम लगता है,
2: कम भी लगता है। और इसके साथ साथ कभी कभी हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पौधों के अंदर दिखाई देते हैं कि भी जिंक की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, विशेषकर मैं बताना चाहूंगा जैसे डायरेक्ट सीधी बिजाई धान की कर रहे हैं और अभी चली रही है पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसानों और दूसरी जगह भी करते हैं, तो यदि शुरू में उनके यहाँ आयरन की हरिमाहीनता दिखाई देती है तो उसके लिए जो है पर्णीय छिड़काव से कर सकते हैं, बाद में जब बारिश होगी तो फिर उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश अच्छी होती है तो फिर जो है आयरन की कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है पानी की और पोषक तत्व प्रबंधन का एक सामंजस्य है जो एक अच्छा मृदा स्वास्थ्य के लिए और अच्छी उत्पादकता के लिए और अच्छा जो है रिटर्न देने के लिए जरूरी है।
1: जी डॉक्टर अनंता, एक चीज हम ये भी देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिस जो पहले नहीं होती है, तो अगर बारिश उस क्षेत्र में ज्यादा हो गई तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता हो जाती है और इसके बाद बीमारियों अपने आप ही आने लगती है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमारे किसानों को, किस तरीके से इसको लेकर वो सजग रहें।
3: जी जैसे कि आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा है, बरसात के मौसम में जो बीमारी और कीड़े आते हैं ये जो है एक तो तापमान और नमी आर्द्रता जो हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस पर निर्भर करते हैं, और विभिन्न जो आईसीएआर के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है उन्होंने ऐसे कई मॉडल डेवलप किए हैं जो हम कहते हैं कि डिजीज फॉर वार्निंग मॉडल्स, वो जो आपके जो मौसम के आधार पर आप उसकी पहले से वार्निंग दे सकते हैं कि फसल की आपकी ये फसल लगी हुई है और ये फसल की कौन सी स्टेज है और इसमें कौन सी बीमारी या कीड़ा आने वाला है, तो इसकी फॉर वार्निंग पहले से पता चल जाती है मॉडल के आधार पर। तो ये जो है अलर्ट जो है हम किसान भाई बहनों को दे सकते हैं कि भाई आपकी ये फसल लगी है इसमें ये कीड़ा या बीमारी आ सकती है, तो आप पहले से इस फसल की निगरानी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए किसान भाई लोगों को अपने जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो आपके अनुसंधान संस्थान है या आपकी कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके संपर्क में, कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में तथा मौसम वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए और समय समय पर आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है अपना मोबाइल पे जो है जैसे मेघदूत ऐप अभी बताया है या दामिनी ऐप है, इससे बिजली की आपको जानकारी मिल जाएगी। मेघदूत ऐप है इसमें आपको मौसम की जानकारी के साथ साथ ही कैसे आपको प्रबंधन करना है, मौसम आधारित कृषि प्रबंधन करना है, ये भी आप उसमें जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर से ये जो मेघदूत ऐप और दामिनी ऐप, इसमें
1: ये बहुत अच्छा आपने बताया। मेघदूत ऐप के बारे में तो काफी प्रचार प्रसार हुआ, दामिनी ऐप जो
0: लाइटनिंग का,
1: तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि बिजली का प्रिडिक्शन भी पता चल सकता है।
0: देखिए, बिजली का जो प्रिडिक्शन है वो मॉनिटरिंग है, हमारा जो सिस्टम है कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उसके साथ साथ सैटेलाइट बेस्ड भी हम लोग को पता चलता है। तो आधा घंटे विद इन वन आवर वो मैसेज जाता है कि जस्ट फोर वार्निंग, मतलब कहीं इलाका में हो रहा है, आगे जाएगा। तो उसको हम लोग ये जैसे बताए कि जो दामिनी ऐप है उसके थ्रू में आपको पता चलेगा कौन सा एरिया में वो एक्टिविटी चल रहा है या थोड़ा बहुत होने वाला है। अच्छा। वो मैपिंग के वजह से वो गूगल ऐप में दामिनी डाउनलोड करके कर सकते हैं बिजली की गिरने का जो है। और जैसे बताया मेघदूत, मेघदूत में आपका पूरा अपना एरिया का भी आप देख सकते हैं, लोकेशन और जो जगह है वहाँ क्या बारिश का संभावना है वो मिल सकता है डिटेल
1: जी।
3: इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे, जैसे बरसात के मौसम में आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि खरपतवार काफी आती है, और खरपतवार का जो मुख्य फसल है उससे काफी प्रतिस्पर्धा होती है।

0: मृदा से पोषक तत्व तो लेती है, इसके साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको भी बाध्य करती है, क्योंकि उनकी पैदावार जो है मुख्य फसल से ज्यादा हो जाती है। और
1: चर्चा को हम जारी रखेंगे, परंतु यहाँ पर अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंडिया भील 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंडिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टंडिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: ના બારામાં અને કમાઈ ના બારામાં એત્રે સાંભળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલ નો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार मानसून से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे हैं, तो किसान साथियों इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: जो मुख्य फसल है उसको प्रकाश कम मिलता है तो उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है या कम हो जाती है, तो इसका काफी उपज की गुणवत्ता पे भी इसका असर पड़ता है। तो समय समय पर जो आपको खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए, इससे आपके जो मृदा है उसमें भी क्या होगा कि जो हवा का आदान प्रदान अच्छे से होगा, हवा का आदान प्रदान अच्छा होगा तो आपकी जो जड़ें होंगी वो भी मजबूत होंगी, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व वो जमीन से ले लेगी, अच्छे से आपका प्रकाश संश्लेषण होगा और आपकी जो उपज की गुणवत्ता है और उत्पादकता दोनों में बढ़ा होगा।
2: जी जी बिल्कुल। तो अभी आपने बताया, देखिए सुनने में बातें बहुत आम सी लगती है लेकिन इसका प्रभाव वो बहुत दूरगामी होता है और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है फसलों पर। जयरमणि जी, जैसा कि हम मानसून की बात कर रहे हैं और पहले तो जो तरीका होता था कि विंड्स किस तरफ हवा बह रही है और आसमान में बादल छाए या नहीं छाए उसको देखकर अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन अब तो सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक हो गई, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम मानसून को ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो हमारे देश का मानसून किस तरह का है, नेचर ऑफ मानसून क्या है?
3: देखिए ये मतलब जानकर हम गर्व अनुभव करना चाहिए कि जो मानसून है वो भारत में सबसे ज्यादा रेन होता है। अगर सारा विश्व का जो क्लेम करते हैं, जैसे अमेरिका भी क्लेम करता है हमारा मानसून है, या कहीं भी आप जो ट्रॉपिकल एरिया है, मानसून मतलब विंड एक्चुअली मेनली हवा, हवा का गति एंड हवा का दिशा। तो हमारा भारत का ऐसा नेचर, मतलब हमारा जैसे लैंड है केरला से लेकर के हिमालय अगर जाएं और हमारा दो जो समुद्र है जो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। हिमालय तो एक जो है जो हमारा हवा आ रहा है समुद्र से उसको रुकता है। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा ये पूरा रेगिस्तान बन जाता, ठीक है ना। सो हमारा जो रेन का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है। जैसे अगर किसी के साथ कंपेयर करें तो मानसून का सबसे ज्यादा रेन होता है हमारा पूर्वोत्तर, सभी को मालूम है मौसिनराम है, चेरापूंजी है, उसके साथ साथ हमारा जो कोंकण का क्षेत्र है चाहे कर्नाटक का क्षेत्र है बहुत ज्यादा बारिश होता है। 2500 मिलीमीटर एक्चुअली 250 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर। तो ये हमारा का पूरा साल का जो पानी है और बिजली भी है मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि खेती तो है ही है, उसके साथ साथ हमारा जो पूरा जीवन है मानसून के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसीलिए मानसून बहुत अहम माना जाता है साउथ एशिया के लिए, पर्टिकुलरली हमारा भारत के लिए है।
2: जी जी शिवेज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्रॉप के हिसाब से अगर हम बात करें, खरीफ की जो फसलें हैं अगर उनके बारे में एक एक करके और बारिश से जोड़कर अगर इसको थोड़ा समझना चाहें तो किस तरह से?
4: हाँ देखिए, जैसे भारत के अंदर जो लगभग खरीफ में जो राइस है, धान है, सभी प्रदेशों में उगाया जाता है, इसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बिना पानी के धान नहीं हो सकता, तो इसके लिए बारिश का बहुत बड़ा रोल है। और जो हाँ ये हमारी खाद्यान्न की जो पूर्ति के लिए नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने
2: हमारी के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है,
4: खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी जरूरी है। जैसे पिछले साल जो लगभग हमने 32-36 हजार करोड़ रुपए का जो है
2: रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया,
4: एक्सपोर्ट धान का किया है, तो उससे अर्निंग हुई है। तो उस तरीके से धान के प्रबंधन के लिए ये जरूरी है कि पानी का जो है सदुपयोग करें, और विशेषकर मैं पंजाब हरियाणा में क्योंकि बासमती की खेती होती है, यहाँ बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि वो डायरेक्ट सीधी बिजाई करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग करेंगे तो उसमें पानी की बचत होगी और पानी कम लगता है, लगभग उसमें 25-30% पानी की बचत हो सकती है, क्योंकि हमको जो है लगभग उसमें 20-22 इरीगेशन देनी पड़ती है लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड ड्राइस है उसमें हमको जो 28-30 इरीगेशन देनी पड़ती है। और साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, जैसे हम पडलिंग करते हैं उस समय यदि बारिश नहीं होती है तो उसमें लगभग हमारा 15 लाख लीटर पानी लग जाता है पडलिंग के अंदर, तो उस पानी की बचत कर सकते हैं हम सीधी बिजाई करके, लेकिन ये सीधी बिजाई जो है अभी कर लें वो बारिश आने से पहले ताकि उनका जमाव हो जाए। तो इस तरीके से जो है धान के अंदर पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन मक्का है, ज्वार है, बाजरा, इनको थोड़ा कम पानी की जरूरत पड़ती है। मक्का ज्वार बाजरे को, मक्का ज्वार बाजरे को हमेशा जो रेज बेड पर लगाना चाहिए, रिज पर लगाना चाहिए, तो रिज पर लगाएंगे उससे दो फायदे होंगे, एक तो उनकी फसल को नुकसान नहीं करेगा।

0: पानी यदि अधिक हो जाता है और दूसरा उनका ग्राउंड वाटर कहीं पानी खेत का पानी खेत में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और ये हमारा स्लोगन भी है और ये हमारा विजन भी है,
1: खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में,
0: गांव का पानी गांव में ही रहे। तो इस तरीके से यदि बिजाई करेंगे वो मक्का ज्वार बाजरे के अंदर तो उनकी फसल अच्छी होगी। और हमारा, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। अब बात आती है कपास, कपास बहुत हमारी प्रमुख
1: क्रॉप
0: है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मतलब अच्छी क्रॉप है। तो ये लगभग जो ये पंजाब में भी, हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, गुजरात में भी होती है और हमारे लगभग महाराष्ट्र में और हमारे जो मध्य प्रदेश में, इनमें सभी प्रदेशों में होती है। तो इसके लिए जो है आजकल ये बताते हैं हम कि रेज बेड पे लगाएं, रेज बेड पे लगाएंगे तो उनका ये फायदे होंगे कि दो लाइनें आ जाएंगी और दो लाइनों के बीच में खूड बन जाएगा। तो अधिक पानी होगा तो खूड के अंदर जो है वो अवशोषित हो जाएगा, फसल को नुकसान नहीं होगा। अब आती है जैसे गन्ने की बात, गन्ना एक हमारी बहुत ही कॉमर्शियल क्रॉप है, सभी जानते हैं। चीनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सभी खाते हैं लगभग। तो इसके लिए जो है पानी की बहुत जरूरत पड़ती है गन्ने के लिए। गन्ने के लिए पानी खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसकी जो है गन्ने की पानी जो सहन करने की क्षमता वो अधिक है और इसको पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसको भी जो है इस तरीके से जब लास्ट जुताई करें, लास्ट अर्थिंग करें तो गन्ने के ऊपर जो है मिट्टी चढ़ा दें, मिट्टी चढ़ा देंगे तो उनकी जो है गूल बन जाएंगी और गूल के अंदर जो पानी रहेगा तो पानी बाहर बहकर नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है यदि अधिक पानी भर भी जाता है गन्ने के अंदर तो गन्ने की फसल को जो है बांधने का जरूर सोचें, उसको जो है गिरने से बचाने के लिए। अब बात आती है जैसे हमारी जो है कुछ दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें भी हमके लिए बहुत जरूरी है खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, पोषण सुरक्षा के लिए भी प्रोटीन का स्रोत है। और विशेषकर जैसे हमारा अरहर है, अरहर दूसरे नंबर पर आती है चने के बाद में और लगभग सभी प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है और लंबी अवधि की भी है, मध्य अवधि की भी है और बहुत कम अवधि की भी किस्में पूसा ने निकाली है, पूसा अरहर 16 करके वो भी लगा सकते हैं किसान भाई। तो पानी के अनुसार जो लगा सकते हैं लेकिन उसको भी जो है रेज बेड पे लगाना चाहिए, यानी कि खूड बनाकर जो हमारी बेड बनी हुई है उस पर लगाना चाहिए। और मूंग उड़द को तो पहले से ही बताते हैं 2-3 लाइन लग जाएंगी और उसके बाद में जो है पानी का जो है कोई नुकसान नहीं होगा और फसल अच्छी होगी। या कीट प्रबंधन करने में या खरपतवार नियंत्रण में भी यदि रेज बेड पर लगाएंगे तो उसमें काम आता है।
1: और जो जो हमारे किसानों की एक ये शिकायत रहे या कहे समस्या रहती है कि दाल दलहन लेने में थोड़ा सा वो घबराते भी है कि बारिश अगर ज्यादा होगी तो फसल को नुकसान हो जाएगा, काफी सेंसिटिव होती है ये फसल। तो ऐसे में जैसे कि डॉक्टर शिवे आपने बताया कि रेज्ड बेड यानी कितना ऊंचा होना चाहिए, किस तरीके से मतलब रेज्ड बेड किस
0: तरीके से? लगभग जो है ये 5-8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और उस तरीके से उस पर लाइनें भी 2-3 आ जाती हैं। तो इसके यही फायदा होता है कि हमको खरपतवार नियंत्रण करना है तो खूड के अंदर जाके हम होइंग कर सकते हैं या किसी को इंसेक्टीसाइड डालना है तो उसके खूड के अंदर चलकर डाल सकते हैं। और जो एक्सेस पानी है वो खूड के अंदर आ जाता है, वो जड़ों में नहीं रहता है। तो इसका ये फायदा है। तो रेज बेड जो है बहुत ही जरूरी है। हालांकि किसान कुछ क्षेत्रों में जागरूक हैं लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी उनको जागरूक होने की जरूरत है ताकि उनकी फसल को वाटर लॉगिंग से बचाया जा सके और उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो।
1: जी, और डॉक्टर अनंता आप क्या बताना चाहेंगे जो कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि दलहन में ये समस्या काफी रहती है।
2: इसके लिए आपको मौसम की जानकारी होनी जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मौसम आधारित फॉरवार्निंग मॉडल है तो उस फॉरवार्निंग मॉडल के आधार पर आप जो आने वाले कीड़े और बीमारी की जानकारी समय पर ले सकते हैं। और जब मौसम आपका अच्छा है मतलब बारिश नहीं हो रही है उसी समय आप जो कीड़े या बीमारी को बचाने के लिए उसमें कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं। जब अगर बारिश आने वाली है तो आप कभी भी उसमें छिड़काव ना करें। और जैसे कि अभी डॉक्टर शिवे जी भी बता रहे थे कि धान के लिए और इनके लिए बारिश की मानसूनी जो वर्षा वो काफी अच्छी होती है, एक टाइप से वरदान है।
3: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही है। जो मानसून की वर्षा है वो एक तरह से हमारे लिए एक वरदान साबित होती है क्योंकि ये वर्षा जो अपने साथ न केवल वर्षा का जल लेकर आती है बल्कि जो हमारे पेड़ पौधे हमारी प्रकृति को जो वातावरण है उसको पूर्णतः बदलने की क्षमता रखती है। तो किसान साथियों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने मानसून से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम जानेंगे, परंतु यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंडाविल 90.8 FM के साथ छावा की आवाज।
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: तुमसे अच्छा कौन है।
1: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन राज आपका स्वागत करते हैं।
0: हरगिज न यकीन था हमको अनहोनी बात होगी।
1: दोस्तों, आज के कलाकार के मंच पर आज फिर एक नए टैलेंट के साथ हम मौजूद हैं। आपको पता है ये मंच है नए टैलेंट्स का, नए गायकों का, नए प्रतिभाओं का। हमारे साथ हैं आज पीयूष श्रीवास्तव जी। बाकी की बातचीत हम पीयूष जी से करेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं। वो अपने बारे में बताएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको उनको जान के बहुत अच्छा लगेगा। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
2: जी समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपॉर्चुनिटी के लिए, मुझे इस मंच पर एक चांस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी।
1: तो पीयूष जी, हमारे जानने वालों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए हमें बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं?
2: जी मैं बैंगलोर में हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में मैनेजर का काम करता हूँ और यहीं बैंगलोर में काफी सालों से सेटल्ड हूँ, अपने परिवार के साथ रहता हूँ। जी तो लाइक जन्म तो मेरा कानपुर यूपी में हुआ था, परवरिश हैदराबाद में हुई, फिर जॉब इंजीनियरिंग वगैरह करने के बाद फिर जॉब बैंगलोर में लगी, तो तब से यहीं पे हूँ। बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा मौसम रहता है यहाँ पे और बस यही जिंदगी कट रही है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है पीयूष जी। ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपका जन्म कानपुर में हुआ, क्योंकि मैं भी कानपुर का ही निवासी हूं। मैं, मेरा जन्म भी कानपुर में हुआ।
2: अरे वाह, बहुत अच्छे समीर जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। जी मैं अभी भी जाता रहता हूँ कानपुर, मेरे अभी रिलेटिव्स वगैरह हैं कानपुर में
1: जी,
2: तो अभी भी जाना आना बीच बीच में होता रहता है मेरा, बहुत अच्छा लगता है वहां जब जाता हूँ तो।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही रंगीन, बड़े ही प्यारे प्रोग्राम को पीयूष जी की ही आवाज में गाए हुए इस नगमे से।

0: बहुत ही प्यारी गायकी, बहुत ही प्यारा संगीत। पीयूष जी, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जैसे आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर्स में हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में हैं, अगर कोई बच्चा उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहे तो उसको क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
1: हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, खासकर कि आज की तारीख में ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना तो उतना मुश्किल नहीं है, बहुत सारे इंजीनियरिंग डिग्रीज हैं आजकल। लेकिन आई थिंक आजकल आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, बहुत तरक्की कर रही है इस फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में। आजकल तो काफी लोग कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है तब से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोडिंग, इसके जॉब्स जो है वो कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कई लोग सोच रहे हैं कि काफी सारे ले ऑफ्स वगैरह होंगे, इनफैक्ट हो भी रहे हैं। बट मेरा ऐसे नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मैं बस यही कहूंगा कि देखिए, इंजीनियर जो होता है वो काफी अलग सोच रखता है, और एक सच्चा इंजीनियर कोई भी

0: हमेशा जो है मेहनत से आगे बढ़ते रहिए। आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी भी बहुत ही अच्छी फील्ड है और इसमें दिमाग का काम हमेशा रहता है, तो अपने दिमाग को चुस्त रखिए, बस इतना ही कहूंगा।
1: बहुत बढ़िया पीयूष भाई, बहुत बढ़िया। आज के बच्चों के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट और बिल्कुल काम की बात बताई आपने। तो चलिए
0: जी
1: दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। पीयूष भाई, लोग आपके बारे में कुछ गलतफहमी रखते हैं क्या कभी? कोई ऐसी कि जो ज्यादातर गलतफहमी होती हो और बाद में क्लियर होती हो?
1: अच्छा, ये तो आपने काफी दिलचस्प सवाल पूछ लिया समीर जी।
0: जी
1: मुझे लगता है कि एक्चुअली कई लोग, मेरे रिश्तेदार भी और ऑफिस में भी कई लोग मुझे सीरियस टाइप का इंसान समझते हैं। और ये सच बात है कुछ हद तक कि मैं दूसरे लोगों के अनुपात में कुछ कम बोलता हूं,
0: जी
1: पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं। मेरे जो क्लोज लोग हैं, जो जब मैं अपने कंफर्ट जोन में होता हूँ अपने मित्रों के साथ, तब मैं बहुत शरारतें और बहुत हंसी मजाक करता हूँ सबके साथ।
0: क्या
1: तो
0: बात
1: ऐसा
0: है,
1: कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। आई थिंक ये गलतफहमी है कुछ लोगों को, काश मैं इसे दूर कर पाता।
0: बस आज दूर हो गई साहब, आज दूर हो गई। जो भी आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको ये गलतफहमी अगर रही होगी तो वो दूर हो गई। बहुत बढ़िया। तो
1: जी
0: चलिए दोस्तों, ज्यादा नहीं रुकते, एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं पीयूष जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूबसूरत। पीयूष जी मुझे ये बताइए, अपने बचपन की कोई प्यारी सी पसंदीदा याद बताइए मुझे, कोई मेमोरी।
1: बचपन की याद, देखिए बचपन के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे नानी का घर याद आता है। तो
0: वाओ,
1: हम लोग कानपुर में, मेरी नानी और मामा वगैरह सब लोग वहां थे, और पुराने जमाने में आई थिंक परिवार भी बहुत बड़े होते थे, तो हम लोग बहुत सारे कजन्स थे। और आई थिंक पुराने जमाने में खैर ना सिर्फ कजन्स और रिश्तेदार बल्कि पड़ोसी, इनका भी मायने बहुत होता। तो हम सबको, किसी को भाई, किसी को मौसी, किसी को मामा, ऐसे बोलते थे। पूरा मोहल्ला मतलब हमारे जैसे रिश्तेदारों जैसा था। तो हम अपनी गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे और सारे कजन्स आते थे और पड़ोसी और उनके रिश्तेदार सब आते थे, तो बहुत एक मोहल्ला सा, जमघट सा हो जाता था। और हम काफी सारे अटकेलियां करते थे, काफी शरारते करते थे, खूब मौज होती थी। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी, आई थिंक मेरी मेमोरी है। मैं बचपन के बारे में सोचता हूँ तो ऐसे ही लगता है कि काश ऐसे माहौल में फिर जा पाते और फिर खेलकूद कर सकते, लड़ाई कर सकते और गिरते संभलते। तो आई थिंक सबसे अच्छी मेमोरी मेरी यही है।
0: बहुत बहुत प्यारी सी मेमोरी, बहुत प्यारी मेमोरी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और प्यारा सा गीत।

0: पीयूष जी, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी असफलता, फेलियर क्या रही और उससे आपने क्या सीखा और आप ग्रो कर गए?
1: सबसे बड़ी असफलता, देखिए वैसे तो करियर में और लाइफ में काफी बार ऊंच नीच होती है, असफलताएं भी कई बार देखी, पर आई थिंक जब मैं याद करता हूँ तो एक सफलता है जो कभी नहीं भूलती ना कभी भूलेगी। वो ये थी कि मैंने 12वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत लोग IIT वगैरह की तैयारी करते हैं, तो मैंने भी की थी और बहुत मेहनत और मन से करी थी। मेरा सिलेक्शन भी ऑलमोस्ट हो गया था पर रैंक थोड़ा नीचे आया था जिसके कारण मुझे अपनी मनचाही सीट, मनचाही ब्रांच नहीं मिली थी, तो इसकी वजह से IIT में कभी एडमिशन नहीं ले पाया मैं। और ये आई थिंक सबसे बड़ी असफलता रही मेरी मेरे जीवन की। और आई थिंक उस समय काफी दुख इसलिए भी हुआ था क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई बैकअप ऑप्शन या ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी, तो मुझे उस समय तो ऐसा लगा था कि जैसे जीवन की नैया डूब गई। पहले उस जमाने में आई थिंक इतने ऑप्शंस भी नहीं होते थे जितने आज होते हैं कि भाई एक कॉलेज में नहीं तो दूसरे में चले जाओ एंड सो ऑन, बहुत कम ऑप्शंस होते थे। तो खैर ये सफलता रही और हालांकि इस बात का दुख है लेकिन सीखा बहुत कुछ इस असफलता से। सबसे पहले तो मेहनत करना सीखा मैंने, ये भी सीखा कि आप मेहनत एक चीज के लिए करते हो और वो चीज अगर आप नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत असफल हो गई, क्योंकि वही मेहनत फिर और किसी चीज में काम आती है और मेरे बहुत काम आई क्योंकि फिर मैंने एक तरह से मेहनत करना सीख लिया। और फिर उसके बाद ये भी हुआ कि अपॉर्चुनिटीज दूसरी आई और फिर अच्छी जगह इंजीनियरिंग कर भी ली और नौकरी भी लग गई और ओवरऑल करियर ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा काफी। तो मैंने तो यही सीखा कि देखिए जब ईश्वर एक द्वार बंद कर देता है तो दूसरे कई खोल देता है, तो इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा होती है लेकिन कम से कम हताश नहीं होना चाहिए और अपनी मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बहुत ही प्यारी बात, बिल्कुल दिल को छू जाने वाली बात आपने बिल्कुल अपने दिल से बताई। तो दोस्तों,
1: जी सर,
0: एक खूबसूरत सा गीत भी हो जाए पीयूष जी की आवाज में ही।

0: पीयूष जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको किसी एक बात के लिए याद किया जाए तो क्या होनी चाहिए वो?
1: एक बात के लिए याद किया जाए। देखिए, ऐसे तो कोई इतनी प्रतिभा भी नहीं है, इतनी उपलब्धि भी नहीं है कि जो कोई
0: अरे साहब, वो तो हम जानते हैं ना कि आपके अंदर प्रतिभा
1: जी
0: क्या है।
1: समीर जी, नहीं मतलब सच कहूं तो ऐसी कोई चीज तो नहीं है जिसके लिए कोई याद करे। बट हाँ, जो जैसे जैसे क्लोज सर्कल्स हैं, परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, आई थिंक वो लोग मुझे इतने के लिए जरूर याद करेंगे कि मैंने किसी से द्वेष नहीं रखा जीवन में, और जरूरत पड़ने पर मैंने मदद करी और लोगों के काम आया। तो ये आई थिंक पीपल, सम पीपल विल डेफिनेटली रिमेम्बर।
0: ओके, अमेजिंग, ये बड़ी खूबसूरत बात रही। तो दोस्तों, मैं आपके और पीयूष जी के बीच में नहीं आऊंगा। चलिए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल से रुसवा न कर दूँ रुसवा।

के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो आग है तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा न कर दूँ ठंडा।

0: बहुत बहुत बढ़िया। पीयू जी, मुझे अपने जीवन के तीन सबसे प्रभावशाली लोगों के बारे में बताइए जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो, प्रभाव डाला हो आपके जिंदगी पर, आपकी शख्सियत पर।
1: जी, सबसे पहले तो आई थिंक मेरी मॉम, और खास करके इसलिए क्योंकि उनसे बहुत सारी चीजें सीखी, इसलिए नहीं कि उन्होंने ये चीजें मुझे कही थी, बल्कि वो ये चीजें फॉलो करती थी। तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो इंसान कहता है उससे कम सीख मिलती है, जो इंसान करता है उससे बहुत ज्यादा सीख मिलती है।
0: क्या बात
1: तो
0: है।
1: मेरी मॉम की मेहनत, उनकी डेडिकेशन, उनकी जो उन्होंने केयर करी न सिर्फ अपने बच्चों की बल्कि पूरे परिवार की, फ्यूचर की, और उन्होंने मतलब जिस डेडिकेशन से अपने न सिर्फ अपने बच्चों का बट सभी का साथ निभाया, आई थिंक वो एक इंस्पिरेशन है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव तो मेरा मॉम का ही रहा। इवन गाने के लिए भी उन्होंने ही मुझे सबसे पहले प्रेरित किया था। तो आई थिंक सबसे ज्यादा प्रभाव तो उन्हीं का रहा। फिर मुझे एक अपने मैथ टीचर याद है जो जिन्होंने बहुत बचपन में मुझसे एक बार कहा था कि तुम इंजीनियर बनोगे,
0: जी
1: और मुझे उस समय तक ये नहीं पता था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। मतलब कभी मैं कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था, पर आई थिंक इन टीचर की वजह से मेरी मैथ अच्छी हो गई थी, क्योंकि इन्होंने मैथ ऐसे सिखाई थी कि फिर मैथ जैसे सब्जेक्ट से प्यार हो गया था, है ना। क्योंकि मैथ अधिकतर जो है इस उम्र में अच्छी नहीं लगती है बच्चों को, मुझे भी उतनी अच्छी नहीं लगती थी, पर इन्होंने कुछ इस तरह से मैथ का ज्ञान दिया कि मैथ सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा। और फिर जब मैंने थोड़ा अच्छा किया उसमें, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इंजीनियर ही बनोगे, और वो मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन हो गई आगे के लिए।
0: जी
1: तो वो, और आई थिंक थर्ड पर्सन इज मेरी बेटी। उसने काफी अलग तरह से मुझे सीख दी है, और मैं काफी लाइक बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, वयस्क हो गया। उसके बाद एक समय आता है जब आपको लगता है कि आप सही हो और आपको अब और शिक्षा की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक मेरी बेटी ने मुझे सिखाया कि कि कि आप जो अपने आप को समझते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरे आपको क्या समझते हैं, अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, किस तरह से समझते हैं, आई थिंक वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसने मुझे मॉडेस्टी सिखाई, और अपने आप को दूसरों से व्यवहार करते समय खाली अपने नजरिए से नहीं बल्कि दूसरे के नजरिए से देखना सिखाया। आई थिंक दैट वॉज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस टू मी आफ्टर आई ग्रू अप।
0: अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रभावशाली तीन सीखें और तीन व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में रहे जिन्होंने आपको इतना कुछ सिखाया, क्या बात है
1: जी,
0: बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और गीत पीयू जी की ही आवाज में।

0: पीयूष जी, अपने को फिट और सक्रिय रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए क्या आपका पसंदीदा तरीका है, क्या करते हैं आप?
1: फिट और सक्रिय, एक्चुअली फिट और सक्रिय, जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि सक्रिय दो तरह से रहना चाहिए सबको। सबसे पहले तो शरीर की सक्रियता, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, और दूसरा है ब्रेन एक्टिविटी। कई बार हम सोचते हैं कि खाली शरीर की सक्रियता ही मायने रखती है, मेरा मानना है कि ब्रेन की सक्रियता बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे ऊपर। तो जनरली मैं दोनों पे ही थोड़ा सा ध्यान देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा तो देता हूँ। तो फिजिकल एक्टिविटी मेरी अच्छी रहती है, मुझे खेलने वेलने में इंटरेस्ट है, तो कभी टीटी कभी क्रिकेट इस उम्र में भी खेलता रहता हूँ, वीकेंड्स पे या कभी छुट्टी वगैरह पे, और कभी कभी जॉगिंग वगैरह भी चला जाता हूँ नॉर्मली छुट्टियों पर ही, वीकेंड्स पे।
0: बहुत बढ़िया।
1: और ब्रेन की सक्रियता के लिए आई थिंक सबसे अच्छी चीज है पजल सॉल्व करना। थोड़े आजकल तो यूट्यूब वगैरह में भी काफी ऐसे चैनल्स हो गए हैं जो आपको पजल्स और यू नो मैथ के प्रॉब्लम्स वो देते रहते हैं। प्लस एक एडिशनल एक्टिविटी मैं और करता हूँ, अपने बच्चों को जब भी समय मिलता है पढ़ाता हूँ। तो जैसे मेरी बड़ी बेटी अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, पहले 11th 12th की करती थी, तो उसको हेल्प करना, बैठ के उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना, आई थिंक उससे जो है ब्रेन की एक्टिविटी भी चलती रहती है।
0: अमेजिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्रेन की एक्टिविटी चलाना बहुत जरूरी है, जाहिर सी बात है शरीर के साथ ब्रेन का भी फिटनेस फिट होना जरूरी है। पीयूष जी ने बिल्कुल ठीक कहा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: पीयूष जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम हमारे प्रोग्राम में वहां आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सुनने वालों के लिए, नई प्रतिभाओं के लिए, टैलेंट्स के लिए कुछ संदेश दीजिए।
1: जी समीर जी, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि देखिए, हर एक को कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। किसी की कोई प्रतिभा होती है, किसी की कोई इच्छा होती है, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। मैं बस यही कहूंगा कि आपको जो पसंद है आप वो कीजिए, दूसरों से ज्यादा अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, अपनी खुशी स्वयं में ढूंढिए, अपनों में ढूंढिए, उसको कहीं और तराश मत कीजिए, और खुश रहिए, दूसरों को खुशी दीजिए। सबसे बड़ी खुशी इसी में है कि दूसरे को यदि आप कुछ हेल्प कर दें, यदि आप उनको कोई खुशी दे सकें, तो जो खुशी मिलती है उस खुशी का कोई उस खुशी की कोई तुलना नहीं है। तो आई वुड जस्ट से कि थोड़े में खुश रहना और जितनी प्रतिभा मिली है उसको बढ़ाना और दूसरों से कंपेयर ना करना, बस यही सबसे बड़े मंत्र हैं खुश रहने के।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात है, सीधा साधा सा मंत्र लेकिन बहुत ही ज्यादा काम का। थैंक यू सो मच पीयूष जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बातें की, आपके गीत सुने, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू समीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अब हमको खबर थी ऐ दिल, रंगीन शहर भी होगी।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर, हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं, शुभ रात्रि।
3: कभी हमने नहीं सोचा था।

तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः। आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही सौंधे सौंधे से, मासूम, पवित्र और सीधे सीधे सच्चाई से भरे हुए प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, और बहुत सारे अलग अलग विषय होंगे जिससे हम अपने जीवन को और खूबसूरत बना पाएं। तो हमारे साथ है महुआ चक्रवर्ती जी, बाकी मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा। यूं तो मैं भी उनको उनके बारे में बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद बताएंगे महुआ जी, तो हमारे सुनने वालों को ज्यादा कनेक्शन लगेगा आपसे। तो आपका स्वागत है, प्लीज अपने बारे में बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं, कौन हैं आप?
1: जी समीर जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए, दिव्य दर्शन और आप ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं मुझे, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे आपने बताया, महुआ चक्रवर्ती तो मेरा नाम है, बंगाली हूँ, बट मेरा जो जन्म हुआ है वो उड़ीसा के एक टाउन में, राउरकेला नामक टाउन में हुआ है। और मेरी जो एजुकेशन है, बैकग्राउंड, वो है इंजीनियरिंग की, और फिर उसके बाद करीब 24 साल मैं आईटी इंडस्ट्री में थी। बट जिंदगी में शायद शुरुआत से ही जिंदगी ने कुछ सिखाना चाहा और मैं सीखते चली गई, जीवन चेंज होते होने लगा। और अभी मैं, जैसे लास्ट ईयर ही नवंबर में मैंने रिजाइन किया स्वेच्छा से, वॉलंटरीली, ताकि मैं फुल फ्लेजेड जो है किसी पर्पस लेड काम के लिए अपना जिंदगी का वो कर सकूं, उस पे ध्यान दे सकूं। क्योंकि 12 साल से, पिछले 12 साल से, करीब 2013 से मैं बहुत कुछ अलग भी कर रही हूं। जिंदगी में कुछ चेंजेस आए, कुछ क्राइसिस सिचुएशंस थे, यू नो, मेरे मेरे एक जो छोटा भाई था, उसका अचानक से डेथ होने पे, और फिर उसके लेस देन अ ईयर फिर मेरे पापा का चले जाने से, तो बहुत जीवन पे एक भारी प्रभाव पड़ा। क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी घर की और जिम्मेदारी बहुत थी, और फिर उससे भी ज्यादा बड़ा था कि लाइफ को और गहराई से समझना। तो ये चलता रहा सिलसिला, तो तब से मेरी जो खोज थी वो स्टार्ट हो गई थी डीपर सेंस में, कि जिंदगी में एक्चुअली क्या होता है और सिर्फ लाइफ टू डेथ ही जिंदगी नहीं होती। तो उस पे मैं कुछ काम कर रही थी लोगों के साथ, एंड इन द स्पेस ऑफ हिप्नोथेरेपी, इन द स्पेस ऑफ न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, ये सब चीजों पे, और काउंसलिंग थेरेपी, एंड तो वो मैं जो है मैं अपना साइड में करती थी, बैंडविड्थ ज्यादा नहीं थी। लेकिन जो 2-3 साल से कॉलिंग बहुत स्ट्रांग होने लग गई, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इट वाज अ बिग डिसीजन ऑफ माय लाइफ, क्योंकि इतना भरा पूरा जो है जॉब छोड़ना इतना इजी डिसीजन नहीं होता है। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मेरा लाइफ का पर्पस ये है तो लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो अभी मैं महुआ लाइफ साइंसेस जो है मेरी संस्था, उसकी फाउंडर हूँ, जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने का काम करती है। इट्स एन एमलगेशन ऑफ बोथ स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज साइंस।